محلہ چوتھا جن ماس تک ٹور ہاں

ਹੈ ਬਾਣ ਨਾਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣ ਨਾਚ

sweet sweet body.

बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवे प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई जैस डिठे सब दुख जाए। त्रेक बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवेताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा प्यारिया सह साहिबजादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आ रहे। तो देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इस्नान। चौकियां झंडे बंगे दुगो जग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ न विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान
ਵਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ ਤਾਨਾ ਤਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਧਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ

जिन्हें शहर नाम न चेते से काहे जग आए राम राजे मन सिजे

0: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियारा दिल सी नाल तग कपाहों कतिया बामन वटे आए को बकरा रिन खाए सबको आखे पाए कोई पुराना सुटिया पीफर पाए हो नानके तक न तुरते ही जे तक हो वह जोर महला पहला
1: नाय मने पातू पजै साला ही सच सूत दरगह अंदर पाई है तक न तोड़ सपूत महला पहला
2: तक न इंद्री तक न नारी पलके थुक पवे निदाड़ी तक न पैरी तक न हथी तक न जेवा तक न अखी बेतका आया पे वत्ते वत्ते आगे वरा कत्ते

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक
1: श्री दरबार साहब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरल कर रहे थे। 103.6 MHz से आकाशवाणी का ए अमृतसर केंद्र है। तुम सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन की पंजाबी सेवा। सवेर के 6 फरवरी ने आओ हुण समाप्त फरवाने हैं सूफियाना कलाम।
2: सूफियाना कलाम सुनते हैं ज्योति नूरा ते सुल्ताना नूरा नूं।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरे 9870 किलोहर्ट्ज़ से तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बीएस ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु नज़र आहिनि, थोरी देर में तव्हां हमेशा मोहित कलाम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तफ़सीलु पेश कंदा, पोइ कुझु कलाम ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। हिते असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कलाम साहब खे ॿुधूं।

15 साल आगमे मुल्क जी शमसी तवानी जका हुई सा फकत 2 गीगावाट ही जका अज वधी करे 160 गीगावाट पहुंची गई आए सरकारन के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तहत सोलर पैनल्स मैसर कराया वे इन अलावा 30 लख कुर्मीन के सोलर पंप्स दिना वे इन तरह वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट तहत 200 मिलियन टन के कार्बन के बचाव मैसर कराया वो है उनके घट कया वो है लॉजिस्टिक जे इको फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मेशन ते जोर दींदे प्रधानमंत्री बुधा तो कें रेलवे के पूरी तरह से लाइट आने से डीजल के 1000 करोड़ लीटर की बचत थी रही है प्रधानमंत्री बुधा तो इन वक्त मुल्क में 5000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज पण तैयार किया वे जैसा पण गैर मैदनी बारण में कटौती आई है पानी के बचाने के दस में प्रधानमंत्री बुधा तो 70,000 अमृत सरोवर बर्पा कराया गया 1.5 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कैच द रेन प्रोग्राम तहत अडया गया प्रधानमंत्री मिलिट्स के आलमी सुजागरण के रोशनी में आंदो जैसे 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स करे करार दिनों वे हो प्रधानमंत्री बुधा तो कें गुजर 12 साल दौरान मुल्क में घाटे जंगलन जो तादाद 22% वधी वो है इन डिस में उन एक पेड़ माँ के नाम प्रचार जी के सारा कई जैसा शहरी देशभर में लगातार वण पोखे रहे प्लास्टिक पॉल्यूशन के ललकार के खता कर प्रधानमंत्री बुधा तो सिंगल यूज प्लास्टिक के पूरे मुल्क भर में बंदिश लगल है इनका अलावा कचरे के घट कर वरी का खतब आण ए रिसाइकिल करण ते खास ध्यान पर दिनों वे इन डस में वेल टू वेस्ट प्रोग्राम पर हली रो है बाकी प्रधानमंत्री बुधा त मजबूत अंग अखर बुधा ताकि भारत इन डस में तमाम घनी तरक्की कई है तबसरो बुध रहा हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: कुछ कलाम आगाज़ कर रहा हूं शेख अयाज़ के कलाम सा, आवाज़ आए आपदा परवीन जो।

कुछ पेशेंट खास खास करूं। पहले मामले जो है डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय मेड के न्यूयॉर्क में 81 UNGA हाई लेवल वीक में उठी है। मैंने जी 6 तारीख

ते उदे पड़े वजीर यूएन जनरल असेंबली के खिताब कंदो ताज़ा हमलन में यूक्रेन रशिया मथा हजार का बुवदी का ड्रोन हमला कया आहिनि तंहिं में मॉस्को जे ऑयल रिफाइनरी के धकायो आहे ॿ माण्हू मारिजी आहिनि ऐं 20 ज़ख़्मी थी पिया आहिनि ईरान जो चवणु आहे त स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस बंदि रहंदो जेसीं अमरीका संदसि शर्तनि खे पूरो नथो करे तंहिं में अची थो वञे बंदिशुनि ऐं शिपिंग बंदिशुनि खे बंदिशुनि में तब्दीली आणणु भारतीय फिल्म मेकर थेजा राव जी अंग फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2026 जो इनाम खटियो आहे एशियन गेम्स में भारत खे शूटिंग में 2 चांदीअ बिला मिलिया आहिनि औरतुनि जी क्रिकेट टीम फाइनल में पहुची वई आहे बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुची वई आहे मर्दनि जी ऐं औरतुनि जी हॉकी टीम पिण पंहिंजी शुरूआति जापान मथां सूबे सां शुरू कई आहे

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वो असा मुलाकात थी सुबे सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे इजाजत सदाई कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं।
1: विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे।

0: पर न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। कार्यशाला का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में हैं और निकट भविष्य में बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर चर्चा की है। इसमें ईरान को पूरी तरह नष्ट करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना या फिर समझौता करना शामिल है। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने मध्यस्थों के जरिए 7 शर्तें रखी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। इस बीच अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इसके अंतर्गत सऊदी अरब में कार्यरत अमरीका के कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की सभी यात्राओं के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अलर्ट यमन के हौसी गुट की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल चुका है। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekatanagar in Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahma Kumari's campaign, Spiritual Awakening for World Renewal, and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahma Kumari's Nadiad on the occasion. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Chief Self Defense Force Chief of the Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks a major milestone in bilateral defense ties. Department of Fisheries will organize a review meeting on development of fisheries in Kolkata today. The meeting will be co-chaired by Union Minister of Fisheries Rajiv Ranjan Singh and West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari. The Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy said the review meeting has been organized to chalk out a roadmap for huge untapped fisheries potential in West Bengal. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will flag off the fourth phase of the Nasha Mukt Punjab Yatra from Talwandi Sabo and Bhatinda today. He will be accompanied by Haryana Chief Minister Naib Singh Saini. The Yatra is focusing on three major challenges presently confronting Punjab. These are growing drug menace, deteriorating law and order, and corruption at every level of governance. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly, UNGA, in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jaishankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. U.S. President Donald Trump has said that he is in deciding mode over the Iran war, warning that big things are going to happen. His remarks came after Tehran said it has shared its conditions with Washington through mediators for reopening the Strait of Hormuz. Trump's comments come ahead of Iranian President Masoud Pezeshkian's expected visit to New York to attend the United Nations General Assembly. In the fifth round of the 46th Chess Olympiad at Samarkand, R. Pragyanand and D. Gokesh secured crucial wins over Anish Giri and Erwin Al-Emi, respectively, to help India seal a 3-1 win over Netherlands yesterday. On the other hand, the women slumped to a 1.5 to 2.5 loss to Poland after R. Vaishali was outplayed by Alexandra Malcevskaya. In the Asian Games, India won a total of 2 silver medals in Nagoya, Japan. The trio of Ella Venil, Vala Rivan, Vidarsh Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10-meter air rifle team event, while Ella Venil also claimed silver in the women's 10-meter air rifle individual event, finishing just behind Japan's Hinata Taichi. And that is the end of this news bulletin.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, टीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का, जिसमें आज आप सुनेंगे सरोज कुमार मोहंती के गाए भजन। इसमें सरोद पर संगत दे रहे हैं दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं नफीस खान और तबले पर संगत दे रहे हैं पशुपति नाथ मिश्रा। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका में सरोज कुमार मोहंती के गाए भजन। संगत कलाकार थे सरोद पर दानिश असलम, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, हारमोनियम पर नफीस खान और तबले पर पशुपतिनाथ मिश्रा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। नमस्कार दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कहते हैं ना, जिंदगी में अगर कोई ऐसा दौर है जिसे हम जितना पीछे छोड़ते जाते हैं उतना ही उसे अपने करीब महसूस करते हैं, तो वो है बचपन। जी हाँ दोस्तों, वो बचपन जब छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती थी, एक टॉफी भी मिल जाती थी ना तो हमारा दिन बन जाता था। बारिश हो जाए तो छतरी से ज्यादा कागज की नाव हमें जरूरी लगती थी। और छुट्टी का मतलब तो होता था बस खेलना, घूमना और दोस्तों के साथ शरारतें करना। साथियों, बचपन वो समय था जब हमें ना कल की चिंता थी और ना आज की जल्दी। बस एक दुनिया थी जिसमें खिलौने हमारे दोस्त थे, पेड़ हमारे झूले थे, गली हमारा खेल का मैदान थी और माँ की आवाज हमारी सबसे सुरक्षित जगह होती थी। तो आइए आज कुछ देर के लिए उम्र की सीढ़ियां उतरते हैं और लौटते हैं उस खूबसूरत दुनिया में, हमारे बचपन की दुनिया में।

दोस्तों, क्या आपको याद है वो लकड़ी की काठी? किसी के पास खिलौने का घोड़ा होता था तो कोई तकिए को ही घोड़ा बनाकर उस पर सवार हो जाता था। बचपन में कल्पना की कोई सीमा नहीं होती थी दोस्तों। एक चादर और वो बन जाती थी तंबू, और दो कुर्सियां बन जाती थी अपना घर, और एक डिब्बा तो उसमें छुपा होता था पूरा खजाना। आज हमारे पास बहुत कुछ है साथियों, लेकिन शायद वो कल्पना नहीं है जो एक साधारण सी चीज को भी खास बना देती है।

बैठे हैं। बारिश का बचपन से कितना गहरा रिश्ता होता था ना, पहली बारिश होते ही स्कूल से लौटते समय रास्ते में पानी जमा होना और मन करे कि जूते उतार कर सीधे पानी में कूद जाओ, कागज की नाव बनाना, उसमें कभी छोटा सा फूल रख देना और फिर उसे पानी की धारा में बहते हुए देखना, कितनी छोटी सी बात थी लेकिन खुशी कितनी बड़ी थी। साथियों, आज हम बारिश देखते हैं तो सोचते हैं ट्रैफिक कितना होगा, ऑफिस कैसे पहुंचेंगे, कपड़े कैसे सूखेंगे, और बचपन में बारिश का मतलब सिर्फ होता था मस्ती।

दोस्तों, बचपन में त्योहार जब आते थे तो उनकी खुशी ही अलग होती थी। दिवाली मतलब नए कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ और सबसे बड़ी बात छुट्टियाँ। होली मतलब रंगों से ज्यादा दोस्तों को रंगने की कोशिश। ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई और त्योहार, बचपन में त्योहार का मतलब सिर्फ सबके घर जाना, कुछ अच्छा खाना और खूब खुशियां बांटना।

साथियों, बचपन की बात हो और स्कूल का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। याद है स्कूल की वो घंटी जिसके बजते ही कभी खुशी होती थी और कभी बहुत डर लगता था। क्लास में बैठकर टीचर का इंतजार करना, पीछे बैठकर दोस्तों से बातें करना, लंच बॉक्स खुलते ही सबका एक दूसरे के टिफिन में झांकना, तुम्हारे टिफिन में क्या है, और फिर शुरू हो जाती थी अदला बदली। साथियों, किसी के पास होता था पराठा, किसी के पास होती थी इडली, तो कोई लाता था पूरी सब्जी। और अपना टिफिन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो दोस्तों, दोस्त का टिफिन ज्यादा अच्छा लगता था। फिर आती थी वो सबसे खास आवाज, छुट्टी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती थी ऐसा लगता था जैसे आजादी मिल गई हो।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई।

0: आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चुरम, वो दाल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भाग ले।
1: खुदा की कसम

साथियों, बचपन में दोस्तियां भी कितनी सच्ची होती थी ना। ना किसी दोस्त का बैंक बैलेंस पता था, ना उसका स्टेटस, ना ये पता होता था कि कौन कितना बड़ा बनेगा। बस इतना पता था, ये मेरा दोस्त है। गली में खेलते खेलते ये झगड़ा हो गया और फिर 5 मिनट बाद उसके साथ फिर खेलना शुरू हो गया। कितनी आसानी से हम एक दूसरे को माफ कर देते थे। शायद बचपन हमें यही सिखाता है साथियों कि रिश्तों में हिसाब नहीं, दिल देखा जाता है। दोस्तों, बचपन सिर्फ उम्र का एक हिस्सा नहीं है, बचपन हमारे अंदर कहीं छिपा रहता है। कहीं कभी पुराने गाने में मिल जाता है, कभी स्कूल की पुरानी कॉपी में, कभी किसी पुराने खिलौने में, तो कभी किसी मोहल्ले की गली देखकर अचानक याद आ जाता है, और कभी माँ की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम फिर से वही छोटे बच्चे बन गए हैं।

दोस्तों, समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो मुझे यानी अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। छोड़ जाती हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, थी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है पीएम किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश है।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो बढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केन्द्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी प्रारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। मनीष चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
8: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
7: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
9: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, और चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
7: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमरीका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिगड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है।

0: वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। नई निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिन्दुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Gujarat beginning today to preside over National Film Awards presentation ceremony at Ekta Nagar in Kevadia tomorrow. External Affairs Minister S. Jayashankar to lead Indian delegation at the 81st session of UN General Assembly in New York. US President Donald Trump, in deciding mode on Iran war, says very big things going to happen soon. US issues security alert for its citizens and staffers in Saudi Arabia amid Houthi attacks. IMD forecasts heavy rain in Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka and Madhya Maharashtra today. And Indian men scored emphatic 3-1 victory over Holland at the Chess Olympiad in Samarkand. President Draupadi Murmu will be on a three-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. We have more from a correspondent.
3: National Film Awards, recognizing achievements in Indian cinema for the year 2024, will be presented by the President tomorrow. Instituted in 1954, the National Film Awards are among the country's highest honors for excellence in cinema. Presented annually by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards recognize creative and technical achievements across feature films, non-feature films and writing on cinema. The winners of the 72nd edition were announced on July 18, 2026 by the chairpersons of the three juries. The awards are divided into three main sections: feature films, non-feature films and best writing on cinema. Along with the Dada Saheb Phalke Award, the highest honor in Indian cinema. Esika Shaw from Akashvani News.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will lead the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA in New York, USA. The External Affairs Minister is scheduled to address the high-level session of the 81st UNGA on the 26th of this month. During the visit, Dr. Jayashankar will also attend various multilateral and bilateral meetings. We have more from a correspondent.
4: Dr. Jayashankar's visit to New York comes as world leaders prepare to gather at the UN headquarters for the annual high-level general debate, scheduled from September 22 to 28. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme, Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly will bring together presidents, prime ministers and senior representatives from all 193 UN member states, who will outline their priorities and positions on major international issues. UN

0: से नष्ट किया जा रहा है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसलाकुन मरहले में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने कहा कि उसने आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शरायत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर दी हैं। सर ट्रंप का यह बयान ईरान के सदर मसूद पेजिशियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कब सामने आए हैं, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी होगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान की हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है तो मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़े वाकयात रोनुमा होने वाले हैं। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर के जरिए अमरीका को अपनी शरायत से आगाह कर दिया है। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सरकारी मुलाजमीन को ताइफ और यम्बू शहरों के तमाम सरकारी और जाती सफर के लिए खसूसी इजाजत हासिल करना होगी। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन ने बताया कि यह पाबंदियां सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई हैं। मिशन ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी शहरियों पर जोर दिया है कि वो मुहतात रहें और तजवीज करदा हिफाजती इकदाम पर पूरी तरह अमल करें। यह अलर्ट यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है, जिनमें रियाज की जानिब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ताजा कशीदगी के बाद पूरे सऊदी अरब में सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। सऊदी हुक्काम ने फजाई हमले के मुमकिन खतरे के तराज में हंगामे इंतबाह भी जारी किया है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुखासमत को कम करने और मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के इक़दामात पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर हो रही है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बताया है कि राजस्थान के मजीद कुछ इलाकों और पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ इलाकों से अगले दो दिन में जुनूब मगरबी मानसून के इख्तिताम की तरफ बढ़ने के हालात हैं। महकमे ने झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटा पड़ने की पेशगोई की है। इसी तरह के मौसमी हालात मशरकी राजस्थान, गुजरात, केरला, माहे, मगरबी बंगाल और शमाल मशरकी भारत के कुछ इलाकों में कल तक इसी तरह के मौसम का इम्कान जाहिर किया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के पांचवें मरहले में भारत के मर्दों की शतरंज टीम ने हॉलैंड के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय खवातीन टीम को पोलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत के मर्दों की टीम ने मुसलसल 5 मैच जीतकर अपनी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा और वो उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ लीडर बोर्ड्स पर मुश्तरक तौर पर सरफहरिस्त है। आर पन्नानंदा ने चंद टॉस के बाद शानदार वापसी करते हुए अनिश गिरी को शिकस्त दी। अर्जुन इरिग्यासी ने सख्त मुकाबले के बाद जॉर्डन वान फॉरेस्ट के खिलाफ मैच ड्रॉ किया। निहाल सईद ने तजर्बाकार लोइक वान वेली के खिलाफ आसानी से ड्रॉ हासिल किया, जबकि डी वुकेश ने अपनी बेहतरीन फॉर्म बरकरार रखते हुए इरविन को शिकस्त दी और 5 खेलों में अपनी चौथी इंफरादी फतह हासिल की। दूसरी जानी भारतीय खवातीन टीम को टूर्नामेंट में पहली बड़ी रूकावट का सामना करना पड़ा। आर वैशाली की शिकस्त महंगी साबित हुई क्योंकि टीम की बाकी खिलाड़ी इस कमी को पूरा न कर सकें, जिसके नतीजे में टीम को 1.5-2.5 से मामूली शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद खवातीन की टीम 8वें नंबर पर आ गई है, तमाम वापसी के लिए अभी 6 राउंड बाकी हैं। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया अमर। पूरी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबार ने मुख्तलिफ खबरों को अपने सफे अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, अक़वामे मुत्तहिदा जनरल इजलास में वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भारत की नुमाइंदगी करेंगे और आलमी अमन इक्तिसादी उमूर, न्यूक्लियर हथियार जैसे अहम मसाइल पर मुल्क का मौकफ रखेंगे। रोजनामा इंकलाब ने अपने आलमी सफे पर ایران امریکہ جنگ سے متعلق خبروں کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے. جنگ ختم کرنے کا فیصلہ اب امریکہ کے صوابدید پر ہے، ایران کا بیان. اور اسی اخبار نے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے خدشے سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے سیکورٹی الرٹ جاری کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کیمپ ڈیوڈ کا دورہ مختصر کر کے وائٹ ہاؤس واپس ہوئے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کا 3 روزہ دورہ کریں گی. وہ کل ایکتا نگر میں قومی فلم ایوارڈ عطا کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ پر فیصلہ کن رجحان. انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں. امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے. بھارت کے ملک موسمیات میں 36 گڑھ، سائنی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، پودوچیری، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے زبردست جیت حاصل کی. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं, अब वक्त है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वर गंगा में कार्यक्रम नीता सूरमा का गायन ठुमरी दादरा, राग है मिश्र भैरवी। तो लीजिए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में ये

श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वर गंगा के कार्यक्रम में नीता सूरमा के गाए ठुमरी दादरा, राग थी मिश्र भैरवी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

नजर डालते हैं आज नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। वैसे थोड़ी ही देर के बाद सुबह का ही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे हम दोबारी ताला और नात रसूल करीम। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम सुनिएगा। खबरें 9:50 पर नशर होंगी और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम्मी फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर की जाएंगी और 10:30 पर सुनिएगा डॉक्टर अजहर अफसर का लिखा हुआ ड्रामा जिसका उनवान है हादसा। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नशर होंगे। 11:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मेरे सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम में आज पानीपत शहर के हवाले से मालूमाती तकरीर नशर होगी। दिन में 1 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम सुबगाही। हम दोबारी ताला और नाते रसूल समात फरमाइए। पेश कर रहे हैं जनाब अबरार किरतपुरी।

मालूम होती है।

0: 1928 में आज ही के दिन माय वीकली रीडर मैगजीन की शुरुआत हुई और 2000 में आज ही के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। 2008 में आज ही के दिन रिलायंस के कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन शुरू हुआ। जी हाँ, और अब समय है उन महान विभूतियों को याद करने का जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: शुरू करेंगे आप
0: प्रमोद जी। सबसे पहले मैं आज याद कर रहा हूँ इनकी आज पुण्यतिथि है, उनका नाम है ताराचंद बड़जात्या। आज इनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 10 मई 1914 को राजश्री भवन कुचामन सिटी जोधपुर राज्य ब्रिटिश भारत में हुआ था।
1: वही है जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शन शुरू
0: किया। हाँ जी हाँ, बोल रहा हूँ अभी
1: जी।
0: उन्होंने 1960 से 1980 के दशक तक कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना की जो आज भी फिल्मों का निर्माण कर रही है। उनकी मुख्य फिल्में मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों पर आधारित और परिवार केंद्रित होती थी। उनके द्वारा निर्मित कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं दोस्ती, जीवन मृत्यु, उपहार, पिया का घर, सौदागर, गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से, सावन को आने दो, मैंने प्यार किया आदि।
1: बट आपने एक फिल्म का नाम नहीं लिया।
0: कई फिल्में हैं।
1: दुल्हन वही जो पिया मन भाए।
0: हाँ, पहले एक मेडली सुनते हैं।
1: अच्छा, मेडली।
0: हाँ, पहले एक मेडली सुनते हैं।

0: प्रमोद जी, आप एक फिल्म की बात कर रहे थे, इनकी ताराचंद बढ़ जाती है आपकी।
1: जी बिल्कुल, दुल्हन वही जो पिया मन
0: जी। हाँ जी हाँ।
1: और वहाँ पे हमारे साउथ के सुपरस्टार सिंगर येशुदास,
0: हाँ हाँ,
1: उनका बहुत प्यारा गाना है
0: जी। हाँ
1: क्या
0: जी।
1: मैं सुना दूँ उसको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आज जन्मदिन है गुलशन ग्रोवर का। उनका जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में हुआ है। वे एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में अपने नकारात्मक किरदारों से प्रभाव छोड़ने की अपनी काबिलियत के कारण उन्हें हिंदी सिनेमा के बैड मैन के तौर पर जाना जाता है। उनकी अभिनीत फिल्मों में सबसे बड़ा खिलाड़ी, मोहरा, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, टार्जन द वंडर कार शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनका संवाद।
1: गोल गप्पे, ओए कांस्टेबल, तूने हमको बताया नहीं कि हमारे गोल गप्पे आ गए?
2: आप मसरूफ थे सरकार।
1: ओ जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खाओगे गोल गप्पे?
3: मेरे पिताजी कहाँ हैं?
1: मेरे पिताजी को तड़के बड़े थाने ले गए, वहाँ जाकर ढूंढो।
3: लेकिन उनका जुर्म क्या है?
1: आतंकवादी है वो, मिले हुए आतंकवादी। तुझे मालूम है मेरे थाने में चिल्लाड़ा गैर कानूनी है।
0: जाने से पहले मुझे पूरे करने हैं कई अधूरे काम, मसलन करना है एक नदी से संवाद जो बहती है मेरे अगल बगल, लिखना है एक लंबा खत पहाड़ों पर उतरती सुरमई शाम के नाम, पूछना है प्रवासी पक्षियों से कि वे कैसे रखते हैं अपने परों में हजारों मील उड़ान का हौसला, पहाड़ों पर जाती पगडंडियों में खोजने हैं पुरखों के कदमों के निशान, भेजनी है ढेरों शुभकामनाएं। ये काव्य रचना है गुरमीत बेदी की। उनका आज जन्मदिन है। उनका जन्म 21 सितंबर 1963 को शाहबाद मारकंडा हरियाणा में हुआ है। उन्होंने 1983 से 1990 तक जालंधर से प्रकाशित हिंदी दैनिक वीर प्रताप में उप संपादक और फीचर संपादक के रूप में कार्य किया। आपको कविता संग्रह मौसम का तकाजा पर हिमाचल साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा पंजाब कला साहित्य अकादमी, राजस्थान पत्रिका उत्कृष्ट सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज जन्मदिन है अभिनेत्री करीना कपूर का।

0: उनका जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। वे सन 2000 से हिंदी सिनेमा में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं और 2024 तक वे हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। आइए सुनते हैं उनका एक गीत।
1: जी

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ही आकाशवाणी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्बार से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगी। वो कल एकता नगर में कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। वजीर खारजा जयशंकर न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान जंग पर फैसला कुन रुझान, उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे का आगाज कर रही हैं। वो कल एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब की सदारत करेंगी। सदर जमहूरिया साल 2024 के भारतीय सिनेमा में हुसूलियाबियों को तस्लीम करते हुए कल कौमी फिल्म अवार्ड अदा करेंगी। इन अवार्ड का सिलसिला 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। ये अवार्ड हर साल इतला नशियात की वजारत की तरफ से गैर फीचर फिल्म और गैर फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड के तहत सिनेमा में तकनीकी और तकनीकी सुरसूदलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सरनशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अदा किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वक्त की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब आलमी रहनुमा 22 से 28 सितम्बर तक मुनाकिल होने वाले आला सतह के सालाना जनरल बहस मुबाहिसे के लिए अकवाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में यकजा होने की तैयारी कर रहे हैं। अकवाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली का ये 81वां इजलास एतमाद की बहाली, यकसर तब्दीली का बंदोबस्त, एक अकवाम मुत्तहदा जो सबको खिदमात फराहम करती है के मौजू पर मुनाकिद किया जा रहा है। इस जनरल असेंबली में अकवाम मुत्तहदा के सभी 193 रुकन ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा होंगे और बड़े बैन अक्वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौकिफ तय करेंगे। अकवाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने आलमी रहनुमाओं से कहा है कि वह अकवामी तआवुन को मजबूत करें, जैसा कि वो जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क में यकजा हो रहे हैं। अकवाम मुत्तहदा के मुताबिक 81वें इजलास में आलमी तआवुन में नई जान पैदा करने, लगातार तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने और अमन वकार और बराबरी के लिए इज्तिमाई इकदाम को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम मोदी के अपने ओहदे की खिदमात अंजाम देते हुए 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उनका सफर जनसेवा से देश सेवा के उसूल और आवामी खिदमत के तय उनके लगातार अजम पर मबनी है। हुकूमत जो खिदमात और अच्छी हुक्मरानी के तस्वुर से मुतहरिक है, 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के मकसद के तय काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी इख्तियारात के जरिए इस अर्ज से लोगों की जिंदगियों में अक्सर तब्दीली आ रही है। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी तादाद में पीएम किसान स्कीम से फायदा पहुंच रहा है। अहल किसान हर साल 3 बराबर की किस्तों में 6,000 रूपये की माली मदद हासिल कर रहे हैं। ये रकम उन्हें बराह रास्त बैंक खातों मिल रही है। मदद किसानों के लिए काफी फायदेमंद है कि वो कीमियावी खादों, बीजों और दिगर जरी कामों को पूरा कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत किसानों की जरूरतों के पेश नजर लगातार काम कर रही है। इस स्कीम का आगाज 2019 में किया गया था और अभी तक 4,47,000 करोड़ से ज्यादा की रकम 24 किस्तों में किसानों को दी जा चुकी है। 23वीं किस्त से 9,49,00,000 किसानों को फायदा पहुंचा है। मरकजी हुकूमत ने अब पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस स्कीम के लिए 3,15,000 करोड़ की माली मदद मुख्तस की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। सदियों के इंतजार के बाद अजीम शान राम मंदिर की तामीर से अयोध्या के एक नए बाब का आगाज हुआ है, जो भगवान राम का शहर है और जिसकी वजह से मजहबी सियाहत और तरक्की के आलमी नक्शे में यह शहर इम्तियाजी हैसियत का हामिल है। मरकजी और रियासती सरकारों की कोशिशों से अयोध्या में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ और यह शहर सनातन धर्म का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में हैं। उन्होंने खबरदार किया कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने कहा कि उसने आबराए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शरायत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर दी है। सदर ट्रंप का यह बयान ईरान के सदर मसूद पेजिशियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आए, जहां वो अकवा मुतहदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमरा एक आला सतह का वक्त भी होगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से कहा कि अगर ईरान की हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है तो मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़े वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर के जरिए अमरीका को अपनी शरायत से आगाह कर दिया है। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सरकारी मुलाजिमों को ताइफ और यंबू शहरों के तमाम सरकारी और जाती सफर के लिए खसूसी इजाजत हासिल करना होगी। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन ने बताया कि ये पाबंदियां सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई हैं। मिशन ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी शहरियों पर जोर दिया है कि वो मोहतात रहें और तजवीज करदा हिफाजती इकदाम पर पूरी तरह अमल करें। यह अलर्ट यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है, जिनमें राज की जानिब दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ताजा कशीदगी के बाद पूरे सऊदी अरब में सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। सऊदी हुकाम ने फजाई हमले के मुमकिन खतरे के तनाजुर में हंगामी इंतबाह भी जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुखासमत को कम करने और मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के इकदाम पर बातचीत करेंगे। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर हो रही है। भारत के महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बताया है कि राजस्थान के मजीद कुछ इलाकों और पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ इलाकों से अगले दो दिन में जून मगरबी मानसून के अख्तितम की तरफ बढ़ने के हालात हैं। महकमे ने झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ गरज चमक के साथ छींटा पड़ने की पेशगोई की है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें मरहले में भारत के मर्दों की शतरंज टीम ने हॉलैंड के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय खवातीन टीम को पोलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत के मर्दों की टीम ने मुसलसल 5 मैच जीतकर अपनी कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा और उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ लीडर बोर्ड्स पर मुश्तरक तौर पर सरफहरिस्त है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात का 3 रोजा दौरा करेंगी। वो कल एकता नगर में कौमी

इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए डॉक्टर अजहर अफसर का तहरीर करदा ड्रामा हादसा।

0: लाइट का स्विच कहाँ है? मगर अभी तो दिन है। हाँ, पंखा। उफ़, ये क्या हो गया? सारा सफर अच्छा कटा मगर ये वापसी पर क्या हो गया? कोई आ रहा है।
1: अरे नूर, अरे किधर छुप रही हो भाई?
0: कौन? मकसूद भाई? नहीं तो मैं क्यों छुपूंगी? कहिए वो
1: क्या बात है, तुम बहुत घबराई हुई हो।
0: कौन? मैं? नहीं तो बैठिए।
1: सब खैरियत तो है ना?
0: हाँ सब खैरियत है। कहीं गए थे?
1: नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया था। ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो?
0: मैं हाँ वो जरा सहेली के घर गई थी।
1: सहेली के घर?
0: हाँ, मगर वो मिली नहीं, वापस लौट आई। वो क्या गर्मी है।
1: गर्मी? और इस ठंडे मौसम में ये पंखा?
0: रहने दीजिए मकसूद भाई, बंद मत कीजिए।
1: तुम तो पसीने पसीने हो रही हो, क्या बात है?
0: कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही।
1: जरूर कोई बात है।
0: कुछ नहीं मकसूद भाई।
1: जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही।
0: मैंने कहा ना कुछ नहीं। कोई बात नहीं। और अरे कुछ हो तो बताओ ना।
1: अभी अभी बाहर एक एक्सीडेंट।
0: एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट?
1: वो किसी ने एक नौजवान को टक्कर मार दी है अपनी कार से।
0: ओह,
1: और फरार हो गया।
0: फरार हो गया? कौन था?
1: पता नहीं कौन था या कौन थी, अभी कुछ पता नहीं चला।
0: और वो नौजवान?
1: बुरी तरह जख्मी हुआ है, फुटपाथ पर पड़ा है, शायद बेहोश है।
0: बेहोश?
1: हाँ बेहोश, माथे से धल धल खून बह रहा है।
0: खून?
1: हाँ आओ देखें।
0: कौन? मैं? नहीं नहीं, आप जानते हैं मुझसे खून नहीं देखा जाता। जाइए आप देखाइए भाई।
1: मैं तो देख कर आ रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है।
0: जिंदा है ना?
1: हो भी तो, अब तक तो जिंदा है, लेकिन
0: लेकिन
1: कुछ देर बाद मर जाएगा।
0: ओ खुदा।
1: क्यों? तुम क्यों परेशान हो?
0: मैं नहीं नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ, मैं तो वैसे ही। मकसूद भाई वो
1: हाँ?
0: फिर देखा ही ना वो कैसा है।
1: अरे जाने दो, हमें क्या करना है
0: भाई। मालूम तो हो वो कौन नौजवान है, कहाँ का रहने वाला है, देसी है या परदेसी है। बहुत ज्यादा जख्मी तो नहीं हुआ? और ये कि मर गया या जिंदा है?
1: मैं तो समझता हूँ मर गया होगा।
0: मर गया?
1: अरे तुम उठकर क्यों खड़ी हो गई?
0: बस ऐसे ही बेचारा।
1: पता नहीं किसने ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट किया है। मैं तो समझता हूँ जानबूझकर किया होगा।
0: जानबूझकर भला कौन एक्सीडेंट करेगा? एक्सीडेंट तो उसी को कहते हैं ना जो अनजाने में हो जाए। भला कोई किसी को जानबूझकर क्यों मारेगा, और वो भी कार से?
1: तुम कैसे कह सकती हो?
0: नहीं नहीं, वैसे ही मेरा ख्याल है।
1: तुम भी तो अभी भी बाहर से आई हो, देखा नहीं उसे?
0: नहीं तो मैंने नहीं देखा, ये एक्सीडेंट शायद बाद में हुआ।

0: था।
1: मालूम तो ऐसे ही होता है।
0: मकसूद भाई
1: हाँ?
0: प्लीज जाइए ना, मालूम कीजिए क्या हुआ और
1: हाँ?
0: और ये कि अब क्या हाल है उसका, प्लीज जाइए ना।
1: भाई तुम इस कदर क्यों?
0: इंसानी हमदर्दी है और क्या, और फिर अपने घर से करीब ये हादसा हुआ है इसलिए और क्या।
1: जाता हूँ।
0: ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, खुदाया मेरी मदद करना। खाम खा कैसे बुरे चक्कर में फंस गई, क्यों मैंने सुबह सवेरे पापा की कार निकाली, सारी ट्रिप तो अच्छी रही, ये आखिर में किस बला में फंस गई मैं। कितना खून बह रहा था उसके माथे से, पापा भी घर पे नहीं है, वो आ रहा है।
2: नूर?
0: ओह मम्मी।
2: नूर?
0: जी मम्मी।
2: क्या बात है, कुछ परेशान हो? ये चेहरा कैसा हो रहा है तुम्हारा?
0: जी मैं नहीं तो कुछ भी नहीं।
2: टहल क्यों रही हो, बैठो ना।
0: जी लीजिए बैठ गई।
2: इस ठंडे मौसम में पंखा?
0: जी वो ऐसे ही। ना ना बंद मत कीजिए, रहने दीजिए।
2: तुम तो पसीने से शराबोर हो रही हो, तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
2: मैं तुमसे अकेले में बात करने आई थी।
0: अकेले में?
2: हाँ शादी के बारे में।
0: ओह क्या,
2: तुमने क्या सोचा है?
0: शादी? हाँ हाँ शादी। मम्मी आपको शादी की पड़ी हुई है और मैम।
2: क्या हुआ तुमको, कोई और परेशानी है?
0: नहीं नहीं परेशानी नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। ऐसा है अभी शादी की क्या जरूरत है, मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है मम्मी?
2: क्या बात है, तुम हर बार मेरी बात टाल रही हो, इधर उधर क्या देख रही हो? सचमुच तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है नूर, तुम लेट जाओ आराम करो।
0: नहीं नहीं मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए।
2: अच्छा तो उस लड़के के घर वालों को जवाब भिजवा दूँ?
0: जवाब? हाँ हाँ भिजवा दीजिए।
2: मगर क्या जवाब भिजवाऊँ, हाँ या नहीं?
0: मम्मी अभी तो कुछ जवाब मत भिजवाइए, एक दो दिन। नहीं नहीं दो तीन हफ्ते ठहर जाएं।
2: दो तीन हफ्ते?
0: हाँ
2: वो लोग नहीं ठहरेंगे, ऐसा अच्छा घराना है, लड़का पढ़ा लिखा है, MBBS इसी साल किया है, प्रैक्टिस जम जाए तो खूब तरक्की करेगा।
0: मम्मी
2: एक बात बताओ मुझे।
0: क्या मम्मी?
2: क्या तू किसी और से, कोई और लड़का है उससे शादी करना चाहती है?
0: नहीं नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं।
2: क्या बिल्कुल नहीं?
0: ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
2: फिर
0: ऐसा है मम्मी, जब मुझे शादी करनी होगी ना मैं आपसे कह दूंगी, सब बता दूंगी। हाँ
2: हाँ क्या,
0: आप जिससे कहेंगी उसी से शादी कर लूंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं आपसे सब कुछ कह दूंगी, आपको हर बात बता दूंगी, हर बात बता दूंगी आपको।
2: अच्छा आप... अच्छा
0: मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है मम्मी,
2: लाओ मैं दवा दूं।
0: नहीं नहीं वो
2: नसीबन को भेज दूं?
0: जी नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं, मैं जरा कमरा बंद करके सोऊंगी।
2: कोई टेबलेट ले लो।
0: हाँ मैं सर दर्द की कोई गोली ले लूंगी या बाम लगा लूंगी।
2: ये लो।
0: थैंक यू मम्मी, अब आप जाइए।
1: नूर ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही थी है? इतनी सी बात के लिए जहर खा रही थी?
0: ओहो मकसूद भाई मैं जहर नहीं खा रही थी, सर दर्द की गोली खा रही थी।
1: ओहो तो मैंने अच्छे खासे गिलास का खून कर दिया।
0: खून? मकसूद भाई आपने क्या कहा खून?
1: नूर
0: आप उस नौजवान की खबर लेने गए थे ना, क्या खबर है, कैसा है वो?
1: कौन?
0: वही जिसके बारे में आप बता रहे थे कि कोई नौजवान किसी कार से टकरा कर गिर पड़ा है, बेहोश है।
1: हाँ हाँ वो।
0: कैसा है वो?
1: अब भी बेहोश है।
0: अब तक बेहोश है, किसी ने उठाया नहीं?
1: मेरे जाने तक 8-10 आदमी जमा हो चुके थे, उसे सामने वाले घर में ले गए हैं। नूर कहीं ये एक्सीडेंट तुमने, मेरा मतलब है तुमसे तो नहीं हुआ?
0: हाँ, हाँ, मकसूद भाई मुझसे ही हुआ ये एक्सीडेंट।
1: अरे बैठो बैठो इतनी ध्यान से बैठो, अरे बैठ जाओ ना। अच्छा बताओ ये हुआ कैसे, तफसील से?
0: तफसील से

0: हाँ सब सच सच।
1: क्या तफसील बताऊ, सुबह सवेरे गैरेज में से कार निकाली।
0: पापा ने तुम्हें कार चलाने से मना किया है और सख्ती से मना किया है, तुमने अब तक अपना लाइसेंस भी नहीं बनवाया है। खैर फिर
1: क्या, मैं सुबह सवेरे कार लेकर घर से निकली और इधर उधर सुनसान सड़कों पर घूमती रही।
0: उधर तो कोई हादसा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं,
0: कोई पूछगछ?
1: कुछ नहीं, बस जब मैं वापस हो रही थी तो अपने गेट के पास अचानक कोई मेरी कार के सामने आ गया।
0: कोई सड़क पार करता होगा
1: शायद। जैसे ही उस आदमी आकर गिरा, मैंने गाड़ी अपने गेट में मोड़ी और
0: इस कमरे में आकर बैठ गई।
1: बैठ कहाँ गई, आप नहीं जानते भाईजान उस वक्त से मैं किस कदर परेशान हूँ।
0: वाह वाह वाह, एक नौजवान को कार से टक्कर मार दी और पलट कर भी ना देखा।
1: वो गिरा तो उसके माथे से खून बह रहा था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देख सकी।
0: अब क्या होगा?
1: आप बताइए ना मकसूद भाई, अब क्या होगा? यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ। खुदा के लिए बताइए ना क्या होगा, उसका क्या हाल है?
0: ये बताया ना, बेहोश है। सोचता हूँ उसे यहाँ उठा कर ले आऊं।
1: यहाँ? नहीं नहीं।
0: बड़ी सफाक हो, एक तो खून किया, दूसरे
1: खून? मैंने किसी का खून नहीं किया।
0: अगर वो मर जाए तो?
1: मैंने जानबूझकर तो किसी को टक्कर नहीं मारी।
0: किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं?
1: मैं समझती हूँ नहीं।
0: लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, ये कौन है, इस बुरी तरह किसकी कार से जख्मी हुआ है, कौन चला रहा था, कहाँ चला गया, किसी ने रोका नहीं।
1: आपने क्या कहा?
0: मैं क्या कहता, औरों की तरह मैं भी चुप था, कुछ कहता तो सब मुझ पर ही पलट पड़ते। पुलिस का एक जवान भी आ गया था।
1: पुलिस? पुलिस का जवान?
0: मैंने उससे कहा कोई नहीं जानता भाई ये कौन है और किसकी कार से जख्मी हुआ है, कोई कार का नंबर भी नहीं देख सका, कौन बेरहम है जो इस कदर खतरनाक एक्सीडेंट करके फरार हो गया। लोग उसी कांस्टेबल की मदद से उस नौजवान को सामने वाले घर में ले गए।
1: कोई डॉक्टर नहीं आया?
0: एक दो आदमी डॉक्टर को लेने गए तो हैं, मगर मेरा ख्याल है डॉक्टर के आने तक वो बचेगा नहीं।
1: मकसूद भाई
0: हाँ, बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है।
1: पुलिस आ गई है तो उस आदमी की तलाश करेगी।
0: किसकी?
1: उसकी, जिसने एक्सीडेंट किया है, और ये भी पता चलाएगी कि वो बदनसीब नौजवान कौन है, कहाँ का रहने वाला है।
0: मगर सब कुछ होश में आने के बाद होगा ना?
1: उसे होश आ जाएगा
0: तो क्या होश में नहीं आना चाहिए?
1: नहीं नहीं मकसूद भाई, ऐसा मत कहिए, खुदा के लिए उसे दवाखाने ले जाने का बंदोबस्त कीजिए ना।
0: एम्बुलेंस के लिए मैंने फोन तो किया है।
1: दवाखाने में वो ठीक हो जाएगा, उसे होश भी आ जाएगा।
0: लेकिन होश आ जाने पर वो अपने बारे में भी बता देगा, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और ये भी बताएगा कि कार कौन चला रहा था, कार का रंग कैसा था, शायद उसे कार का नंबर भी याद हो।
1: वो तो आफत है।
0: दफा 302।
1: कत्ले अमद कैसा, ये तो इत्तेफाकी हादसा है।
0: वो इत्तेफाकी हादसा क्यों बताएगा, वो तो संगीन से संगीन जुर्म बनाने की कोशिश करेगा।
1: फिर तो उसे होश नहीं आना चाहिए।
0: क्या कह रही हो, कब तक होश नहीं आना चाहिए?
1: कब तक? कुछ दिनों तक।
0: फिर तो केस और खराब हो जाएगा, ज्यादा बेहोशी अच्छी नहीं। हा? कहीं बेहोशी बेहोशी में वो इस जहां से गुजर गया तो पुलिस बख्शेगी नहीं।
1: पुलिस? पुलिस भाई जान,
0: तुमने तो बहुत बुरा किया नूर। ठहरो, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ।
1: क्या होगा, क्या करूँ?
2: मुफक्किरों ने कहा है जब आदमी परेशान हो तो उसे कोई किताब पढ़नी चाहिए। किताब?
1: किताब?
2: हाँ ये रही किताब। जब पानी खल खल बोलने लगे तो एक बड़े चमचे में टुकड़ा लेकर पानी का छींटा देकर दबा कर देखिए कि घुल गया है या नहीं, वरना दाल नहीं गलेगी।
1: ओ तौबा तौबा, ये तो पकवान की किताब है।
2: हाँ देखो इस किताब में क्या है। मौजूदा दौर में तहकीक की बदबख्ती ये है कि इसे शुदा गैर इल्मी और गैर अदबी मुफादात के हुसूल का तारोपोद बना लिया गया है। इसकी तौजीह एक तो अदबी सियासत और शोभा जाति मसाइल का दबाव है, दूसरे गैर जिम्मेदार सहल निगारी और नाकर्दाकारी। हो पता नहीं क्या है, हाँ समझ में नहीं आता।
3: हेलो नूर।
2: शीला। हेलो शीला, आओ आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आई।
3: बहुत

0: दिनों बाद। अरे भाई, कल ही तो मिली थी।
1: कल शाम ना। हाँ, कल शाम ही तो तुमसे मिलना हुआ था।
0: ये मकसूद भाई कहाँ गए हैं? बड़ी जल्दी में थे।
1: पता नहीं, वो मकसूद भाई ना, हाँ वो जरा उधर का ख्याल रखने गए हैं।
0: उधर का ख्याल?
1: हाँ।
0: किधर का?
1: वो उधर का, बाहर का नहीं, वो शायद अपने किसी दोस्त से मिलने गए हैं। तुम बैठो ना, इत्मीनान से बैठो।
0: मैं ठीक हूँ, तुम क्यों टहल रही हो?
1: वो
0: बैठो ना, कोई खास बात है?
1: नहीं तो कोई खास बात नहीं है। बोलो क्या पियोगी?
0: भाई वो शरबत पिलाओ, खून की तरह सुर्ख।
1: खून? खून की तरह सुर्ख?
0: हाँ भाई, वो लाल शरबत जो तुमने पिछले हफ्ते ही तो पिलवाया था।
1: ओह,
0: बहुत मजेदार था। मगर नूर,
1: हाँ
0: तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है?
1: कुछ नहीं। नहीं तो
0: जरूर कोई बात है, बैठ इधर। अब बता क्या बात है? मेरी इतनी अजीज सहेली और मुझसे ही छुपा रही हो?
1: नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बात हो तो बताओ।
0: देखो, तुम कैसी ही मुश्किल में हो, मुझसे मत छुपाओ। मेरा भाई वकील है, मालूम है बड़ी से बड़ी मुसीबत चुटकी बजाते दूर कर देगा।
1: हाँ, तुम्हारे भाई वकील है ना, वो क्या नाम है?
0: गेट।
1: जरा उनसे मशवरा करना था।
0: वही तो पूछ रही हूँ इतनी देर से, बताओ क्या बात है?
1: वो मैंने,
0: हाँ
1: तुमने, तुम किसी से कहोगी तो नहीं?
0: कैसी बातें कर रही हो?
1: वो शीला मुझसे।
0: मुझसे क्या?
1: शीला मुझसे, मुझसे खून हो गया है।
0: खून?
1: शीला, शीला चुप रहो, कोई सुन लेगा। खून? खून? ओहो, ये क्या कर रही हो? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था।
0: मैं जा रही हूँ।
1: सुनो शीला, शीला सुनो, कहाँ जा रही हो?
0: मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे जाने दो,
1: अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। खून? शीला,
0: या खुदा, ये तो चीखती चली जा रही है, वो पता नहीं क्या करे। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ?
1: पता नहीं कौन है। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, बजने दो।

0: बंद हो गई। अच्छा हुआ मैंने रिसीवर नहीं उठाया, पता नहीं कौन था। कौन?
1: जी मैं।
0: आप?
1: जी
0: आप यहाँ कैसे आ गए?
1: जी इस तरफ से, सीढ़ियों से।
0: लेकिन आप हैं कौन?
1: आपने मुझे नहीं पहचाना?
0: जी नहीं।
1: मैं
0: ओफो, जल्दी से फरमाइए ना आप कौन हैं?
1: मैं आपकी सहेली।
0: सहेली?
1: आपकी सहेली शीला का भाई हूँ।
0: शीला के भाई हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं?
1: जी बैठा हूँ।
0: अजीब आदमी है आप।
1: मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ।
0: मदद? कैसी मदद?
1: आपको मेरी मदद नहीं चाहिए?
0: जी नहीं, मुझे इस वक्त और ज्यादा परेशान मत कीजिए। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, जाइए।
1: बहुत खूब, मैं जा रहा हूँ। देखिए मैं एक एडवोकेट हूँ, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया था।
0: क्या आप एडवोकेट हैं?
1: जी
0: ठहरिए ठहरिए ना, जरा ठहरिए।
1: जी
0: पहले आप ये बताइए कि आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? मैं अभी मंगवाती हूँ।
1: जी जी वो ऐसा है कि पहले ये बताइए कि हुआ क्या है।
0: आप शीला के भाई हैं ना?
1: जी हाँ।
0: देखिए अभी अभी मैंने उसे अपनी अजीज सहेली जानकर सरा सी बात बताई और वो चीखती चिल्लाती बाहर भागी।
1: देखिए देखिए आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, शीला नादान है, बहुत भोली है, उसके चीखने चिल्लाने से भी होने वाला कुछ नहीं है। अब देखिए मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूँ, किसी किस्म की कोई फिक्र मत कीजिए और खुलकर हर बात बयान कर दीजिए।
0: जी
1: देखिए ये तो आप जानती हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए।
0: जी हाँ जानती हूँ।
1: तो फिर फरमाइए।
0: जी ऐसा हुआ, पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा
1: स्पेशल मजिस्ट्रेट है, मैं जानता हूँ।
0: वो 4 रोज के लिए बाहर गए हैं।
1: जी वो कहाँ गए हुए हैं ये बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। जी
0: जी आज सुबह मैंने उनकी गाड़ी
1: अच्छा यानी कार,
0: जी हाँ,
1: बाहर निकाली।
0: मुझे कार चलाने का बेहद शौक है।
1: मगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है?
0: जी बिल्कुल नहीं, मगर मुझे कार चलाने का बहुत शौक है।
1: यानी इंसानी जिंदगियों से खेलने का बहुत शौक है।
0: पापा मुझे हमेशा मना करते हैं। मैंने सुबह कोई 7:15 बजे कार निकाली।
1: घर के किसी फर्द को बताए बगैर?
0: जी हाँ।
1: कहाँ कहाँ घूमी फिरी आप?
0: सबसे पहले तो मैं उस तरफ गई थी, यानी पुराने शहर की तरफ।
1: जी।
0: फिर जू से होती हुई वापस हो गई।
1: जी खूब।
0: जी खूब नहीं, जब मैं घर वापस हो रही थी घर के फाटक के पास।
1: फाटक के पास?
0: मैं कार मोड़ने ही वाली थी कि अचानक एक नौजवान कार के सामने आ गया।
1: कार के सामने आ गया?
0: हाँ।
1: या आपने उसे कार के सामने ले लिया?
0: ओह मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है न जाने कहां से एक नौजवान अचानक मेरी कार के सामने आ गया और लड़खड़ा कर गिर पड़ा।
1: वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा, यानी आपने बड़े जोर से डैश किया?
0: मुझे कुछ याद नहीं है, बस इतना देखा मैंने कि वो लड़खड़ा कर गिरा, उसकी पेशानी से खून बह रहा था।
1: खून?
0: जी हाँ, फौरन मैंने कार अपने गेट के अंदर ली, गैरेज में बंद की और यहाँ भाग गई इस कमरे में।
1: आपने जब इस नौजवान को मारने की कोशिश की?
0: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने उसे मारने की कोशिश की।
1: लेकिन वो मरा नहीं।
0: आप मेरे एडवोकेट हैं।
1: बिल्कुल, खैर जो कुछ भी हुआ हो, आपके इस एक्सीडेंट के वक्त सड़क पर कौन कौन था?
0: मेरा ख्याल है कोई नहीं था।
1: कोई राहगीर?
0: मैंने कहा ना कोई नहीं था।
1: नौजवान होश में आया या मर गया?
0: पता नहीं, खुदा करे वो बच जाए।
1: ताकि आप पर कत्ल अमद का केस कर सके। क्यों?
0: मैं तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते उसके जीने की दुआ कर रही हूँ। अरे आप हंस रहे हैं? वो ये हंसने की बात नहीं है, मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ और आप हैं क्या कह कहे लगा रहे हैं। सोचिए कितना संगीन मसला है, किसी की जान पर बली हुई है और आप हंस रहे हैं।
1: देखिए एक अच्छा वकील हर संगीन मसले पर कह कहे लगाता है और एक अच्छा डॉक्टर खतरनाक से खतरनाक मर्ज पर मुस्कुराता है या मुस्कुराता हुआ इलाज करता है।
0: मेरी जान निकली जा रही है और आप कह कहे लगा रहे हैं।
1: कुछ नहीं होगा।
0: कुछ नहीं होगा?
1: जी कुछ नहीं, सिर्फ बगैर लाइसेंस कार चलाने के जुर्म में हो सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपका चालान हो जाए।
0: जी
1: और फास्ट ड्राइविंग के तहत भी चालान किया जा सकता है। और हो सकता है?
0: और भी हो सकता है।
1: जी हाँ। हो सकता है पुलिस केस बन जाए और
0: और
1: भी बहुत कुछ हो सकता है। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए मैं आपका कानूनी मुशीर हूँ, अब आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। मैं आपका केस लड़ूंगा, ये केस और हर केस। लीजिए इस फॉर्म पर दस्तखत कीजिए, यहाँ ये लीजिए कलम।
0: कहाँ?
1: यहाँ दस्तखत फरमाइए।
0: जी।
1: वाह, नहायत खुशखत।
0: जी।
1: आप कुछ मत सोचिए और न किसी किस्म की कोई फिक्र कीजिए।
0: मगर वो एक्सीडेंट, वो खून, वो नौजवान।
1: अरे किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, बेफिक्र होकर सो जाइए। जी हाँ, सो जाइए।
0: इस वक्त तो नींद नहीं आ रही है।
1: अरे ना आए तो ही सो जाइए। जब कोई शख्स मेरा क्लाइंट बन जाता है,
2: समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं।
1: ओहो, अच्छा मखसूस साहब आओ।
2: जी मैं।
1: देखिए ये मेरी क्लाइंट बन चुकी।
2: मुबारक, चलिए आज एक केस तो मिला।
1: मैं चलता।
0: गिरधर साहब वो कुछ रुपए।
1: देखिए सारा बिल केस जीतने के बाद, मैं पेशगी रकम किसी से नहीं रहता।
0: मकसूद भाई, उस नौजवान का क्या हुआ, होश आया?
2: नहीं अभी नहीं।
1: उसका होश में ना आना ही बेहतर है। होश में आते ही वो आपकी कार का नंबर और सारी तफसील बता देगा।
2: टक्कर के बाद वो गिरते ही बेहोश हो गया है, उसने कार का नंबर कब देखा होगा?
0: खुदा तुम्हें खुश रखे मकसूद भाई।
2: वही हो सकता है वो होश में आने के बाद कार का नंबर बता दे। खैर, ये सारी बातें तो नौजवान के होश में आ जाने के बाद की हैं।
1: अब फिर भी आप किसी किस्म की कोई फिक्र मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ।
0: आप जा रहे हैं?
1: देखिए ये रहा मेरा कार्ड।
0: जी।
1: गिरधर गिरधारी गोपालाचारी निर्दोष एडवोकेट।
0: जी।
1: इस पर मेरे चार टेलीफोन नंबर हैं। मैं इन चारों टेलीफोन नंबर्स पर अवेलेबल हूँ।
0: जी।
1: अच्छा।

0: एडवोकेट साहब तो गए।
1: अब क्या होगा भाईजान?
0: क्यों?
1: पता नहीं अब क्या हो, वो होश में आएगा
0: ना है, ये भी तो हो सकता है।
1: खुदा के लिए ऐसा मत कहिए।
0: खैर चलिए, आपकी खातिर वो होश में आ गया, फिर
1: होश में आ जाए ना तो उसे आप यहाँ ले आइए। किसी भी तरह मैं उस नेक दिल नौजवान से माफी मांग लूंगी और उसके सामने अहद करूंगी कि अब बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाना, क्या कार की तरफ देखूंगी भी नहीं।
0: हाँ, मगर पता नहीं वो नौजवान किस तबीयत का आदमी है।
1: क्या मतलब?
0: यही कि वो यहाँ आने को तैयार होता है या नहीं। यहाँ आता है तो तुम्हें देखकर, यानी उसे देखकर जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की हो, उसका क्या रवैया रहता है।
1: क्या करूँ, क्या करूँ मंसूर भाई, मैं क्या करूँ?
0: ओ टहलो मत, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई सुकून की चीज लाता हूँ। पहले तुम कुछ शरबत पियो, फिर हालात पर ठंडे दिल से गौर करो।
1: पापा के पास चले जाओ सिरपुर।
0: बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह का गलत मशवरा तुम्हें कभी नहीं दे सकता। अरे भाई, फरार का केस बन जाएगा, 2-3 केस पहले ही है, ये एक नया इजाफा।
1: वहाँ पापा से मशवरा करूंगी ना।
0: पापा? अरे वो तो पूरी बात सुने बगैर ही आग बगुला हो जाएंगे और बंदूक संभाल लेंगे।
1: फिर क्या करूं भाईजान?
0: तुम उस नौजवान से शादी क्यों नहीं कर लेती?
1: शादी? किस नौजवान से?
0: उससे जिसको मम्मी ने पसंद किया है। आखिर उसमें बुराई क्या है?
1: ओ, ये शादी की बात इस वक्त कहाँ से आ गई?
0: नहीं नहीं, ऐसे ही।
1: आप देख रहे हैं ना, मैं इस वक्त किस कदर परेशान हूँ, किन खतरनाक हालात से गुजर रही हूँ, और आपको आपको शादी की जरूरत रही है?
0: नहीं नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ।
1: मकसूद भाई, बाज वक्त आप भी ऐसी बातें करते हैं। मैंने जिस आदमी को देखा नहीं, जिससे मिली नहीं, उससे
0: मम्मी और पापा ने सब कुछ सोच समझ कर कहा होगा, इसमें तुम्हें एतराज क्या है? तुम इस रिश्ते को बिल्कुल बायकॉट कर रही हो, आखिर क्यों?
1: मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती।
0: बुरा मत मानना, बकौल डैडी तुम 24 बरस की हो चुकी
1: हो। जाने दो। अच्छा, अब मैं समझी मेरी शादी की फिक्र आपको क्यों है, ताकि आपका नंबर जल्द से जल्द आ जाए। हाँ
0: जी नहीं, पापा और मम्मी ने जिस नौजवान को तुम्हारे लिए चुना है, बहुत सोच समझ कर चुना है, मैं उसे जानता हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, बरसरे रोजगार है, अच्छे घराने का है, और फिर तुम्हें बेहद चाहता है।
1: ये जाने की खूब रही, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं जिसे जानती नहीं, पहचानती नहीं, कभी मिली तक भी नहीं।
0: उसने तुम्हें देखा है कई बार।
1: मुझे?
0: हाँ सच नूर, वो तुम्हें बेहद चाहता है।
1: हा?
0: मेरा मशवरा मानो तो इस शादी से इनकार न करो। कोई कार है, ये तो हमारे गेट के अंदर आ रही है।
1: गेट के अंदर?
0: इंस्पेक्टर है।
1: इंस्पेक्टर? मकसूद भाई।
0: नूर, अरे तुम कहाँ जा रही हो?
1: कहीं नहीं।
2: सर्वर, तुम यहाँ क्या बात है?
3: भाई मकसूद, सुबह सवेरे एक नौजवान को अपनी कार से बुरी तरह जख्मी करके कोई तुम्हारे घर में घुस गया है।
0: हमारे घर में?
3: हाँ, अब मैंने देखा है कि गैराज में खड़ी कार का नंबर भी वही है जो लोगों ने बताया है।
0: नूर, नूर, अरे ये तो बेहोश हो गई।
1: क्या बात है
0: शीला? अच्छा हुआ तुम भी आ गई, जरा पानी लाना।
1: पानी?
0: नूर,
1: ये लीजिए।
0: नूर,
1: मकसूद भाई, सरवर भाई, अब बहुत हो चुका, अब इस खेल को खत्म कीजिए, बेचारी की जान पर बन गई है। नूर, ए नूर, नूर, शीला, नहीं नूर, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ये सब लोग मिलकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं।
4: सब मिलकर?
1: और क्या, तुम अपनी शादी को टालती जा रही थी ना, और ये सर्वर तुमसे शादी करना चाहते हैं।
4: सर्वर?
1: हाँ, ये इंस्पेक्टर नहीं, सर्वर भाई हैं। सुबह यही तुम्हारी कार से टकराए थे। चोट वोट तो लगी नहीं, गिरने की एक्टिंग खूब की, पेशानी पर लाल रंग जो पहले से ये लिए हुए थे फौरन लगा लिया।
0: यस नूर,
1: यही है सर्वर भाई जो सुबह तुम्हारी कार से टकराए थे। सब कुछ सोचा समझा मनसूबा था
4: शीला।
1: तुम्हारे भाई ये सर्वर, मेरा भाई गिरधर, एडवोकेट, सब इस प्लान में मिले हुए थे।
0: अपने को क्यों बचाती हो? तुम्हारी मदद के बगैर ये सब कुछ हो सकता था।
1: चलो भाई, अब बहुत हो चुका।
3: मगर मैं तो गिरफ्तार करूंगा।
1: हथकड़ी लाए हो
4: शीला?
3: हाँ ये

0: फूलों की हथकड़ी लाया हूँ।
1: मेरी तो जान जा रही है, अच्छा प्लान बनाया आप लोगों ने, मैं भी नहीं जानती थी कि ये बात इस हद तक पहुंच जाएगी। चल उठ, हथकड़ी पहन ले, मंजूर है? आप सब यही चाहते हैं तो मंजूर है।
0: पापा और मम्मी को भी तो यही मंजूर है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजहर अफसर का तहरीर करदा ड्रामा उन्वान था हादसा। पेशकश सरफराज अहमद की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

अशुभ और साथियों की आवाजों में शिकार फिल्म का नगमा भी आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश अशुभ और साथियों को सुनिए, फिल्म है कारवां।

We'll be right back.

वारिस मिनी फिल्म का नगमा भी अपने लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में है इंतकाम फिल्म से।

या तो मनीष की आवाज में ये नगमा था राजा और रंक फिल्म से। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खदमत है रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के गुज़श्ता

0: चुमारे की रिकॉर्डिंग। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक फैटी लिवर पर आधारित है। आज हम जानेंगे फैटी लिवर को और साथ ही फूड सेफ्टी और फूड एडल्ट्रेशन पर भी बात होगी हमारे जो आज की रेडियो डॉक्टर है उनसे। हम खाने की मिलावट और खाने की मिलावट से होने वाले हमारे शरीर में नुकसान, साथ ही साथ फैटी लिवर पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारी बातचीत करेंगे। हमारे रेडियो डॉक्टर हैं आज की डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। स्वागत है डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: नमस्कार एंड धन्यवाद शालिनी जी। मुझे भी बड़ी खुशी होगी इस बारे में बात करके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खान पान तो हमारे देश की तहजीब है तो उससे रिलेटेड है।
0: बिल्कुल। और फैटी लिवर की जब हम बात करते हैं, लिवर एक ऐसा अंग है मैडम हमारे शरीर का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे आपने कहा खान पान एक तरह से धुरी है ये हमारे जीवन की और शरीर की भी। क्या हम खाते हैं उसी से ही हमारा शरीर बनता है, तो बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या खाना है ये सोचना, कितना खाना है, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए जो आजकल हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, वो भी इस चीज को समझे। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम उनको भी ये बात समझाएं कि किस तरह से हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। लिवर क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो आप पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। और फैटी लिवर जो पहले हम कभी कभार सुनते थे, फैटी लिवर जैसा शब्द वो इतना कॉमन अब आजकल होने लगा है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि पहले तो ये कि फैटी लिवर होता क्या है और ये आजकल क्यों बढ़ रहा है।
1: देखिए फैटी लिवर, लिवर यानी हमारा यकृत और फैट मतलब वसा, तो जब फैटी फैट जो होता है वो जरूरत से ज्यादा हम खाने लग जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे डायबिटीज और मोटापा साथ में होना और हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होना, इन सब के साथ क्या होता है कि जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है और जो फैट है वो हमारे लिवर पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और उसका जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस है ये काफी बढ़ गया है आने हुए सालों में। और ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी खान पान की शैली है, जो हमारी जीवन की शैली है, उसमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ गया है, तो उस कारण से फैटी लिवर जो है वो काफी
0: सुनने में
1: आ रहा है।
0: तो ये क्या बदलाव है और ये बदलाव हमारे लिए कितने हानिकारक हैं और अब हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे डिस्कशन हम आज करेंगे। डॉक्टर साहब, आज जो हमारे श्रोता हैं बहुत सारे अभी तक सवाल अभी से ही भेज चुके हैं, कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ है तो लगता है बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं फैटी लिवर से संबंधित। हमें लिखा है अनमोल ने सरिता विहार से कि कैसे पता चलता है कि फैटी लिवर हो गया है।
1: देखिए अनमोल जी और बाकी श्रोतागण भी, नॉर्मल जो हमारा लिवर होता है उसमें थोड़ा बहुत फैट तो एक्यूमुलेट होता है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब लिवर के वेट का 5 से 10% सिर्फ फैट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर एक डिसीज होती है, इसके कई स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इनिशियल जो होता है, जो सिंपल चीज होती है, जब सिंपल फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो वो होता है फैटी लिवर। उसके बाद जब फैट इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लिवर की सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो स्टीओहेपेटाइटिस हो जाती है, उसे हम कहते हैं नैश या मैश। और आगे चल के जब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर ही डैमेज हो जाता है तो वो होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो शुरुआत हमेशा फैटी लिवर से होती है। नॉर्मली हमें या तो जब लिवर में फैट जमा हो जाता है तो उसका साइज बड़ा होने लग जाता है और हमें जहां लिवर होता है राइट साइड में वहां पर हमें खिंचाव या हल्का हल्का दर्द महसूस होने लग जाता है। तो नॉर्मली फिर सब हम नॉर्मल होता है, आजकल की अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें लिखा हुआ आता है फैटी लिवर। तो जरूरी नहीं है कि वो देख के हम डर जाएं। फैटी लिवर जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं काफी कॉमन है और प्रिवेंटेबल भी है एक बार अगर पता चल जाए तो। लेकिन जैसे ही अगर आपको पता चलता है फैटी लिवर है और उसके साथ फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ टेस्ट आते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई फैटी लिवर है और अब आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर साथ में आपको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, आपको मोटापे से आप ग्रसित हैं और बीपी की बीमारी है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कई बीमारियां साथ में आती हैं और फिर फैटी लिवर आता है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, उस समय आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: जी, तो बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने इसमें दिया, क्योंकि हमने अभी कॉज पे बात की थी पर आपने सिम्टम भी बताया। जी, तो इसमें क्या दर्द भी होता है जैसे खिंचाव के साथ?
1: देखिए जो हमारा लिवर होता है ना वो एक कैप्सूल के अंदर रहता है, एक खोल होता है, भगवान ने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर देके हम सबको भेजा है लिवर के आसपास। तो जो वो जब नॉर्मल

0: बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें फैटी लिवर के साथ होती है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है.
1: अच्छा.
0: फिर हम आपका वेट देखते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या आप ओबीस हैं या ऐसा है कि आपका शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं देखने के लिए कि अगर अकेला फैटी लिवर है या उसके साथ और भी जो लक्षण होते हैं वो है या नहीं है.
1: जी जी. तो अगर इस तरह का कुछ लगता है तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो जो टेस्ट डॉक्टर लिखे वो सब कराने पड़ते
0: हैं. जी जी. जो भी आपके निकटतम डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे, और फिर उन सारी चीजों को आपके जो लक्षण हो रहे हैं उनके साथ आपके टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सबको मिला के देख के फिर आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं.
1: जी. तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि वेट भी काफी मैटर करता है, ओवरवेट तो नहीं. तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है. जतिन मल्होत्रा हैं और ये रहते हैं गीता कॉलोनी में, दिल्ली में. लिख रहे हैं कि मेरा फैट बहुत बढ़ गया है और मुझे भूख बहुत लगती है, तो बताएं नॉर्मल वेट होना कितना चाहिए.
0: देखिए, वो तो एज के हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई इस एज में पर्टिकुलर बीएमआई होता है कि हमारा बेसल वो उसके हिसाब से होता है. तो ऐसे रेडियो पे तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपकी हाइट और आपके वेट और आपके एज के हिसाब से होता है. और अगर आपकी जो चर्बी है वो पेट पर है ज्यादा, जो एब्डोमिनल ओबिसिटी होती है वो रिस्क फैटी लिवर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है. एब्डोमिनल ओबिसिटी जो होती है, जो पेट पे जो खासकर मोटापा होता है, वो फैटी लिवर, शुगर और दिल की बीमारियों के साथ ज्यादा कोरिलेट होता है.
1: अच्छा. इन्होंने एज लिखकर भेज दी है मैडम.
0: अच्छा अच्छा.
1: अभी लिखा है कि मैं 27 इयर्स.
0: जी जी जी जी. तो 27 इयर्स के हैं, और अगर 5 फुट साढ़े 5 या 6 फुट के कहीं बीच में है तो इनका वजन कहीं 70 से 72 किलो के बीच में होना चाहिए, वो इनका नॉर्मल वेट है. पर अगर इन्हें लग रहा है कि मेरा फैट बढ़ गया है,
1: हाइट भी
0: देखनी पड़ेगी, सर्कमफेरेंस देखना पड़ेगा, पेट नाप के ना जो मेजरमेंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. लेकिन अगर आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मेरा फैट बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप उस पर ध्यान देना शुरू करें. क्योंकि ये चीज बेस्ट चीज ये ऐसी है कि एक बार आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये रिवर्सिबल है शुरू में.
1: अच्छा.
0: मतलब ये ठीक हो जा सकती है. ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपको फैटी लिवर हो गया तो वो नहीं ठीक होगा. इनिशियल जो स्टेजेस होती है फैटी लिवर, स्टीव हेपेटाइटिस, दे आर रिवर्सिबल एंड दे कैन बी रिवर्टेड बैक. आप नॉर्मल लिवर अपना दोबारा पा सकते हैं अगर आप सही समय पर लक्षण पहचान लें और ध्यान रखना शुरू कर दें.
1: तो ये भी हम जानेंगे आपसे कि कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है. हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं इनका. हेलो
2: हेलो
1: हेलो. जी.
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्कार जी. नमस्कार जी.
2: जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं उनका लीवर जल्दी फैटी होता है. नंबर टू, जो हम सील्ड पैक्ड जिसको कहते हैं पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं,
0: प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड चड्डा जी, उसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड, जो हाईली प्रोसेस्ड होता है.
2: तो उसको उसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, एक साल से लेकर 2 साल तक.
0: जी जी.
2: तो वो खाने से भी लीवर फैटी हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा.
0: देखिए चड्डा जी, देखिए कुछ भी चीज है ना, या हम अकेले नॉनवेज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन शैली है. हर आदमी का एक अपना खान पान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला खान पान गलत है और ये वाला सही है. कोई भी चीज जब भी हम एबनॉर्मल मात्रा में करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी. उसमें ज्यादा घी तेल भी आ गए, उसमें ज्यादा मिठाइयां भी आ गई, उसमें ज्यादा तले हुए पदार्थ भी आ गए, उसमें ज्यादा नॉन वेजिटेरियन भी चीजें, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही जो अनहेल्दी हैं, अगर वो हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो फैटी लिवर हो सकता है. तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो आजकल प्रोसेस्ड फूड का चलन चल गया है कि जो आप पैकेट खरीदें और वो 1-1.5 साल तक ठीक रहेगा, और इंस्टेंट फूड जो है, ये जो फूड है ये बहुत प्रोसेस्ड होते हैं, इनसे फैटी लिवर होने का बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है. फैटी लिवर ही नहीं, और भी जो बीमारियां हैं वो इनसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनका चलन आजकल ज्यादा ही चल गया है. और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, जिससे कि जो इनकी नॉर्मल और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खराब हो जाती है.
1: एक तो प्रोसेस भी हो गया, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि सब स्टैंडर्ड माल भी कई बार मिलता है, जिसको हम एडल्टरेटेड कहते हैं.
0: जी जी.
1: तो उससे भी काफी समस्या
0: है. खपत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है देश की, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए कई बार सब स्टैंडर्ड चीजें होती है, उनमें मिलावट हो जाती है, पता नहीं चलता. आए दिन हम रेडियो और टीवी पे सुनते रहते हैं कि भाई फलाना चीज में ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया. तो वो भी चीजें, वो केमिकल्स होते हैं, वो मिलाए जाते हैं और वो सब स्टैंडर्ड होते हैं. और हर जो चीज हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज्ड लिवर में ही होती है जाके, तो वो लिवर को नुकसान

0: हो जाती है।
1: इसमें डॉक्टर साहब कई चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है
0: जी, मतलब इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते,
1: जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है या स्प्रेज हो रहे हैं वो किस तरह से, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से धो के खाएं, जो भी कच्चा खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं,
0: कोशिश करें कि ताजी चीजें खाएं, पैकेट बंद चीजें अवॉइड करें खाना जितना हो सके। जैसे कि हमारे पूर्वज थे वो साथ के साथ बनाते थे, साथ के साथ खाते थे, रखने का चलन कोई नहीं था कि एक समय का खाना दो तीन दिन तक चलता रहेगा। यहाँ तो हम प्रोसेस फूड की बात करें जो पैकेट में साल भर चलने की बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ताजा बनाएं, साथ के साथ खाएं और प्रोसेस फूड अवॉइड करें।
1: जी जी बिल्कुल सही बात। और हमारे ये एक श्रोता हैं तपोश प्रमाणिक, बोंगा वेस्ट बंगाल से हमें लिखकर भेज रहे हैं, आर चिल्ड्रन मोर एट रिस्क ऑफ फैटी लिवर। तो मुझे लगता है कहीं से ये जुड़ता है क्योंकि बच्चे प्रोसेस फूड बहुत खा रहे हैं।
0: पोस्ट कोविड जो है चाइल्डहुड ओबिसिटी काफी बढ़ रही है, मतलब मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूं तो मैं एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो नहीं बता सकती, लेकिन प्रोसेस फूड का चलन तो चल ही रहा है और जो बच्चे होते हैं उन्हें ये घर की बनी हुई सब्जियां और जो हेल्दी चीजें होती हैं वो नहीं पसंद आती, उन्हें पैकेट वाली चीजें, प्रोसेस फूड, फैटी फूड, ये सब चीजें बहुत
1: कुछ एडिक्टिव प्रमोट
0: भी होती
1: हैं।
0: हमें एज अ पेरेंट तो मुझे लग रहा है, बट एज अ डॉक्टर तो मैं भी नहीं कह सकती कि कुछ है या नहीं है, बट हाँ हमारे बच्चे जो हैं वो भी, हमें भी लगता है कि हाँ इजी चीज है, एक पैकेट पकड़ा दो इंस्टेड ऑफ कि हम जाके ताजा बनाएं, वो भी एक है क्योंकि सब बिजी हैं, सबकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और समय ही नहीं है किसी के पास, तो जो इजी ऑप्शन है वो पैकेट्स ही होते हैं। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, या तो मौसम खराब है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, या फिर कभी बारिश आ रही है, तो जो पहले जैसे बच्चे पूरे दिन खेला करते थे, फिजिकल एक्टिविटी जो पहले ज्यादा होती थी वो अब बिल्कुल जीरो या निल रह गई है, और जो फूड है वो प्रोसेस्ड और रिच ज्यादा होता जा रहा है। तो हर चीज बराबर होती है ना, कि जितना हम खाएं उतना हम पचाने के लिए एक्सरसाइज तो करें तो बैलेंस बना रहता है। जहां पे पाचन करने के लिए हम एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे और कैलोरीज और एनर्जी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है।
1: जी
0: ये है,
1: तो बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है। आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही फूड सेफ्टी एंड एडल्ट्रेशन, खाने में होने वाली मिलावट और उसके नुकसान के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता रहे हैं। तो एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो,
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून,
2: और डॉक्टर साहिबा को भी मेरा गुड आफ्टरनून।
0: जी गुड आफ्टरनून
2: मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे महिलाएं घर के काम में ज्यादा लगी रहती हैं, तो मेरे जैसी जो 45 प्लस महिलाएं हैं तो उनके लिए एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है, और मैम उनको किन किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए पर्टिकुलर इस एज में आने के बाद, जैसे हम इस समस्या से दूर रह सके।
0: जैसा कि आपने कहा कि घर का काम इम्पोर्टेंट है, तो जितनी इम्पोर्टेंस आप घर के काम को दे रहे हो ना कि भाई नाश्ता लंच डिनर बनाना है, उतनी इम्पोर्टेंस आपको एक्सरसाइज को देनी है कि एक्सरसाइज भी रोज करनी ही करनी है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, और आपको ही नहीं हर एज की फीमेल्स या मेल्स को बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमें अपना जो बॉडी वेट है वो आइडियल रखना है, यानी मेल्स में जो वेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो 102 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका वेट सर्कमफेरेंस। अगर आपका वेट सर्कमफेरेंस इन नंबरों से ऊपर है मेल्स और फीमेल्स में, तो आप थोड़े हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं मोटापे के, और वो आपको लीड करेगा फैटी लिवर, डायबिटीज, ऐसी बीमारियों की तरफ। फिर खान पान का बहुत ध्यान रखें, ताजा खाना बना के खाएं, अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोसेस फूड कम से कम रखें, ताजा खाना बनाएं, सब्जियां और फल ज्यादा मात्रा में लें, एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, योगा हो गया, वॉकिंग हो गई, या जिम अगर आप जाते हैं, तो वो उसको अपनी लाइफस्टाइल का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लें जितना कि आपकी रोजमर्रा का जो घर का काम या ऑफिस का काम है वो रूटीन है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए, उम्मीद है कि आपको सही और सटीक जवाब जो डॉक्टर साहब ने दिया। लेकिन हमारे एक श्रोता हैं डॉक्टर साहब मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से, वो थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं वो ये लिख रहे हैं कि फास्ट फूड और तरह तरह का नशा ये हमारे लिवर के लिए किस तरह से असर डालता है, ये तो एक क्वेश्चन है। पर इन्होंने लिखा है आगे कि आजकल घरों में महिला हो या पुरुष या बच्चे कोई अपना काम करना नहीं चाहता, करता ही नहीं है, घर में नौकर लगा के रखा है, कामवाली लगी हुई है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसका हमारे शरीर पे, हमारे लिवर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये मैं जानना चाहता हूँ।
0: एक तो जो

0: ने बात कही नशे की, तो वो दो हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं, ये जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इन पर्टिकुलर पे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन लिवर जो है वो अल्कोहल से भी खराब हो जाता है, और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस आज के प्रोग्राम के उससे बाहर है, लेकिन हर तरह का नशा हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है, ये हमें स्मोकिंग अल्कोहल ये तो सबको पता ही है। और जहां तक कि आपने बात की कि काम कम कर रहे हैं, देखिए आजकल जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा बदल गया है, फीमेल्स भी काम करने लगी हैं, मेल्स भी काम करने लगे हैं, और किसी ना किसी तरह हाउस हेल्प की जरूरत तो हमें पड़ती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम हम उन पर ही छोड़ देते हैं, बहुत सारा काम हम खुद भी करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल पर से अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी नहीं करते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है, ना कि सिर्फ फैटी लिवर के लिए बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे शुगर डायबिटीज हो गई, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमें जितनी भी हो सके बचपन से ही बच्चों में भी आदत डालनी चाहिए, और जो भी घर के सदस्य हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाकर रखें। काम तो कोई भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही होगी।
1: हमारे साथ एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो,
2: नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, संजीव कुमार हूँ
1: जी। संजीव जी, अपना प्रश्न।
2: मैं प्रश्न ही है मैडम जी, अल्ट्रासाउंड में ना उसका कई साल पहले फैटी लिवर आया था जी, यहाँ से पटना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या करनाल में दवाइयां भी लिखी, दवाई करती हुई, नाम तुम्हारा याद नहीं है, और उससे कोई खास आराम नहीं है, देखने में कमजोर है और परफॉर्मेंस उसकी स्टडीज में बिल्कुल वीक है। वो पहले 6 साल मैंने बीएससी पास कर सके और अब भी यूनिवर्सिटी से कर रहा है वो बीएससी, तो अब उसको क्या करना चाहिए मैडम? सर्दी में आता नहीं है कहीं कहीं महीने, यानी कि अक्टूबर में खुदों में रुकेगा ना, फिर अप्रैल के बाद ही ना आएगा, यानी वीक है बिल्कुल। कई बार अगर जाता है सिज़ोफ्रेनिया भी है उसको और एपिलेप्सी भी है जी।
0: हाँ देखिए, मैं भी ये कहने वाली थी कि ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी के लक्षण नहीं है, ये मानसिक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, तो उन्हें जरूरत है कंप्लीट मानसिक इवैल्यूएशन की। जो भी आपके पास डॉक्टर हैं उनसे या किसी भी मनोचिकित्सक से आप उनको दिखाएं और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और फिर दोनों तीनों चीजें एक साथ मिलकर चलेंगी। कई बार क्या होता है कि जो दवाइयां उनको अपनी मानसिक दवाइयों के कारण चल रही हैं उनसे भी फैटी लिवर हो जाता है, कुछ दवाइयों से होता है, तो आपको उनके बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत लग रही है जैसा कि आप बता रहे हैं उनके कारण।
2: काउंसलिंग तो मैडम बहुत करते हैं, कल्पना चावला गवर्नमेंट काफी बार करते हैं काउंसलिंग
0: जी,
2: पर
0: जी, ये वो आपको ना रेगुलर करवानी पड़ेगी ये, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ये रोज रोज रोज रोज स्ट्रेस करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और काउंसलिंग और दवाइयां जब दोनों तीनों चीजें इकट्ठे होंगी तो ही फर्क पड़ेगा।
1: धन्यवाद संदीप जी, और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि उनको इवैल्यूएशन की जरूरत है, आप उसको फॉलोअप करें। और हमारे पास दिनेश शर्मा जी ने डॉक्टर साहब लिखकर भेजा शिमला झुंझुनू राजस्थान से कि फैटी लिवर को पता करने के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती हैं और इसका उपचार और बचाव, वो सारी चीजें पूछी। हम बात तो कर ही रहे हैं, इसका कोई टेस्ट भी होता है जो अलग से?
0: शुरू में तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है एक, और अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट जैसे MLF कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल देखे जाते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल किया जाता है देखने के लिए कि आपको मधुमेह तो नहीं है, तो इनिशियली ये सब चीजें होती है। उसके बाद ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन नाम का एक टेस्ट होता है जो बड़े अस्पतालों में और बड़ी जगहों पर उपलब्ध होता है, वो टेस्ट कराना होता है देखने के लिए, उसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ वैल्यू होती है जो देखी जाती है, अगर आप उस वैल्यू के ऊपर आते हैं तो फिर रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से असेस किया जाता है, और आपको जो भी प्रिवेंटिव चीजें हैं जो आपको उस समय से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी बढ़ानी है, खाने में क्या खाना है, कितनी आपकी न्यूट्रिशनल कैलोरीज अलाउड है, वो सब आपको डिटेल फिर उसमें बताया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारी श्रोता है परिधि, दिल्ली में रहती हैं, लिख रही है माय हस्बैंड हैज ग्रेड 2 फैटी लिवर एंड ही इज 30 इयर्स ओल्ड। ये कितना डेंजरस है बिकॉज ही इज सो यंग, और हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? कैन इट बी रिवर्स्ड बाय लूजिंग वेट और वी हैव टू टेक सम एडिशनल मेजर्स?
0: देखिए परिधि जी, इनिशियली तो वेट लॉस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें एक तो आता है कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो मैंने आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुटेबल होता है वो आप शुरू करें। दूसरा होता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज, लाइफस्टाइल मतलब बदल रहे हैं हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स, हम कितने बजे खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, क्यों कौन सा हम ऑयल यूज करते हैं, क्या हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे, कितनी देर हम बैठे रहते हैं पूरे दिन में, हम किस तरह का हमारा वर्क है, किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, तो वो सब हमें चेंज करना होता है। इनिशियल हमें

0: हमेशा लाइफ स्टाइल चेंज और मॉडिफिकेशन जो है दैट गोज लॉन्ग वे इन ट्रीटिंग यू. अगर उसके बाद नहीं आराम होता तो फिर बाकी चीजें दी जाती हैं कि दवाइयां हैं जो उपलब्ध हैं जो दी जाती हैं. और कंप्लीट असेसमेंट आपके हस्बैंड को जरूरत है. सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आने से अकेले से वी डोंट हैव टू पैनिक. जैसा कि मैंने अभी बताया था वेट सर्कमफ्रेंस बीएमआई एलएफटी शुगर वो सारे एक बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं इवेल्युएट करके उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि रिस्क कितना है. लेकिन अगर आ रहा है फैटी लिवर तो आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज और डायट्री मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अपने आप ही शुरू कर देनी चाहिए.
1: अच्छा डॉक्टर साहब ये एक बात समझ में आई कि क्या ये अलग अलग ग्रेड का भी होता है जैसे उन्होंने ग्रेड टू लिखा है.
0: देखिए वो तो रेडियोलॉजिकल वो होते हैं उसमें ग्रेड दिया जाता है. अच्छा. जैसा कि मैंने बताया फाइब्रोस्कैन है उसमें भी हम असेस करते हैं ग्रेड उसमें भी ग्रेड होते हैं बट वो नॉर्मल आदमियों के लिए नहीं होते वो डॉक्टर्स के लिए होते हैं. डॉक्टर्स देखेंगे भाई कौन सा ग्रेड है उसमें रिस्क कितना होता है वो हम असेस करके फिर हम आपको बताते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए.
1: जी संजय हमें लिखकर भेज रहे हैं कहां से इन्होंने ये नहीं लिखा है. बिहार से इन्होंने लिखा है कि मेरे पेट में दर्द है एक साल से कभी ऊपर कभी नीचे रहता है तो क्या ये कहीं से फैटी लिवर का कोई सिम्टम माना जा सकता है.
0: देखिए नॉन स्पेसिफिक पेन कभी ऊपर कभी नीचे तो फैटी लिवर का सिम्टम नहीं होता. मतलब जैसा कि हम बता रहे हैं ठीक है अवेयरनेस है लेकिन इतना डर भी अपने मन में पैदा नहीं करना चाहिए कि भाई दर्द इधर उधर जो है वो कुड बी अ नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन नॉट नेसेसरी फैटी लिवर.
1: जी
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर. मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर वैशाली भारद्वाज प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल. ओम प्रकाश जी हैं 83 इयर्स के हैं दिल्ली में रहते हैं. गॉल ब्लैडर की पथरी क्या फैटी लिवर के कारण हो सकती है और कितनी बड़ी पथरी के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए ये इनके दो प्रश्न है.
0: देखिए सर ये मैं बता सकती हूं कि पथरी को प्रमोट करने के बहुत सारे कारण होते हैं और फैटी लिवर उन कारणों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है. अब कितनी बड़ी फैल पथरी होनी चाहिए ये तो इस प्रोग्राम के स्कोप से बाहर है तो वो मैं रेडियो पे नहीं बता सकती हूँ. आप किसी भी अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाए और उनसे बात करें कि क्या करना है गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए.
1: जी जी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं व्हाट्सएप के माध्यम से लेकिन हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर. हेलो
3: हेलो
1: जी
3: हाँ जी मैम नमस्कार.
1: नमस्कार
3: हाँ जी मैम मेरठ से बोल रही हूँ मेरा नाम बबीता है.
1: जी बबीता जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में. प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से.
3: अगर फैटी लिवर हो गया है तो मैम कौन सी एक्सरसाइज करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं.
0: बबीता जी अगर आप प्रोग्राम शुरू से सुन रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन के एंड में बता रही हूँ कि ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाएं ना क्या ना खाएं लेकिन मोटे मोटे तौर पर ताजा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं और एक्सरसाइज जो आपको सूट करे जो आप कर सकें. अगर आप मान लो अब आप गांव में रहती हैं मैं आपको कह दूं आप जिम चले जाओ आप के पास जिम जाने का टाइम नहीं है और मैं आपको कहूं नहीं आप दौड़ लगाओ जबकि आप दौड़ नहीं लगा सकते तो जो आपको शरीर अपने समय और अपने घर की जो नॉर्मल दिनचर्या है उसके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप एक कोई एक एक्सरसाइज उठा लो और रोज उसको एक घंटे करो. ठीक है हाँ ऐसे कोई स्पेसिफिक तो वो हर टेलर मेड होती है चीजें ना हर चीज एक आदमी के हिसाब से होती है वो आप देखेंगे कि आपको क्या कन्वीनियंट हो रहा है और आप किस चीज में कंफर्टेबल है. रही बात खान पान की तो तेल घी ये सारी चीजें तले हुए पदार्थ कम करें प्रोसेस फूड ना खाएं. कोशिश करें कि ताजा खाना बनाएं एक समय बनाएं उसी समय बनाकर यूज करें और अपने खाने में फल सब्जियां बीज ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व करें और तली हुई चीजें और प्रोसेस फूड ना खाएं. ठीक है बबीता जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी. और इसी तरह से कुछ खाने पीने पे काफी मैसेजेस हमारे आए हैं और एक वेट पे काफी लोग बात कर रहे हैं. इन्होंने लिखकर भेजा है पीलीभीत से तिलक ने मेरी दीदी की उम्र 47 इयर्स है उनका वेट 85 केजीज है और उनका पेट लगातार बढ़ता जा रहा है. मैं उन्हें रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूं तो वो कहती है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है और एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूं तो क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी.
0: ये जी देखिये मैंने अभी दो गोल्डन नंबर आपको बताए थे 102 सेंटीमीटर आदमी जो मेल है उन्हें याद रखना चाहिए और 88 सेंटीमीटर है वो औरतों को याद रखना चाहिए. ये उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर इससे ज्यादा है तो आपके रिस्क जो है वो बढ़ रहे हैं. ये ओबिसिटी भी है और आपके फैटी लिवर डायबिटीज इन सबके रिस्क भी बढ़ जाते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपना वेस्ट मेजर कर लीजिए और अगर आपको ये इन नंबरों से ऊपर है तो फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए. हर तरह की एक्सरसाइज आप जैसा कि मैं बता रही हूं बार बार कि एक आदमी के लिए कोई एक चीज हर आदमी के लिए एक कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती कि हम कहते भाई आपको ये करना है तो

0: है, आप अपने हिसाब से शुरू कीजिए, धीरे धीरे घूमना शुरू कीजिए, जो भी आपकी बॉडी को कन्वीनियंट लगता है शुरुआत उससे कीजिए।
1: जैसे मुझे लग रहा है कि वो बहुत विगरस एक्सरसाइज के लिए उनको फोर्स कर रहे हो,
0: हाँ, भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि अचानक आपको आज कह दिया जाए जाइए 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर आइए, तो ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी ग्रेडेड। आज अगर आपने 15 मिनट किए तो अगले हफ्ते फिर आप 20 मिनट आइए, फिर ऐसे 25 मिनट बढ़ाइए, धीरे धीरे शुरुआत। हर चीज नीचे से ऊपर ही जाती है ना, ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन में सारी चीजें हो जाती है। और वेट लॉस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो इट गोज अ लॉन्ग वे। ये तो एक लाइफ, हम बात करें लाइफ स्टाइल, यानी जिंदगी भर आपको ये चेंजेस अपने में लाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने किया कि दवाई भाई 15 दिन का कोर्स दिया खत्म हो गया। ये हम कह रहे हैं बार बार लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, मतलब जो आपकी जीवन शैली है उसको आप बदलाव डालें। तो ये तो धीरे धीरे आएंगी, एक दिन में तो ये बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फर्क पड़ा है ये इतने सालों में पड़ा है ना। आप एक दिन में थोड़ा मोटे हो गए, एक दिन में थोड़ा फैटी लिवर आ जाता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो वैसे ही बदलाव में भी, नेचर में, खान पान में, वो लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे बदलाव आएगा। एकदम तो कभी भी किसी में भी बदलाव लाना मुश्किल होता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। वी हैव टू मेक चेंजेस इन आर लाइफ स्टाइल, है ना। डॉक्टर साहब यशपाल हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार कर रहे हैं, साथ ही लिख रहे हैं माई क्वेश्चन इज कि आई हैव बॉर्डर लाइन हाई LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड SGPTDO, आई नीड मेडिकेशन। तो क्या ये से कुछ जुड़ता है जो आप?
0: देखिए यशपाल जी, आपके आसपास या किसी ने आपको ये टेस्ट करवाने को बोला होगा ना, या तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं, तो जिन भी डॉक्टर ने आपको ये बोला है करवाने के लिए, एक बार आप उनसे जाएं और संपर्क करें, वो आपको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, और जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं फैटी लिवर के वो करवाएंगे इन ब्लड टेस्ट के साथ, और फिर देखेंगे कि कितना रिस्क है, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि इनिशियल आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है या कोई दवाइयां लेने की जरूरत है।
1: जी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण लिख रहे हैं, मेरी उम्र 43 इयर्स है और मेरा वजन 63 केजी है, मुझे मोटे होने से डर लगता है इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, पर लोग मुझे कहते हैं कि उम्र के हिसाब से मैं थोड़ा पतला हूं, तो क्या मेरा वजन उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है?
0: देखिए हमें अपनी बॉडी वेट से ना कभी हम खुश नहीं होते। जो मोटा होता है उसको लगता है कि हमें हम ज्यादा मोटे हैं, जो पतले होते हैं उन्हें लगता है ओहो हम पतले हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप जो लाइफस्टाइल जीवन शैली जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है और उसको आप मेंटेन करके रखें, उससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात है हेल्दी होना, और आइडियल बॉडी वेट आप अपना हाइट और वेट के हिसाब से चेक कर लें कि क्या होता है। लोग अब लोगों के हिसाब से तो जीना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: ये अगर आपका वेट वो जैसा मैडम ने बताया है और सरकमफेरेंस,
0: जी जैसा कि वेट सरकमफेरेंस में कई बार बता चुकी है, 102 आदमियों के लिए और 88 सेंटीमीटर औरतों के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप इन दोनों नंबरों से नीचे ही रहें तो वो बेहतर है आपके लिए।
1: जी संदीप कुमार लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर बिहार से, मेरी उम्र 34 ईयर्स है, मेरा पिछले कई वर्षों से फैटी लिवर ग्रेड 1 है, मैं नियमित एक्सरसाइज, रोज स्विमिंग करता हूं, खाने पीने में फल सब्जियां नियमित रूप से खाता हूं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाता हूं, क्या ये रिवर्सिबल है? इसे रिवर्स होने में कितना समय लगता है, मुझे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: संदीप जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको जो जो चीजें हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम में वो आप सब फॉलो कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल डेफिनेटली है, और आप लगे रहिए इन सब चीजों के साथ और इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये नहीं है कि भैया मैं 6 महीने करके फिर छोड़ दूंगा तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी, तो आपकी जो लाइफस्टाइल चल रही है उसको आप मेंटेन करें तो आपका जो लिवर है वो भी हेल्दी रहेगा।
1: अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और अब स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब,
0: थैंक यू।
2: आपने सुना प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, ये गुज़श्ता शुमारे की रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनवाई। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमरीकी लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी

किया है। सलाखन ने शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत हासिल की। और एशियाई खेलों में जापान के नगोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तीसरा तमगा हासिल किया है। खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सत्र के हफ्ते के लिए भारतीय वक्त की क़यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब आलमी रहनुमा 22 से 28 सितंबर तक मुनाकिद होने वाले आला सतह के सालाना जनरल बहसों मुबाहसे के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में यकजा होने की तैयारी कर रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का ये 81वां इजलास एतमाद की बहाली या अक्सर तब्दीली का बंदोबस्त, एक अक़वामे मुत्तहिदा जो सबको खिदमत फराहम करती है के मौजू पर मुनाकिद किया जा रहा है। इस जनरल असेंबली में अक़वामे मुत्तहिदा के सभी 193 रुकन ममालिक के सुदूर वज़ीरे आज़म सीनियर नुमाइंदगान यकजा होंगे और बड़े बैनुल-अक़वामी मामलों पर अपनी तरजीहात और मौकफ तय करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आलमी रहनुमाओं से कहा है कि वह बैनुल-अक़वामी तआवुन को मजबूत करें, जैसा कि वह जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क में यकजा हो रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक 81वें इजलास में आलमी तआवुन में नई जान पैदा करने, लगातार तरक्की के मकासद को आगे बढ़ाने और अमन, वक़ार और बराबरी के लिए इज्तिमाई इक़दामात को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में है। उन्होंने खबरदार किया है कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब ईरान ने कहा कि उसने आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शायद सरसी करने वालों के जरिए पेश कर दी है। सदर ट्रंप का यह बयान ईरान के सदर मसूद पजश्कियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आई है। दावा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमरा एक आला सतह का वक्त भी होगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान की हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है तो मुस्तकबिल करीब में बहुत बड़े वाकयात रोनमा होने वाले हैं। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर के जरिए अमरीका को अपनी शराइत से आगाह कर दिया है। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सरकारी मुलाजमीन को ताइफ और यंगू शहरों के तमाम सरकारी और जाती सफर के लिए खसूसी इजाजत हासिल करना होगी। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन ने बताया कि ये पाबंदियां सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आयद की गई हैं। मिशन ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी शहरों पर जोर दिया कि वो मुहतात रहें और तजवीज करदा हिफाजती इकदाम पर पूरी तरह अमल करें। यह अलर्ट यमन के हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बाद जारी किया गया है, जिनमें रियाज की जानिब दागा गया था और एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागा गया। हौसियों ने बिश, ताइफ, फरासान और यंगू में शहरी आबादी और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। ताजा कशीदगी के बाद पूरे सऊदी अरब में सिक्योरिटी इकदाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। सऊदी हुकाम ने फिजाई हमले के मुमकिन खतरे के तनाजुर में हंगामी इंतबाह भी जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सके। तवक्को है कि दोनों रहनुमा मुखासमत को कम करने और मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के इकदाम पर बातचीत करेंगे। यह मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर हो रही है। यूक्रेन के आला मुज़ाकरातकार रुस्तम अलरूफ, जो यूक्रेन के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह भी हैं, ने मुज़ाकरात का इंतजाम करने के लिए व्हाइट हाउस के नुमाइंदों के साथ काम किया है। यह तयशुदा मुलाकात ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान फोन पर हुई एक गुफ्तगू के बाद हो रही है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने न्यूयॉर्क में मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान ने कहा है कि वाशिंगटन जब तक तेहरान की शराइत पूरी
नहीं करता, वो अपने

जुल्म की पुकार फिल्म का नगमा भी अपने सुना चंद्रानी मुखर्जी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। यह किशोर कुमार और आशा भोसले फिल्म है जॉनी मेरा नाम।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है पानीपत। तहरीर प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी की है।
1: शहरों की अहमियत अमूमन तारीख बनाती है, मगर बाद शहर ऐसे भी हैं जिन्होंने तारीख बनाई है। शुमाली हिंदुस्तान में एक छोटा सा शहर पानीपत इसकी एक मिसाल है। ये दिल्ली से 50 मील शुमाल में वाक है और अब रियासत हरियाणा का एक हिस्सा है और सनती तरक्की के रास्ते पर तेजी से जा रहा है। सन 1947 तक इसकी हैसियत जिला करनाल के एक कस्बे की थी, जिसकी आबादी 1 लाख भी नहीं थी। बाशिंदे ज्यादातर जमींदार, किसान, अहले हरफा और मजदूर पेशा थे। मुतवसित तबके में इल्म अदब, शायरी, तसव्वुफ और दीनियात की रिवायत भी बहुत उस्तवार और पुरानी थी। किसी एतबार से पानीपत हिंदुस्तान के दूसरे सूबों से मुख्तलिफ न था, बल्कि बाद शहर और कस्बे यकीनी तौर पर इससे ज्यादा आबाद, ज्यादा वसी, बारौनक और जराए पैदावार में कहीं आगे थे। मगर हिंदुस्तान की तारीख पर शायद ही किसी दूसरे शहर ने इतनी गहरी छाप लगाई हो जितना उसे पानीपत ने मुतासिर किया है। इस सरजमीन पर कई फैसला कुन जंगें लड़ी गईं। हिंदुस्तान का अजीम रजमिया महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में पेश आया था, जो पानीपत से कुछ बहुत फासले पर नहीं है। पानीपत दिल्ली का दरवाजा और आखिरी दिफाई मोर्चा था, इसलिए यहां की फतह और शिकस्त भी आखिरी होती थी। पानीपत की पहली जंग सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई और इस सरजमीन पर उस मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई जो सन 1857 में बहादुर शाह जफर पर खत्म हुई। मुगल हुकूमत अपने इब्तदाई दौर में बाबर के बेटे हुमायूं के हाथ से निकल गई थी और तकरीबन 20 साल तक शुमाली हिंदुस्तान पर सूरी अफगानों का सिक्का चलता रहा। हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से इस दौलत गुमगश्ता को फिर हासिल किया। हुमायूं के मरने पर उसका नौ उम्र

0: बेटा जलालुद्दीन अकबर वारिस हुआ। उस वक्त मुगल सल्तनत डामाडोल थी कि हीमू ने बगावत कर दी। उससे अकबर का मुकाबला सन 1556 ईस्वी में पानीपत ही के मैदान में हुआ। ये तारीख में दूसरी जंग पानीपत कहलाती है। पहली जंग ने तो मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी, इस दूसरी जंग ने उस बुनियाद को मजबूत बना दिया। तीसरी जंग सन 1761 ईस्वी में अफगान हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के दरमियान इसी मैदान में हुई। इसके असरात भी तारीख पर बहुत गहरे हैं। इस जंग ने हिंदुस्तान की फौजी ताकत को कमजोर कर दिया और बरतानवी साम्राज्य को अपना असर जमाने का पूरा मौका मिल गया। चुनाचे तकरीबन 40 साल के अंदर लॉर्ड लेक की फौजें फातेहाना शाम से दिल्ली में दाखिल हो गईं। पानीपत के कदीम जमाने की मुमताज शख्सियात में हम ख्वाजा शुक्रुल्ला अंसारी का नाम ले सकते हैं। उन्होंने सन 1732 ईस्वी में इंतकाल किया और ये मिर्जा अब्दुल कादर बेदिल के खास मुरब्बी थे। फारसी शुरा में सिर्फ एक सादुल्ला मसीहा पानीपति का नाम लेना ही काफी होगा। मसीहा ने जहांगीर के जमाने में रामायण को फारसी नज्म का जामा पहनाया था। फारसी की बड़ी और अदबी एतबार से बहुत जानदार मसनवी मानी गई है। उर्दू शायरों में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को याद कर लीजिए। वो हमारी अदबी तारीख में जदीदियत के अलमबरदार ही नहीं, पेशरो भी हैं। उन्हें सिर्फ शायरों में महसूब करना भी नाइंसाफी होगी। हाली उर्दू के दीदावर नक्काद हैं, एक बाखबर मौर्रिख और सवाने निगार हैं, एक समाजी मसले और पुरसोस दिल रखने वाले मुहिब वतन हैं, सर सैयद की तालीमी तहरीक के नकीब हैं, बेहतरीन सादा और दिलनशीन उसलूब नसर के हामिल और मुबल्लिग हैं। गरज ये कि पानीपत की सरबुलंदी के लिए सिर्फ हाली का नाम ही काफी हो सकता है। मरने के बाद भी वो कलंदर साहब की दरगाह में अंदरूनी दरवाजे की बाएं जानिब आसूदा हैं। उर्दू की दूसरी अहम शख्सियत जो खाके पानीपत से उठी वो प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम हैं, जो रियासत हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के पहले प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे। वहीदुद्दीन सलीम बहुत खुशगो शायर भी थे, लिसानियात और इश्तकाक पर गहरी नजर रखते थे। उर्दू में इस्तलाह साजी के मौजू पर सबसे ज्यादा वकी काम सलीम ही का है। वो एक अच्छे बालिग नजर नाकिब भी थे। अब जरा शेर अदब की दुनिया से निकलकर रूहानियत की महफिल में आ जाइए तो सबसे अहम और कदीम शख्सियत हजरत शर्फुद्दीन बू अली शाह कलंदर की है। आपका जमाना हजरत निजामुद्दीन औलिया का अहद बताया जाता है, मगर आपके हालात में कदीम तस्करे खामोश हैं। आपका मजार भी दो जगह है, लेकिन ज्यादा करीने सेहत यही है कि आप पानीपत में रहे और वहीं इंतकाल हुआ। कलंदर साहब फारसी के शायर भी थे और आपका कुछ फारसी कलाम हजरत गेसुदराज के पोते ख्वाजा गंज बख्श के मलफूजात मोहब्बत नामा में भी दर्ज मिलता है। सिलसिला चिश्तिया की दो बड़ी शाखें निजामिया और साबरिया हैं। हजरत मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी के वाहिद खलीफा हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क का मजार पानीपत में ही है और उनके खलीफा और जानशीन हजरत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया भी पानीपत ही में आसूदा हैं, जिनके जानशीन मखदूम अहमद अब्दुल हक रदौली में हैं। आखिरी जमाने में पानीपत की एक बहुत दिलचस्प शख्सियत हजरत गौस अली शाह कलंदर थे। उनके हालात और मलफूजात मौलाना इस्माइल मेरठी ने तस्करा गौसिया के नाम से लिखे थे, मगर ये तस्करा गुल हसन शाह साहब के नाम से छपा है। अगर उर्दू की निहायत दिलचस्प किताबों की कोई फेहरिस्त बनाई जाए तो वो फेहरिस्त खा कितनी ही मुख्तसर हो, अगर उसमें तस्करा गौसिया का नाम न हो तो नामुकम्मल ही समझी जाएगी। नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग और उर्दू के कदीम शायर हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना की अहलिया भी पानीपत में मदफून है। मिर्जा मजहर साहब के मुमताज खलीफा काजी सनाउल्ला पानीपति, जो तफसीर मजहरी जैसी जखीम और काबिल कदर तफसीर के मुसन्निफ हैं, वो भी पानीपत के थे और अब वहीं उनका मजार भी है। इस मुख्तसर जायजे से यह जरूर अंदाजा हो गया होगा कि तारीख ने पानीपत को इतना नहीं बनाया है जितना पानीपत ने तारीख बनाई है।
1: पानीपत के हवाले से अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। तहरीर प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी की थी और रावी थे अब्दुल जब्बार। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: चित्रा और केके की आवाजों में ये नगमा था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से। अगली पेशकश सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा को सुनिए, फिल्म है टशन।
1: नसीला नसीला

0: मुझसे दोस्ती करोगे। इस फिल्म का नगमा आपने आशा भोसले, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुना। आवाज कहाँ मिले सुर मेरा, तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी बहुत बड़े वाकयात होने वाले हैं। अमरीका ने हौसी हमलों के दौरान सऊदी अरब में अपने शहरियों और अमले के लोगों के लिए हिफाजत से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय मर्दों ने हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की है। और एशियाई खेलों में जापान के नगोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वफद की क़यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे।

डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब आलमी रहनुमा 22 से 28 सितंबर तक मुनक़िद होने वाले आला सतह के सालाना जनरल बहस व मुबाहिसे के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में यकजा होने की तैयारी कर रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली का 81वां इजलास एतमाद की बहाली, अक्सर तब्दीली का बंदोबस्त, एक अक़वामे मुत्तहिदा जो सबको खिदमत फराहम करती है के मौजू पर मुनक़िद किया जा रहा है। इस जनरल असेंबली में अक़वामे मुत्तहिदा के सभी 193 रुकन ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा होंगे और बड़े बैन अल-अक़वामी मामलों पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ तय करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी रहनुमाओं से कहा कि बैन अल-अक़वामी तआवुन को मजबूत करें, जैसा कि वह जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क में यकजा हो रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक 81वें इजलास में आलमी तआवुन में नई जान पैदा करने, लगातार तरक्की के मकासिद को आगे बढ़ाने और अमन वक़ार और बराबरी के लिए इज्तिमाई इकदाम को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इत्तला तो नशरियात की वजारत ने यह वजाहत की है कि केरल में दस्तावेजी और मुख्तलिफ फिल्मों के 18वें बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल नुमाइश के लिए किसी भी फिल्म को इजाजत देने से इनकार नहीं किया गया है। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर के इल्जाम के जवाब में वजारत ने कहा है कि 6 फिल्मों के लिए मजीद तफसीली सबूत फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि फिल्मों के मौजू के एतबार से कुछ फिल्मों को जायजे के लिए मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम के पास भेजा गया है। जनाब शशि थरूर ने यह इल्जाम लगाया था कि फेस्टिवल में केरलम की 31 फिल्मों को दिखाने की मंजूरी नहीं दी गई। नई काबिल तस्दीक तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी शमशी तवानाई से मुतालिक भारतीय कॉरपोरेशन के 15वें योम तासीस से उसे मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जोशी ने कहा कि शमशी तवानाई से मुतालिक भारतीय कॉरपोरेशन काबिल तस्दीक तवानाई के मुल्क के सफर को आगे बढ़ाने और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के इको निजाम को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा किया है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुजवजा कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन की निशानदेही का अमल शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का मकसद कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए दबाव को कम करना और जनूबी बंगाल में फजाई रबते को मजीद वसत देना है। जिला नादिया में कल्याणी और बीरपाड़ा समेत 9 गांवों तकरीबन 2000 एकड़ अर्जे की निशानदेही की गई है। इंसामिया ने इलाकों में जमीन की खरीदो फरोख से मुतालिक दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन भी आर्जी तौर पर रोक दिया है। रियासती हुकूमत ने रवा साल अपने बजट में इस ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस नवे मुंबई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की तर्ज पर तैयार करने का मनसूबा है। जमीन के वसूल और दीगर इंतजामी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट टीपीआर और तामीर की तारीखों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस दौरान मगरबी बंगाल के वजीर आला समुद्र अधिकारी ने कल ऐलान किया कि रियासती हुकूमत 28 सितंबर को मरकज के इलाकाई फजाई राबता स्कीम उड़ान के तहत 4 हवाई अड्डों की तरक्की के लिए हवाई अड्डों से मुतालिक भारतीय अथॉरिटी AAI के साथ एक मुफाहमत नापे पर दस्तखत करेगी। रियासती हुकूमत इन प्रोजेक्टों के लिए दरकार जमीन हवाई अड्डों से मुतालिक भारतीय अथॉरिटी AAI के सुपुर्द करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुल मरहले में है। उन्होंने खबरदार किया कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त सामने आया कि जब ईरान ने कहा है कि वो उसने अपने हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शराइत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर ली है। सदर ट्रंप का यह बयान ईरान के सदर मसूद पेशकियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आया है, जहां वो अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमरा एक आला सतही वक्त भी होगा। ट्रंप ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान की हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती तो मुस्तबिल करीब में बहुत बड़े वाकयात रोनुमा होने वाले हैं। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने कतर के जरिए अमरीका को अपनी शराइत से आगाह कर दिया है। वैनकूवर में भारत के कौंसल जनरल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी से ताल्लुक रखने वाले 2 भारतीय तलबा के मौत पर ताजियत का इजहार किया है। तरबियती प्रवास के दौरान कनाडा में एक हादसे में इन दोनों तलबा की जान चली गई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कौंसल खाने ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो सोगवार कुंभों के साथ हैं। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने सिफारती मिशन के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसके तहत सऊदी अरब में तैनात अमरीकी सरकारी मुलाजमीन को ताइफ और यांबू शहरों के तमाम सरकारी और जाती सफर के

0: मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया,
1: एक पल से मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
2: जी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म फागुन का ये गीत। और देखिए दिल तो आप हमारा ले जाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी

आपकी नेल समय आनी शुरू हो चुकी हैं, तो अब हम क्या ही बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि उन सभी मेलों को हम इसका शुमार करेंगे, शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं, हल्का सा आपको पीछे लेके चलती हूँ उस दौर में जब 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो इस फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी थी। शुरुआत होती है इस फिल्म की बीजन और बनानी। जी हाँ, ये है इस फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम। जो हीरो है वो एक जमींदार परिवार का बेटा है और जो हीरोइन है वो एक नर्तकी है। दोनों के बीच प्रेम होता है, लेकिन परिवार और सामाजिक फासले इस रिश्ते के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। मोहब्बत अधूरी रह जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधूरी प्रेम कहानी पुनर्जन्म के साथ फिर लौटती है, जैसे कोई रिश्ता वक्त से कह रहा हो कि अभी उसकी कहानी बाकी है। और अब उसी प्रेम की बेचैनी को आवाज देती एक नगमा है यहाँ पर, एक आवाज है, आशा भोसले की। और ये जो नगमा है इसे आप सुनिए और फिर मुझे बताइए कि इस गाने का या इस फिल्म का आपके जीवन में कभी कोई असर पड़ा है। तो आपकी ईमेल्स का हम बकायदा यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आइए सुनते हैं फिल्म का एक और गीत।

इतनी खूबसूरत अगर फरियाद कोई करे, इस तरह से कोई बुलाए, तो खैर कोई कहाँ रह सकता है। तो हम बात कर रही हैं 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन की, जिसमें मधुबाला के साथ है भारत भूषण, और हमारे साथ हैं आप सभी। जी

मैं आपसे बात कर रही हूँ हमारे दोस्तों की, हमारे श्रोताओं की, तो हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन है। देखिए हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रकाश वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से, और इनके साथ हैं प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा। फिर हमारे साथ हैं नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, और फिर हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, और इनके साथ हैं इनके सभी दोस्त। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, आपके परिवार के सदस्यों का भी स्वागत है। फिर ये हैं धर्मेंद्र छिपा जी, और ये लिख रहे हैं आज की फिल्म है फागुन, आप चर्चा कर रहे हैं अपनी दौर की बेहतरीन फिल्म फागुन की। जी हाँ, निर्माता निर्देशक विभूति मित्रा और इस फिल्म के अभिनय, जैसे हमने आपको बताया कि मधुबाला और भारत भूषण के साथ हैं जीवन महमूद, कुकु मुराद, और गीतकार है जी हाँ कमर जलालाबादी, और ओपी नैयर का म्यूजिक है। देखिए अब ना कुछ ऐसी मेल्स होते हैं हमारे, कुछ इतनी ज्यादा जानकार हमारे श्रोता होते हैं कि हमारा सारा काम वो और आसान कर देते हैं जब हम आपको आगे बताने वाले होते हैं, वो सारी बातें हमारे इस मेल के जरिए वो आपको पहले ही बता देते हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र छिपा जी। तो हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार भी हैं इनके साथ। फिर हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, शुक्रिया। सुदर्शन मुखी जी जुड़े हैं अनिता मुखी, सिमरन मुखी के साथ शांतिनगर सोनीपत से, इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम सुन के, अच्छा लगा, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। अब देखिए इस फिल्म में कुल जमा 7 से 8 गाने हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपको हम सारे गाने

सुनाई। अब दूसरे गाने के पहले आपको जरूर बता दूं इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। जैसे ना फिल्म की खास बात शायद आप भी जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको चौंका दे कि मधुबाला ने इस फिल्म में भी तीन भूमिकाएं निभाई जबकि भारत भूषण ने दो भूमिकाएं। यानी एक ही फिल्म में दोनों कलाकारों को अपने किरदारों के अलग अलग रूप और भाव जीने का मौका मिला। मधुबाला के लिए ये उनके अभिनय के अलग रंग दिखाने का एक बहुत बेहतरीन अवसर था। तो अब हम आपको इस फिल्म में मधुबाला पे फिल्माया एक बहुत ही चंचल सा गाना जरूर यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं फिल्म फागुन का ये एक और गीत।

तो प्यारी सी चंचल सी चुलबुली खूबसूरत दीवा मधुबाला आपकी नजर के सामने आ गई ना। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म फागुन की और आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। देखिए इस फिल्म की हम बात करते हैं तो इसका जो संगीत है वो ओपी नैयर का है और इसका संगीत है उसमें एक अलग ही लय है और एक बहुत अलग सी चंचलता भी है। और फागुन में प्रेम कभी बहुत मासूम है तो कभी शरारती है और कभी रूठने मनाने वाला भी है। और प्रेम में रुटना भी हो तो अपने आप में भी एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है ना। तो बस शर्त इतनी होती है कि अगर आप प्यार में रूट रहे हो तो कोई आपको मनाने वाला भी हो। तो आप समझ गए होंगे मैं अब फागुन की कौन से गीत की बात कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं फागुन फिल्म का एक और गीत।

0: फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना।
1: मुझे तो जाना, मुझे तो जाना, अपने ही हाँ।

रूठने मनाने और प्यार में दर्द का ये जो नगमा था, ये फिल्म फागुन का है जो हमारी आज की फिल्म है। और अब हम बात करते हैं हमारे दोस्तों की, तो हमारे साथ जुड़े हैं संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हमारे साथ हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। फिर है हमारे साथ वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और है हमारे साथ हैं बिट्टू जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, तिशानी और निमित आहूजा। फिर हमारे साथ अजीत भावसार जी हैं, इन्होंने खूब सारी जानकारी हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार के साथ हैं प्रेमिला भावसार, धन्यवाद। फिर हमारे साथ हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, क्षिप्रा गुप्ता। फिर हमारे साथ कौन है जी, ये है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। शुक्रिया बने रहने के लिए। पूनम गंगनेजा जी, आपका नाम ले चुकी हूँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर हमारे साथ कौन है ये, जी हाँ ये है बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल है ये, इनके साथ है रेखा देवी, अजय, रिमी, बॉबी, अन्विका, तनुश्री, बीके सिन्हा, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। और ये है बसंत लाल सौ, हीरा मोती पन्नालाल सौ, इनका भी मेल है, शुक्रिया। फिर है हीरामणि वर्मा, दतरंगी, भाटापारा से। और देखिए हम बात करते हैं आप लोगों की मेल्स, और भी लूंगी, इसके पहले एक गाना और आपके समक्ष रख रही हूँ। तो ये जो गाना है इसके बारे में आपसे बात कर रही है, इस फिल्म का संगीत जो है वो ओपी नैयर और गीतकार है कमर जलालाबादी। इस जोड़ी ने फागुन के लिए कई लोकप्रिय गीत दिए, इसकी धुनों में लोक और शास्त्रीय रंगों की छाप भी सुनाई देती है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शास्त्रीय रंगों की जो छाप है ना, उसमें कई जो गीत है उनमें जिस राग का प्रयोग हुआ है वो है राग पीलू। और यहाँ संगीत जो है फिल्म की कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसे यादगार भी बनाता है। तो मतलब संगीत जो है वो उसकी कहानी से गुथा हुआ है। और तो बस चलिए एक और गाना आपको सुनाते हैं, ये आवाज इसमें फिर मुख्य स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, जो इस फिल्म के संगीत में भी इन्हीं दोनों की आवाजें भी थी।

साथियों देखिए घड़ी बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही है कि आपको आगे और इस फिल्म के गाने दो और सुना पाऊं, लेकिन आपको बता दूं हमारे साथ जो दोस्त हैं वो हैं ये हैं डीबी राणा जी, ये हैं हमारे साथ नेहरू विहार दिल्ली से, और फिर हमारे साथ जुड़े हैं पी एस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, सोपान तायरे, ये हमारे संग नरलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़े हैं। फिर है हमारे साथ संजय ढींगे, नमन ढींगे, अपार ढींगे, बागपत उत्तर प्रदेश से। फिर हमारे साथ जुड़े हैं जगर राम साहू, माफ कीजिएगा, और ये हैं ग्रामनगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। इनके साथ हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। आपकी मेल हम ले चुके हैं पहले भी, आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपको इस फिल्म के बाकी जो दो गाने हैं उनकी हल्की हल्की झलक भी सुनवा के जरूर जाएंगे।

दोस्तों, ये थी 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन, और आज हमने सफर ये तय किया इसी फिल्म का, हमारी आज की ये फिल्म थी, और हम किसी और दिन किसी और मौसम का कोई और रंग लेकर आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप पंजाबी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन में अमन देव। पहला चुनावी खबरां। सेहत और परिवार भलाई राज मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दवाइयां के बुरे ते प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी मुलांकण ते रोकथाम विच भारत का सफर आत्मनिर्भरता की एक शानदार मिसाल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सैशन की उच्च पदरी मीटिंग दौरान भारतीय वफद की अगुवाई करेंगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब बठिंडा के तलवंडी साबो तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे गेड़ की शुरुआत की। पाकिस्तानी हवाई फौज ने तड़के अफगानिस्तान के कुनार से पक्तिका सूबे हवाई हमले किए हैं। एशियाई खेडों में भारत ने मर्दा के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में दो तमगे जीते हैं। सेहत और परिवार भलाई राज मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या वरतियां जा रही दवाइयां के बुरे से प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी मुलांकण और रोकथाम में भारत का सफर आत्मनिर्भरता की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने यह गल नई दिल्ली में नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया के 7वें एडिशन जारी करद कही। श्रीमती पटेल ने कहा कि इस समय देश में दवाइयों के बुरे प्रभावों से प्रतिकूल रिएक्शन की निगरानी लिए 1100 तो वध केंद्र काम कर रहे हैं और सरकार का उद्देश्य इन की गिनती मुढ़लियां सेहत इकाइयों के पद्धर तक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व सेहत संगठन के मरीज सुरक्षा डाटाबेस में दवाइयों के माड़े प्रभावों से प्रतिकूल असर की निगरानी संबंधित जानकारी

0: 2014 से 123वें स्थान तो बढ़ के 8वें स्थान पे पहुंच गया है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: मुख्यमंत्री ने नागरिकों को अपील की थी कि वो डॉक्टरों वालों दसी गई दवाई ही लैन तो खुद दवाई लैन तो गुरेज कर। उन्होंने कहा कि किसी दवाई के माड़े प्रभाव को कदे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सैशन दौरान उच्च पदरी बैठक दौरान भारतीय वफद की अगुवाई करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को महासभा के उच्च पदरी सैशन को संबोधन करेंगे। वो इस दौरे दौरान कई बहुपक्षी और दौलियां मीटिंग भी करेंगे। 22 सितंबर को 28 सितंबर तक होने वाली सालाना उच्च पदरी मीटिंग लिए दुनिया के चोटीले नेता संयुक्त राष्ट्र सदर मुकाम पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सारे 193 मैंबर देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सीनियर प्रतिनिधि महासभा में हिस्सा लेंगे। वो मुख्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से अपने देशों की तरजीहां और स्टैंड सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के सचिव जनरल एंटोनियो गुतरस ने विश्व नेताओं को अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का सद्दा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अज 7 न्यायिक अधिकारियों को जजों वजो सहु चुकाई गई। इस नाल हाईकोर्ट में जजों की कुल गिनती 50 हो गई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस निवेदिता अनिल शर्मा निशा सहाय सक्सेना संजय शर्मा भरत प्राशर अदिति चौधरी दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज ने अहुदे की सहु चुकाई। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश तो बाद 19 सितंबर को इन सत्तों की नियुक्ति का ऐलान किया। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज बठिंडा के तलवंडी साबो तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे गेड़ की शुरुआत की। उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहब विखे मत्था टेकया। इस मौके बीजेपी के पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों पंजाब इंचार्ज सतीश पूनिया एचएस फूलका तरुण चुग सुनील जाखड़ भी उन्होंने नाल मौजूद रहे। इस मौके इकट्ठ को संबोधन करदे श्री चौहान ने नशे को ठाल पाने लई लोगों को यात्रावां का हिस्सा बनाने का सद्दा दिता।
3: भारतीय जनता पार्टी नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके समाप्त कर देगी। यह हमारा संकल्प, हम नशे की जड़ पर चोट करेंगे, हम उस चैनल को ध्वस्त करेंगे। ड्रग माफिया कौन है और वो भी सावधान हो जाए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वो तो जाएंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। हम नशे के कारोबारियों को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे, ये हमारा संकल्प है। इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं पंजाब की जनता से आज ये विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ, जुड़िए हमारी यात्रा के साथ, समर्थन दीजिए यात्रा को, मिलकर हम साथ चलेंगे।
0: श्री चौहान नशे नाल बर्बाद हुए परिवारों को भी मिले। यह यात्रा पंजाब में दरपेश मौजूदा तीन वड्डियां चुनौतियां, वधदी नशाखोरी, बिगड़दी कानून व्यवस्था और शासन के हर पद्धर से भ्रष्टाचार के केंद्र है। उधर नशा मुक्त पंजाब यात्रा का कल अमलोह पहुंचने पर इलाका निवासियों ने स्वागत किया। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे पार्टी के सूबा जनरल सकत्र परमिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि यह यात्रा कोई राजनीतिक लाभ लैण लई नहीं, सगों समूहक रूप में इकट्ठे होकर पंजाब अंदर नशे नूं ठल पाउण दी है। यह खबर तुसीं आकाशवाणी तों सुन रहे हो। साडा एक्सेंडल है @AIRRNU जलंधर। बीजेपी ने अज साबक उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हालिया टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की सख्त आलोचना की है। पार्टी हैडक्वार्टर विखे एक प्रेस कांफ्रेंस में संबोधन करते हुए बीजेपी के बुलारे सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि श्री अंसारी ने 2019 लिखी एक किताब का हवाला दिता जिस कहा गया कि साबक प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म नालों वड्डा खतरा मानते सन। श्री त्रिवेदी ने इल्जाम लाया कि कांग्रेस अज खब्बे पक्षी विचारधारा वाल वध गई है, कम्युनिस्ट विचारधारा तो डूंगी तरह प्रभावित है। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केरला के 18वें अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजी ते शॉर्ट फिल्म उत्सव विच किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग लई मंजूरी देने तो इनकार नहीं किया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के इल्जामों का जवाब दिंदे मंत्रालय ने कहा कि 6 फिल्मों लई वाधू जानकारी मंगी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच मंत्रालय ने कहा कि कुछ फिल्मों नूं उन्हां दे विषय कारण समीक्षा लई संबंधित अधिकारी कोल भेजा गया है। श्री थरूर ने इल्जाम लाया कि केरला दी 31 फिल्मों नूं फेस्टिवल विच दिखाउण दी आग्या नहीं दित्ती गई। पाकिस्तानी हवाई फौज ने अज तड़के अफगानिस्तान के कुनार ते पख्तिका सूबे विच हवाई हमले किए ने।

0: मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। भारत अब तक 6 तमगे हासिल कर चुका है। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि फार्माकोविजिलेंस यानी दवाओं के महफूज होने और अद्वियात की निगरानी के शोबे में भारत का सफर गुज़श्ता वर्षों में खुद इन्हेसारी की एक काबिल कदर मिसाल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में 7वें नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के रस्म इजरा के मौके पर यह बात कही। मोहतरमा पटेल ने कहा कि सरदस्त मुल्क में दवाओं के नामवाफिक असरात की निगरानी करने वाले 1100 से ज्यादा मरकज काम कर रहे हैं और सरकार ये तादाद प्राइमरी हेल्थ सहूलत की सतह तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि मुल्क अब आलमी सेहत तंजीम के मरीजों से मुतालिक सेफ्टी डेटाबेस के लिए फार्माकोविजिलेंस डेटा फराहम करता है। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने इस बात को उजागर किया कि WHO को यह डेटा फराहम करने के एतबार से भारत अब 8वें मुकाम पर आ गया है, जबकि 2014 में 123वीं पोजीशन पर था। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के 25 ममालिक भारत की फार्माकोपिया यानी किताबुल अदविया को तस्लीम और कबूल करते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो अपने तौर पर किसी भी तरह की दवा लेने से गुरेज करें, डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा खाएं और किसी भी दवा के अचानक या गैर मुतवक्के साइड इफेक्ट्स को भी नजरअंदाज न करें। आज बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की हालिया रायजनी पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी तर्जुबान सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जनाब अंसारी ने 2019 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू फिरकावारियत से बड़ा खतरा हिंदू कौम परस्ती को मानते थे। जनाब त्रिवेदी ने मुबीना तौर पर कहा कि आज कांग्रेस बाएं बाजू की जानिब झुक गई है और कम्युनिस्ट नजरियात से बहुत ज्यादा मुतासिर है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक नायब सदर की रायजनी कांग्रेस के नजरिए की अक्कासी करती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। वो कल केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सदर जमहूरिया साल 2024 के भारतीय सिनेमा में हुसूलियाबी को तस्लीम करते हुए कल कौमी फिल्म अवार्ड्स अदा करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। ये अवार्ड्स हर साल इत्तलात नशरियात की वजारत के तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड्स के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अदा किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। इशिका की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज बठिंडा में तलवांडी साबू में नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे मरहले का आगाज करेंगे। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी उनके हमराह होंगे। इस यात्रा में उन 3 अहम चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिनका इस वक्त पंजाब को सामना है। यह है मनुष्यात की बढ़ती लानत, अमन कानून की खराब होती सूरत हाल और हुक्मरानी की सतह पर बदनवानी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि इस नजरिए को राम मंदिर और तहजीबी बेदारी के अहिया के जरिए किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: साल 2014 में मरकज में सरकार बदलने और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तश्कील के बाद भगवान राम के शहर अयोध्या की कायापलट ने रफ्तार पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीम उशान राम मंदिर की तामीर के राह हमवार हुई और दीप उत्सव तकरीबात जैसे इकदाम से अयोध्या की खोई हुई सकाफती और मजहबी शान शौकत बहाल करने का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान राम के इस शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा कि अगर भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाना है

0: तो उन्हें अपने अंदर भगवान राम के अवतार को जगाना होगा।
1: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: आज ओहिज्म हैज आस्था का एक मरकज नहीं बल्कि मजहबी सियासी कनेक्टिविटी और रोजगार के मौके के शोबे में नए पैमाने तय कर रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
2: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। मरकजी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी किए गए इब्तदाई नतायज के मुताबिक मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात में रूस की हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल की हुई है। पार्टी को तकरीबन 57.5% वोट मिले हैं। हतमी नतायज 25 सितम्बर को आने का इम्कान है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने इससे पहले इंतखाबात में 324 सीटें जीती थीं। ये इंतखाबात यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई के दरमियान हो रहे हैं और कीव की जानिब से रात भर का एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूसी अहलकारों ने कहा है कि 1900 से ज्यादा ड्रोन इस हमले में शामिल थे जिसमें तकरीबन 2 अफराद की मौत हो गई और तेल की एक रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अंडमान निकोबार जजायर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तीसरा तमगा हासिल कर लिया है। भारत निशानेबाज हिमांशु ढिल्लों ने चांदी का जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। हिमांशु ढिल्लों पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल पर मुश्तमिल भारतीय टीम दूसरे मकाम पर रही है। मिक्स मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने खवातीन के 60 किलोग्राम रिवायती जुमरे के सेमीफाइनल में कांसे का तमगा जीता है। भारत ने अब तक 6 तमगे जीते हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खवातीन के रिवायती 60 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा जीतने पर सुचिका तरियाल को मुबारकबाद दी है। उन्होंने रुद्रांश पाटिल पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों को भी मुबारकबाद पेश की है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है जिससे खुद किफालत के भारत के काबिल कदर सफर की अक्कासी होती है। उन्होंने नई दिल्ली में 7वां नेशनल फार्मूलरी जारी किया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की रायजनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लियामानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kiev. Russian officials said more than 1,900 drones were involved, killing at least two people and damaging an oil refinery. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team events. In mixed martial arts, Suchikata Riyal bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Choi in the women's 60-kilogram traditional semi-final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalised comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
2: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच ये 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराट नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्धनगर जिले की कम्बिकोड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील

0: हासिल की है। बठिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब में नशा मुक्ति के अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुलूम किसी का चलता है। ये जुलूम का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूं, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेकर आया हूं।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिन्दू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ी।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव

0: इसराइल के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो से तीन दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दो पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में तीन पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूं, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, 23 सितंबर 1943 को मुंबई में एक ऐसी कलाकार ने जन्म लिया जिसने भारतीय सिनेमा को अपनी मुस्कान, एक्टिंग और मोहक अदा से रोशन किया।

जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहक कलाकारा तनुजा समर्थ की, जिन्हें दुनिया ने तनुजा के नाम से जाना है। वो जिन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में अपनी अनूठी छाप छोड़ी, एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी आंखों में सपने और दिल में हिम्मत। आज हम इनके करियर और कलरफुल लाइफ के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म इम्तिहान का ये शानदार संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज की जो कलाकार हैं वो हैं तनुजा जी। श्रोताओं, तनुजा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सिनेमा सिर्फ पेशा नहीं लाइफ थी। इनके पिता कुमार सेन समर्थ मराठी सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर थे और माँ शोभना समर्थ हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस। बड़ी बहन नूतन जो पावरफुल एक्ट्रेस थी तनुजा की इंस्पिरेशन भी थी। छोटी बहन चतुरा और रेशमा, भाई जयदीप, दादी रत्ना बाई और चचेरी बहन नलनी जयवंत, ये सभी सिनेमा से जुड़े थी। एक तरह से तनुजा का परिवार सिनेमा का मंदिर था। स्कूलिंग के दौरान ही तनुजा के ऊपर सिनेमा का जादू चल गया था। महज 7 साल की उम्र में 1950 में इन्होंने हमारी बेटी में बेबी तनुजा के रूप में डेब्यू किया। मां शोभना की बनाई फिल्म में नूतन लीड रोल में थी। कैमरा के सामने तनुजा का मासूम चेहरा चमक उठा। इसके ठीक 10 साल बाद तनुजा ने 1960 में मां शोभना की ही फिल्म छबीली में सपोर्टिंग रोल निभाया, नूतन की छोटी बहन का किरदार। इनकी चंचल मुस्कान और सहज अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद तो तनुजा का करियर चल निकला। अब आगे इनकी फिल्मों से जुड़ी और भी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म इजाजत का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में, कलाकार तनुजा की, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, फिल्म हमारी याद आएगी से लीड एक्ट्रेस के तौर पर तनुजा जी की शुरुआत हुई। 60 के दशक में तनुजा जी के लिए सुनहरा समय साबित हुआ। मेम दीदी, चांद और सूरज, आज और कल, भूत बंगला, बहारे फिर भी आएंगी जैसी फिल्में इनके करियर की टर्निंग प्वाइंट थी। फिर देवानंद के साथ इनकी फिल्म ज्वेल थीफ ने इनको स्टारडम की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तनुजा का चुलबुला अंदाज, रहस्यमय मुस्कान और ने इन्हें हर दिल की धड़कन बना दिया। फिल्म फेयर ने इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया। इसके बाद इन्होंने नई रोशनी, जीने की राह, पैसा या प्यार, हाथी मेरा साथी, मेरे जीवन साथी, दो चोर जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। तनुजा जी हर किरदार में जान डाल देती थी, चाहे वो रोमांटिक हो, हास्य किरदार हो या एक भावुक पत्नी का। दोस्तों, इनका जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बंगाली फिल्मों में भी इन्होंने तहलका मचा रखा था। हिंदी और बंगाली सिनेमा के बीच का ये पुल इनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक था। आगे इनकी पर्सनल लाइफ और कमबैक के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सुनिए इनकी फिल्म जीने की राह का ये सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी और आज की जो कलाकार हैं वो हैं तनुजा जी। दोस्तों तनुजा जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका करियर जब पीक पर था तभी इन्होंने 1973 में फिल्म मेकर शोमू मुखर्जी से शादी की। शादी के बाद तनुजा ने लीड भूमिका कम की लेकिन सपोर्टिंग रोल्स में चमकी। इस दौरान इन्होंने हिंदी मराठी बंगाली फिल्मों में लगातार काम किया। इतना ही नहीं इन्होंने खानदान जुनून और आरंभ जैसी टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इनकी दो बेटियां हैं काजोल और तनीषा। बेटी काजोल बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं और तनीषा भी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। काजोल की शादी अजय देवगन से हुई है। इसके अलावा रानी मुखर्जी मोनीश बहल और डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी इनके रिश्ते में आते हैं। अब आगे इनके अवार्ड्स की भी बात करेंगे पर अभी सुनिए इनकी फिल्म मेरे जीवन साथी का ये सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, तनुजा जी ने 2000 के दशक में साथिया, खाकी दीवार और सन ऑफ सरदार फिल्म में सपोर्टिंग रोल की, जिन्हें फैंस का प्यार मिला। 2008 में जी टीवी के रॉक एंड रोल फैमिली सीरीज में तनुजा बेटी काजोल और दामाद अजय देवगन के साथ जज की भूमिका में नजर आई। वहीं 2013 में एक मराठी फिल्म के लिए इन्होंने एक विधवा का रोल भी निभाया, जिसके लिए इन्होंने अपना सिर तक मुड़वा लिया। ये इनका सिनेमा के प्रति डेडिकेशन दिखाता है। अब अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें बेनजीर फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला था। पैसा या प्यार फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2014 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा इन्हें ढेरों अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए इसी बात पर हम सुनेंगे अगला गीत, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अपने कुछ श्रोताओं के मेल जो हमारे पास पहुंच चुके हैं। ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, और ये है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मेघा चंडीगढ़ से, राहुल, रचिता, केशु और रिदान, और ये सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर।

सोनीपत। और आगे बढ़ते हैं, ये है कुमार हेंडा सहारनपुर से, सैयद मंसूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम। और नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से एस नाहवाहाकर, निर्मला, विशाल। मलकापुर से नारायण, सोपान, राजकुमार, आशीष। और ये है शिव गोपा, प्रेम, कपिल, शिवांग, संगीता, लिपि, पश्चिम सिंहभूमि, झारखंड से। और ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुल्लूर, गुल्लाल और अविराज सिंह। और ये हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से। और ये हैं अमर रमेश कुमार खत्री, जाफर सादिक सैक, शंकर गुल शर्मा और टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री। ये हैं। और ये आगे हैं छत्तीसगढ़ भंवरपुर से चंपा, राधेश्याम और जगदीश जी। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी, प्रमोद कुमार डूंडी। और ये है गांव नथाना से हरिजिंदर छिंदा, जयवीर, जस्सी, सीता और गीता पंजाब से। और ये है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, वड़िंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती जी हैं। और सदा ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां। और ये है नितेश कुमार देवगन और दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा देवगन जी। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओ, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने आखिरी पड़ाव में। हमारे कुछ श्रोता और जुड़ चुके हैं, उनके नाम भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भारत धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाले चौक जालंधर से, और इनके साथ हैं ये जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ परियारी से, प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा जी का है। और ये है, आगे हम चलते हैं, हमारे कुछ श्रोता बहुत बार मेल कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं। ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी और प्रमोद कुमार डूंडी।

नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद और पूना राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारे दूसरे श्रोताओं का मेल। और ये हैं हमारे साथ पीटीआई से, ये पीटीआई से नहीं है, ये हैं हमारे श्रोता अजीत भावसार। ये हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये तनुजा जी आज 83 साल की उम्र में भी अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं और सिनेमा से इनका रिश्ता अटूट है। अब भी ये बहुत से इवेंट्स का हिस्सा बन रही हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही इनकी मुस्कान, इनका जज्बा और इनकी विरासत सदा चमकती रहे। ये एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक युग की पहचान है। तो श्रोताओं, जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं इम्तिहान फिल्म के इस गीत के साथ। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे हम फिर से वापस आएंगे मैटिनी मेलोडीज में।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

0: समीश्वर मेरे साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पिछले खिदमत प्रोग्राम कहकशां, आज इस प्रोग्राम में सुनिए जुबैदा फिल्म की कहानी और नगमे जिसे तरतीब दिया है तारिक हमीद ने।
1: फिल्म की शुरुआत एक जनाजे से होती है जिसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा रेजू भी शिरकत करता है। कफन दफन के बाद वो अपनी नानी सुरेखा सिकरी से पूछता है कि वो क्यों रो रही है। वो बताती है कि एक परियों की शहजादी थी जो अपने रेजू बाबा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो परियों की शहजादी कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। मगर वो बच्चा ये मानने को

बिल्कुल तैयार नहीं है कि इसकी मां मर गई है, इसलिए वो अपने दोस्तों से लड़ाई भी करता है। कहानी आगे बढ़ती है। इसकी आया इस बच्चे को बताती है कि वो इसकी दूसरी मां थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। इसका नाम था जुबैदा। जुबैदा के अब्बा उसकी मौत पर भी उसे माफ नहीं करते हैं, इसलिए वो इसे मिट्टी देने भी नहीं गए। वक्त बीता, रेजू यानी रियाज मसूद जवान होकर अपनी मां की एक झलक देखने के लिए बेताब हुआ। रियाज मसूद रजत कपूर इस फिल्म को तलाश करने लगा जिसमें उसकी मां जुबैदा ने काम किया था, और इसी फिल्म की वजह से जुबैदा के अब्बा सुलेमान सेठ अमरीश पुरी का बंबई में एक स्टूडियो था, और इस स्टूडियो में डांस मास्टर हीरालाल शक्ति कपूर से जुबैदा डांस सीखा करती थी और इसे डांस के लिए तैयार करती थी। मिसेज रोजी ललित दुबे, वो कमजोरी थी सुलेमान सेठ की। जब सुलेमान सेठ ने अपना स्टूडियो नंदलाल सेठ को फरोख्त कर दिया तो सेठ ने जुबैदा को लेकर बंजारन लड़की पर एक फिल्म बनाई।

इसी फिल्म की तलाश थी रियाज मसूद को। डांस सीन तैयार हो चुका था मगर वो फिल्म नहीं मिल रही थी। रियाज मसूद की अगली मुलाकात होती है मिसेज रोजी से। जुबैना की आगे की जिंदगी पर रोशनी डालती हैं मिसेज रोजी। सुलेमान सेठ अपने दोस्त साजिद रशीद के बेटे महबूब आलम विनोद शरावत से जुबैदा की शादी तय कर देते हैं। जुबैदा इनकार करती है मगर बाप की जिद के आगे इसकी एक नहीं चलती। वो आजाद रहना चाहती है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहती है मगर उसकी सोच पर, उसकी आजादी पर सुलेमान सेठ का पहरा लगा रहता है। उसकी नजर में प्यार मोहब्बत फिल्मी बातें हैं और इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। जुबैदा अपने बाप के आगे घुटने टेक देती है और उसकी शादी हो जाती है।

अपनी खुशियों और अपने जज्बात का गला घोट कर जुबैदा अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेती है। यहाँ पर कहानी ड्रामाई मोड़ में दाखिल होती है। साजिद रशीद अपने बेटे और बहू के साथ वापस कराची जाने का फैसला करते हैं। ये खबर सब पर बिजली की तरह गिरती है। सुलेमान सेठ अपना दबदबा बनाए रखने के लिए साजिद रशीद से फैसला वापस लेने को कहता है, मगर साजिद उनकी एक नहीं सुनता। बहस चलती रहती है। ये बहस तीखी नोकझोंक में तब्दील हो जाती है। ऐन उसी वक्त जुबैदा एक खूबसूरत बच्चे यानी रेजू को जन्म देती है। रेजू का आना भी साजिद को कराची जाने से नहीं रोक पाता है। नतीजा होता है जुबैदा की मुकम्मल आजादी, यानी महबूब आलम अपनी बीवी को तलाक दे देता है और कराची वापस चला जाता है। जुबैदा के जज्बात का ख्याल किसी को नहीं था। सुलेमान सेठ अपनी जिद और अना की खातिर पहले जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता है और बाद में तलाक के लिए। जुबैदा की जिंदगी खुलने से पहले ही मुरझाने लगी। खुशी की जगह उदासी जुबैदा की जिंदगी में हायल हो गई थी। सुलेमान सेठ की कमजोरी यानी मिसेज रोजी जुबैदा की जिंदगी में फिर से खुशियां भरने के लिए उसे अपने घर से बाहर निकालती है और सैर व तफरी का बहाना बनाकर पोलो का मैच देखने जाती है। पोलो का वो मैच जिसमें फतेहपुर के राजा विजेंद्र सिंह मनोज वाजपेयी हिस्सा लेते हैं। राजा विजेंद्र सिंह यानी विक्टर से जब जुबैदा की मुलाकात होती है तो वो जुबैदा की खूबसूरती पर इस कदर फिदा होता है कि फौरन इसे ताज में डिनर की दावत दे देता है। इस तरह दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस काम में बराबर की शरीक होती है मिसेज रोजी। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी गलतफहमी, थोड़े तहाइफ के बाद जुबैदा और विक्टर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। फयाजी बेगम यानी जुबैदा की मां उसकी मुखालफत करती है, मगर बेटी की खुशी की खातिर मजबूर हो जाती है। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि रेजू उसके पास ही रहेगा। एक बार फिर जुबैदा हालात से समझौता करती है और विक्टर के साथ फतेहपुर के लिए रवाना हो जाती है। जुबैदा के लिए विक्टर तो सब कुछ था। इसे अपने आजाद होने का एहसास कभी भी इस तरह नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था, जैसे इसके पर निकल आए हों। अगर विक्टर कहते कि अभी अभी कूद पड़ो तो वो बिला झिझक कूद पड़ती। वो समाज के बंधन को तोड़कर मोहब्बत के बंधन में बन गई थी। विक्टर जुबैदा को मीनाक्षी देवी बनाकर फतेहपुर के राजमहल ले आता है। पूरी शान व शौकत से उसका स्वागत होता है। राजमहल के दस्तूर के मुताबिक विक्टर की पहली बीवी रानी मंदिरा देवी रेखा से जुबैदा यानी मीनाक्षी देवी मिलने जाती है। मंदिरा इसे राजमहल की रीत और रिवाज तौर तरीके के बारे में बताती है। जुबैदा को ऐसा लगता है कि रानी बनकर रहने से इसे घुटन होने लगेगी, उसकी जिंदगी दूभर हो जाएगी। मंदिरा कहती है कि यही राजमहल का रिवाज है। जुबैदा को बहुत अटपटा लगता है। बाद में वो विक्टर के साथ सैर को निकल जाती है।

इस पूजा में जुबैदा तो शरीक होती है मगर अपने ढंग से। गीत के दौरान नाचना शुरू कर देती है जो किसी महारानी की शान के खिलाफ है। मंदिरा देवी इसे मना करती है और राजमहल के अपने कायदे और दस्तूर का हवाला देती है जिसे न तो तोड़ा जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। जुबैदा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी राजमहल की इन चार दीवारियों में कैद होकर रह गई है। उसकी आजादी छीन गई है जबकि वो आजाद रहना चाहती है। सारी रस्मों को तोड़कर वो जीना चाहती है। वो नाराज होकर चली आती है। विक्टर इसे मनाता है और उसे वो कोठी उसके नाम कर देता है जिसमें जुबैदा रह रही होती है। जुबैदा की जिंदगी में परेशानी का सबब बनता है विक्टर का रंगीन मिजाज, छोटा भाई राजा उदय सिंह, राहुल महारिया।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामीन की मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में अपना पंचफिल्म का नगमा मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ऑल इंडिया रेडियो द विदेश प्रसारण सेवा दासी राय की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते करेंगा। आज ऐसा हाजिर है एक वार्ता देसी राय की गीत संगीत दे नाल। और सुन रहे हैं पहले वार्ता मोनिका चावला की आवाज विच कलम के धनी राष्ट्रीय कवि दिनकर।
1: रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर एक आम कवि ना थी करके ओज दे कवि, वीरता दे कवि, राष्ट्र दे कवि भी हन। आज ऐसा दिनकर जी दे जीवन परिचय दे नाल नाल साहित्यिक परिचय दे बारे भी चर्चा करे सो। ते हुंदे तो पहले जन चेतना दे अमर गायक ते क्रांतिकारी कवि रामधारी जी दा जन्म। रामधारी जी दा जन्म बिहार राज्य दे सिमरिया जिला बेगूसराय च सन 1908 थिया है। हिना दे पिता जी दा नाम रवि सिंह ते माता जी दा नाम मनरूप देवी है। रामधारी दे बचपन च हिना दे पिता जी दा देहांत थी गया है। रामधारी दे पिता जी पेशे तो किसान हन। रामधारी सिंह दिनकर नदी पार करके पढ़न वेंदे हन। हिना दी विधवा मां ने ही हिना दे बहन भिरावां दा पालन पोषण कीता है। रामधारी जी ने मुकाम घाट तो हाई स्कूल करके पटना विश्वविद्यालय तो बीए दी शिक्षा प्राप्त की थी। एक समय इयो जावी आया हिना को बहु संघर्ष करना पिया तो बहु मुश्किलों दा सामना करना पिया। इतनी मुश्किलों दे बाद भी रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। रामधारी जी ने बहु सारी भाषा सिखिया ते खासकर हिंदी भाषा एच हिना दी विशेष रुचि करके हिना ने हिंदी भाषा दी बहु सेवा की थी। बीए पास करन दे बाद रामधारी ने एक माध्यमिक विद्यालय एच प्रधानाचार्य दे पद ते भी काम कीता। हिंदे बाद दिनकर जी बिहार सरकार दे सब रजिस्ट्रार दे प्रचार विभाग एच उप निदेशक भी रहे। ते थोड़े दिन बाद मुजफ्फरपुर दे एक कॉलेज एच हिंदी विभाग दे अध्यक्ष ते भागलपुर विश्वविद्यालय दे कुलपति ते भारत सरकार दे हिंदी सलाहकार भी बन के काम कीता। रामधारी एक श्रेष्ठ कवि ते श्रेष्ठ वक्ता भी हन। ओ वाकपटु हन, ओ स्वाभिमानी व्यक्ति भी हन। रामधारी राज्यसभा दे मनोनीत सदस्य भी हन। ही करके ही रामधारी को राजनेता भी आदे हन ते एक उच्चे दर्जे दे कवि भी आदे हन। रामधारी को पद्म विभूषण पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया। हुना दी किताब संस्कृति के चार अध्याय वास्ते साहित्य अकादमी पुरस्कार ते उर्वशी वास्ते ज्ञानपीठ

पुरस्कार दिता गया। अपनी लिखी रचना ते कृतियां करके दिनकर जी सदा अमर रासन। द्वापर युग दी इतिहासिक घटना महाभारत ते आधारित हिना दी प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को संसार दे सर्वश्रेष्ठ 100 काव्या विच 74वां स्थान दिता गया। 24 अप्रैल 1974 को ही काव्य मनीषी दा देहांत थी गया, बल्कि इन्हें आखो हिना दा देहांत कहने थिया। हिना दा यश काय आज भी अमर है, या इन्हें भी आख सकने हैं कि हिना दा यश रूपी शरीर हमेशा अमर रासी। हिंदी साहित्य हिना दे कढ़ाई ना भूलन आले योगदान दा हमेशा करजाई रासी। दिनकर जी ने जिन्ना हिंदी साहित्य च योगदान दिता, उन्हा ना ते कोई भूतकाल च ते ना ही कोई भविष्य च दे सकसी। दिनकर जी लिखी हुई बहुत सारी रचना को देश च सराहा गया। हुन असा हिना दे साहित्य परिचय बारे गल करेने है। रामधारी ने अपने राष्ट्र भाव नाल लोगा च एक नवा जोश भर दिता। रामधारी को छाया अवधोतर काल दे सर्वश्रेष्ठ कवि ते प्रगतिवादी कवि भी समझा वेंदे। हिना दे काव्य करण दी प्रतिभा ने हिना को ढेर लोकप्रियता भी दिलवाई। रामधारी दे सौंदर्य प्रेम राष्ट्र प्रेम ते लोक कल्याण आदि कई विषय बारे कविता लिखिया, लेकिन हिना दी राष्ट्र भाव वाली कविता ने दुनिया को ढेर प्रभावित किया। दिनकर जी ने रश्मि रथी ते कुरुक्षेत्र वर्गी कई रचनाएं अपनी प्रतिभा को होर उजागर किया। रामधारी ने अपनी कृतियां जो कुछ भी लिखा समाज को ध्यान च रख के लिखा, और समाज की सच्चाई को बहुत चंगी तरह जानते हैं। समाज च थिंदे हुए अत्याचार दे खिलाफ लिखते हैं, समाज की बुराइयां बारे लिखते हैं। एक कवि युग दा ज्ञाता होंदे, जेकर हुकु युग दा ज्ञान कहनी ओ सच्चा कवि कहनी, एक कवि को हमेशा सच लिखना चाहिए। दिनकर इकबाल रविंद्रनाथ टैगोर कीट्स ते मिल्टन तो बहु प्रभावित हन। दिनकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी दी कृतियां दा बंगाली भाषा तो हिंदी एच अनुवाद भी कीता है। दिनकर जी दी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिंदे एच संस्कृत दे तत्सम शब्दा दा प्रयोग कीता गया। किथे किथे उर्दू ते अंग्रेजी शब्दा दे प्रयोग नाल हिना दी भाषा बड़ी प्रभावित ही गई। दिनकर दी भाषा भाव दे हिसाब नाल परिवर्तनशील भी है, हिंदी च मुहावरे ते नकोक्तियां भी वरती गई। दिनकर जी ने काव्य च तुकांत ते अतुकांत दुए तरह दे छंद मिलदे हन। कुरुक्षेत्र रचना च मांत्रिक छंद दे नाल नाल वार्णिक छंद भी मिलदे हन। अलंकारा च उपमा अलंकार रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार ते अनुप्रास अलंकार आदि खासकर वरते गए हैं। दिनकर जी दी पहली कविता 1924 छात्र सहोदर नाम दी पत्र च प्रकाशित थई। दिनकर दा पहला कविता संग्रह रेणुका नवंबर 1935 प्रकाशित हुआ। दिनकर दी रश्मि रथी ते परशुराम की प्रतीक्षा महान रचनाएं शामिल हैं। रामधारी जी दी लिखिया हुईया कुछ रचना रेणुका। रेणुका के है? रेणुका एक इहो जी कृति है जिंदे च पिछले वक्त दे गौरव दी गाथा गाई गई है। रेणुका च पिछले वक्त दे गौरव दे नाल नाल आज दे वक्त दे हालात को भी दिखावण दी पूरी कोशिश कीती गई है। हुंकार हुंकार भी दिनकर जी दी इहो जी कृति है जिंदे च अज दे हालात को दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र कृति दूजे विश्व युद्ध तो बाद लिखी गई, हिंदे च महाभारत को आधार बना के अज दे हालात को दिखावण दी कोशिश कीती गई। कुरुक्षेत्र तो बाद रामधारी जी दी रश्मि रथी प्रसिद्ध रचना है। रश्मि रथी च रामधारी जी ने करण दे जीवन को सत सरगा च वंड के लिखा है। हिंदी च दिनकर जी ने महाभारतीय कथा तो उत्तर उठ के करण दे चरित्र के दे सारे पक्षों को दर्शाया है।
ਰਸ਼ਮੀ ਰਥੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਅਵੈਧਤਾ

रहे असी तुरदे रहे। अगली गजल मैं पेश कर रहा हूं, बेल फोलन नू जी करदा है, बेल मिली ता फेरा पावी, बेल फोलन नू जी करदा है, बेल मिली ता फेरा पावी, बेल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बितावी, बेल फोलन नू जी करदा है, ओ जो साहां दे विच रहिंदे परना किधरे नजरी पेंदे, ओ जो साहां दे विच रहिंदे परना किधरे नजरी पेंदे, मेरे मौला मेल करावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बितावी, दिल फोलन नू जी करदा है, फुल्लां दी खुशबोई वर्गा गुम गया अरजोई वर्गा, नी पौने तू लब लियावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बितावी, दिल फोलन नू जी करदा है, फिर है याद उसे दी आई आके सुती पीड़ जगाई, फिर है याद उस दी आई आके सुती पीड़ जगाई, मैनू कागज पेन फड़ावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बतावी, दिल फोलन नू जी करदा है, बुझदे दीवे तरला कीता मुक्या साडा तेल वे मीता, बुझदे दीवे तरला कीता मुक्या साडा तेल वे मीता, थोड़ा खून जिगर दा पावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बितावी, दिल फोलन नू जी करदा है, तू भी बैठा की जरके बीते नू फिर चेते करके, तू भी बैठा की जरके बीते नू फिर चेते करके, सारा दिल दा हाल सुनावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बतावी, दिल फोलन नू जी करदा है, बुक्कल दे विच लैके तैनू जी भर के मैं वेखा तैनू, बुक्कल दे विच लैके तैनू जी भर के मैं वेखा तैनू, होना मैनू चुप करावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बतावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दिल दा सौदा खेल नहीं है जे कर्मा विच मेल नहीं है, दिल दा सौदा खेल नहीं है जे कर्मा विच मेल नहीं है, सुपने दे विच आवी जावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बतावी, दिल फोलन नू जी करदा है, कि चा इशावा मर ना जावन दोष तेरे सिर धर ना जावन, चा इशावा मर ना जावन दोष तेरे सिर धर ना जावन, वेखी राही देर ना लावी, दिल फोलन नू जी करदा है, वेल मिली ता फेरा पावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दो पल मेरे नाल बतावी, दिल फोलन नू जी करदा है, दिल फोलन नू जी करदा है। तो मेरी आखिरी कविता है, टुटा है कोई तारा, जो मैं तुम्हें पेश करना चाहूंगा।

ਨਾਲ ਸਵੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਛੜੇ।

I'm not afraid of the dark.

0: आलू दी जड़ियां ढेरियां किसे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रूपये और बहराखेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रूपये की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता की महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,144 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well.
1: मॉर्निंग दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:05 और ये समय है कार्यक्रम कृषि जगत का, जिसे लेकर आपके साथ हैं वंदना रानी और शाहिद परवेज।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। शाहिद भाई, देखिए हमारे जो किसान भाई बहन है अपनी खेती को लेके बहुत ही चिंतित रहते हैं,
1: कभी सजग रहते हैं
0: बिल्कुल, चाहे अगर बरसात हो जाती है तो उनको चिंता हो जाती है कि हमारी बेल वाली सब्जियां गल जाएंगी, और सर्दियों में बरसात हो जाती है तो ये रहता है गेहूं की फसल अगर कटी खड़ी है तो वो गिर जाएगी, गर्मियों में हो जाती है तो
1: किसान हो चाहे गोपालक हो वो अपने पशु की, अपनी खेती की, अपनी फसल की ना बच्चे की तरह देखभाल करता है।
0: बिल्कुल, मतलब हर मौसम में उनको चिंता ही लगी रहती है कि बरसात आ गई तो हमारी फसल को क्या नुकसान।
1: ये परंपरा रही है कि खेत के मेड़ पे बैठ के ना फसल को निहारना सुबह शाम,
0: बिल्कुल
1: ना ये परंपरा रही है और इसको किसान की उपासना कहा जाता है। और ये माना जाता है कि एक किसान अपनी फसल से बातचीत कर रहा है,
0: बिल्कुल, और करता भी है क्योंकि वो सुबह शाम अगर जाता है तो अपनी फसल को देखता है, उसको देख के खुश होता है, और जब उसकी फसल बाई चांस किसी वजह से बरसात में या किसी वजह से खराब हो जाती है उससे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हमारे जो भाई हैं अपने जल को संचय कर लें, या तो संचय कर लें अगर वो पानी ज्यादा भर गया।
1: हाँ, आप सिंचाई की बात कर रहे
0: हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसे अगर इकट्ठा कर लेंगे तो बाद में काम आ जाएगा। और सिंचाई योजना के माध्यम से अगर हम उतनी ही सिंचाई करें जितनी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ट्यूबवेल चला के सो जाते हैं और पानी भर जाता है।
1: हाँ,
0: ये बहुत गलत है।
1: नहीं, एक तो पानी जो है ना, जो जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, अति दोहन हुआ। दूसरे बड़ा नुकसान ये होता है कि मिट्टी में जो खाद पानी हमने दिया है वो रिस्क के पताल में चला जाता है।
0: बिल्कुल, और ये जब वो पानी बेकार हो जाता है, खेती की भी फसल में भी पानी भर जाता है और फसल भी बेकार हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है पानी ज्यादा भर जाता है।
1: इसलिए वही करना चाहिए जो कि कहा जाता है, जितनी जरूरत है मिट्टी में जो है कि केमिकल की खाद और इस तरह
0: पानी
1: के तत्वों की,
0: बिल्कुल
1: उतना ही दीजिए और पानी भी उतना ही दीजिए कि वो जड़ों तक जाए।
0: बिल्कुल, और देखिए जो हमारी ये है प्रति बूंद अधिक लाभ या अधिक फसल, तो ये बहुत बढ़िया योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की। इस योजना का हमारे किसान भाई अगर लाभ उठाए तो उतना ही पानी हमारी फसलों को लगेगा जितनी उसको जरूरत है। हाँ। ड्रोन के माध्यम से या टपक सिंचाई के माध्यम
1: विधि है ना, स्प्रिंकल विधि है, तो इस तरह से इसमें जो है कि कम से कम पानी की खपत होती है और अधिक से अधिक सिंचाई होती है। और बड़ी खासियत इसकी यह है वंदना बहन कि इसमें एक तो 40% तक करीब करीब बचत हो जाती है पानी की, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सरकार सहायता देती है,
0: बिल्कुल सब्सिडी देती है। और इस योजना के तहत जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको सूक्ष्म सिंचाई यंत्र लगाने के लिए 55% तक और अन्य किसानों को 45% तक अनुदान राशि दी जाएगी।
1: ये बड़ी बात है, बड़ी मदद।
0: बिल्कुल, तो इसलिए जल की बचत करें और अपने खेतों को हरा भरा बनाएं। और आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छी जानकारी हम अपने भाइयों को दिलवाते हैं, जलवायु स्मार्ट खेती, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा से बातचीत कर रही हैं कमलेश मुदकर, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: हमारे किसान भाई और बहन जब भी कृषि के बारे में बात करते हैं तो सभी आपस में यही बात करते हैं कि इस समय उन्होंने अपने खेतों में क्या लगाया हुआ है। और कुछ भाई जब एक दूसरे को कहते हैं वाह भाई तू तो बड़ा स्मार्ट है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन किसान भाइयों ने जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाया है। ये क्या है इसके बारे में हम इस बातचीत में जानेंगे। आज की जो बातचीत का विषय है वो

0: रखा है जलवायु स्मार्ट कृषि, बदलती जलवायु के अनुरूप कैसे बनाए सक्षम। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रशंसा वर्मा को, जो रिसर्च स्कॉलर हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: जब हम बात करते हैं जलवायु की या जलवायु परिवर्तन की, तो जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं वो कैसे समझे कि जलवायु और जलवायु परिवर्तन में क्या फर्क है?
1: हम सब पिछले कुछ वर्षों से महसूस कर रहे हैं कि मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी समय पे बहुत अधिक गर्मी पड़ जाती है, कभी अचानक तेज वर्षा हो जाती है, कभी लंबे समय तक वर्षा नहीं होती और कभी फसल के पकने के समय बेमौसम वर्षा हो जाती है। यही बदलता हुआ मौसम और लंबे समय में होने वाले परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है, क्योंकि खेती प्राकृतिक परिस्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
0: आपने अभी बात की कि जब हमारा जलवायु परिवर्तन होता है या तापमान बदलता है, तो उसका सीधा प्रभाव हमारी कृषि पर पड़ता है, तो ये प्रभाव हमारी कृषि पर कैसे पड़ता है, ये भी हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे।
1: जी, तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, लंबे समय तक गर्मी होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना और कभी कभी ओलावृष्टि जैसी घटनाएं फसल की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। इसी के साथ ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी बढ़ रही है। कुछ परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा पौधों की वृद्धि को बढ़ा सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर परिस्थिति में उत्पादन बढ़ेगा। जब अधिक तापमान, अनियमित वर्षा और बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो फसल की प्रक्रियाएं अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हम सोयाबीन को ही ले लें। मध्य भारत में, विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल है।
0: जी।
1: यदि फूल आने और फली बनने की अवस्था के आसपास तापमान बढ़ जाता है, तो फसल की वृद्धि और दाना बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी प्रकार बुवाई का समय बदलने से पौधे की ऊंचाई, फैलाव और दाने के वजन पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
0: जो हमारे किसान भाई उत्पादन लेना चाहते हैं, क्या उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है?
1: जी, इसलिए आजकल आवश्यकता केवल अधिक उत्पादन की नहीं है, बल्कि ऐसी कृषि पद्धति की है जो बदलती जलवायु के बीच भी उत्पादन बनाए रख सकते हैं, जोखिम कम कर सके और पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों का भी सही उपयोग कर सके।
0: जी, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें ये तो पता चल गया है कि जलवायु स्मार्ट कृषि किसको कहते हैं, लेकिन जब जलवायु स्मार्ट कृषि की बात आती है और हम ये भी बात करते हैं कि हमें फसलें भी उतनी ही चाहिए, उसी मात्रा में हमें उत्पादन भी चाहिए, तो क्या हमें जो किसमें है वो हमें चेंज करनी होगी डॉक्टर साहब?
1: जलवायु स्मार्ट कृषि के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला है उत्पादन और उत्पादकता को बनाए रखना या बढ़ाना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति खेती को अधिक सक्षम और सहनशील बनाना। और तीसरा है कृषि से होने वाली हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
0: जी,
1: इसके लिए हम कुछ सरल और व्यवहारिक उपाय अपना सकते हैं।
0: जी,
1: जैसे कि पहला उपाय है बुवाई के समय में हम बदलाव कर सकते हैं। बदलती जलवायु में बुवाई का समय सही बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर बुवाई का समय थोड़ा आगे या पीछे किया जा सके, तो फसल को अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक वर्षा जैसी परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि गेहूं में स्थानीय परिस्थितियों और कृषि सलाह के अनुसार समय पर या कुछ परिस्थितियों में अपेक्षित जल्दी बुवाई करने से फसल को पकने के समय आने वाली अधिक गर्मी से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार धान में भी स्थानीय मौसम और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर रोपाई का समय निर्धारित किया जा सकता है।
0: जी, ये तो आपने हमारे जो श्रोता है उनको बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें समय समय पर अलग अलग जलवायु परिवर्तन की स्थितियां देखनी पड़ती हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारे किसान भाई है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: हम उपयुक्त और सहनशील किस्मों का चयन भी कर सकते हैं।
0: जी।
1: जैसे कि किसान ऐसी किस्मों का चयन करे जो स्थानीय जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अच्छा प्रदर्शन कर सके, जैसे सूखा, अधिक तापमान या कम अवधि जैसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों का चयन जलवायु जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसके केवल अधिक उत्पादन देने वाली किस्म ही नहीं, बल्कि बदलते मौसम में स्थिर उत्पादन देने वाली किस्म भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हरियाणा के किसान भाई गेहूं की किस्में जैसे कि HD 3046, WH 1270 का प्रयोग कर सकते हैं, और मध्य भारत के किसान भाई पूसा तेजस या पूसा अनमोल जैसे किस्मों को भी उगा सकते हैं।
0: जब हम बदलती जलवायु की बात करते हैं, तो जब हम किसान भाइयों को सलाह दें कि वो अपना जो खेत है उसकी कैसे पहले तैयारी करें, या उनकी तैयारी करने से पहले उनको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसल का आधार है। मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ बनाए रखना, संतुलित उर्वरक का उपयोग करना,

0: अनावश्यक जुताई को कम करना और फसल अवशेषों को जलाने से बचाना बहुत जरूरी है। फसल अवशेषों को खेत में उचित तरीके से मिलाने या उनका उपयोग करने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने और नमी संरक्षण में सहायता मिलती है। हमें ये समझना होगा कि मिट्टी केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी कृषि व्यवस्था की नींव है।
1: अगर हमने अपनी सहनशील किस्त में लगाई है, लेकिन उसके बाद भी जलवायु परिवर्तन ने उनके अनुरूप अगर उत्पादन नहीं दिया है, तो आगे के लिए हम अपने किसानों को कैसे सचेत कर सकते हैं?
0: जी, इसका भी कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे पानी का हम बेहतर प्रबंधन करें। हमारे लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों में से एक है। जहां संभव हो वहां हम बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, खेत में मेड़बंदी, वर्षा जल का संग्रहण और खेत में नमी बनाए रखने के उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई से लगभग 3 से 70% पानी की बचत होती है और फव्वारा सिंचाई से लगभग 30 से 50% पानी की बचत होती है। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई के लिए खारा पानी उपलब्ध है, तो टपकन या बूंद बूंद सिंचाई सबसे उत्तम और प्रभावी माना जा सकता है। और अगर उनकी भूमि असमतल होती है, तो सबसे उपयुक्त सिंचाई फव्वारा सिंचाई को मानते हैं।
1: जी, हमारे किसान भाई बहुत ही स्मार्ट होते चले जाएंगे यदि वो जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, कि जैसे कि हमने जो किस्में लगाई हैं और हर क्षेत्र की अलग अलग किस्में होती हैं, आज मैंने जो किस्म लगाई है, क्या उसका बीज बनाकर अगले साल मैं उसी किस्म को लूं या दोबारा से मुझे उन किस्मों को बाहर से लेना होगा?
0: हम दोनों ही तरीके से चल सकते हैं। और फसल की विविधीकरण, यदि किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर रहता है, तो किसी एक मौसम की विपरीत परिस्थितियों से पूरा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए फसल विविधीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दलहनी फसल, तिलहनी फसल और अन्य उपयुक्त फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता और कृषि जोखिम दोनों को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। उदाहरण के लिए गेहूं के साथ चना जैसी फसल को फसल चक्र में शामिल करना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है।
1: जब कृषि अनुसंधान होते हैं, तब आप ये लोग सोचकर अनुसंधान करते हैं कि जो खेतों में हमारे किसान हैं, उनको इन चीजों से क्या फायदा होगा। तो कुछ ऐसी और स्मार्ट कृषि के लिए आप लोगों ने कुछ और चयन किया है, तो वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: जैसे कि आजकल मौसम की जानकारी का उपयोग भी किसान कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और कृषि मौसम सलाह के आधार पर किसान बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग तथा कीट और रोग प्रबंधन से जुड़े निर्णय बेहतर तरीके से ले सकता है। मेघदूत, किसान सुविधा और किसान कॉल सेंटर जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-1801551। ये सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जानकारी प्रोवाइड कर सकता है। किसान भाई केवल मौसम देखकर ही निर्णय न लें, बल्कि अपने क्षेत्र के लिए जारी की गई कृषि फसल सलाह को भी ध्यान से देखें।
1: बदलती जलवायु के अनुरूप जब हम सक्षम बनने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे और कौन कौन से उपाय आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: आज वैज्ञानिक यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि भविष्य में तापमान, वर्षा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बदलाव होता है, तो हमारी फसलें किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगी। इसके लिए कुछ मॉडल्स यूज किया जाता है, जैसे कि डीसेट, क्रॉप ग्रो और एक्वाग्राफ जैसे फसल अनुकरण मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। इन मॉडलों में बेसिकली मिट्टी, मौसम, फसल की किस्म और कृषि प्रबंधन से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके बाद मॉडल ये अनुमान लगाने में सहायता करता है कि अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में फसल की वृद्धि, उत्पादन और पानी की उत्पादकता कैसे हो सकती है। इसके सबसे बड़ा लाभ ये है कि वैज्ञानिक अलग अलग जलवायु परिस्थितियों और कृषि प्रबंधन विकल्पों का अध्ययन बिना हर परिस्थिति में नया प्रयोग किए कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और संसाधनों की बचत होती है और भविष्य की कृषि रणनीतियां तैयार करने में सहायता मिलती है।
1: कभी भी मौसम बदलता है और उस मौसम के बदलाव के अनुरूप हमारे किसान भाई कार्य करते हैं, तो हरेक के मन में एक डर भी रहता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आप अनुसंधान करते हैं, तो उन अनुसंधान के बल पर उनका वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मैं यही बोलना चाहूंगी, जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए किसान अकेले जिम्मेदार नहीं है।
1: जी,
0: कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र, मौसम विभाग और कृषि विस्तार संस्था मिलकर किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों के लिए फसल बीमा, सिंचाई सुविधाएं, मिट्टी की जांच और मौसम आधारित कृषि सलाह जैसी व्यवस्थाएं भी जोखिम कम करने में सहायता करती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या किसी भी वजह से फसल खराब होती है तो किसानों को कुछ प्रतिशत प्रीमियम मिलता है। अगर वह फसल खरीफ सीजन की है तो उसके लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% तक की प्रीमियम प्रोवाइड की जाती है किसानों को।
1: जी।

0: लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी खेती को बदलते मौसम के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। सही समय पर बुवाई करें, उपयुक्त किस्मों का चयन करें, पानी का कुशल उपयोग करें, फसल विविधीकरण अपनाएं, मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मौसम की वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कृषि निर्णय लें।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान मित्रों को इतनी सटीक और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप जानकारी सुन रहे थे, जलवायु स्मार्ट खेती, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम। डॉक्टर प्रशंसा वर्मा, जो कि वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली की, और उनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुद्गल।
3: तो ये तो थी जानकारी, और अपने भाइयों का करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं सूबे सिंह कपासिया की आवाज में ये उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपदेश कुसुम गौड़ की आवाज में। और देखिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अपनी चुनिंदा मंडियों के कुछ भाव। बाजरा का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो है 2205 रुपये प्रति कुंटल, और धान का जो रेट चल रहा है वो है 4090 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। ये हरियाणा की मंडियों के कुछ भाव हैं। और गेहूं का इस वक्त जो भाव चल रहा है वो 2425 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और प्याज का भाव है कि 6500 गुड़गांव में, और रेवड़ी में है 5500। सेब का भाव है 15000, और रोहतक में है 8000 रुपये प्रति कुंटल, और अनार का भाव है 12000, और हंसी में और गुड़गांव में है 7500 रुपये प्रति कुंटल। और कुछ और हमारे पास भाव आए हुए हैं, रेट हैं हमारे पास। सरसों का जो भाव है हिसार की मंडी में है 7200 रुपये से 7800 रुपये प्रति कुंटल तक, और कपास का जो भाव है वो है 8931 रुपये से 8975 रुपये प्रति कुंटल तक। तो ये तो थे हरियाणा की मंडियों के कुछ चुनिंदा चीजों के रेट।
1: जी वंदना बहन, और एक बार फिर से अपने हम बहनों भाइयों का मनोरंजन कराते हैं और सुनवाते हैं जगदीश नागर की आवाज में ये
0: उपदेश।
1: उपदेश।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जगदीश नागर की आवाज में ये उपदेश, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया वंदना रानी और शाहिद परवेज ने। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गजल और कवाली का। और इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल से।
1: हुजूर आप कभी एहतराम

और जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद को इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले। और लीजिए, अब सुनते हैं चंदन दास के स्वर में ये गजल।

0: और इन्हीं चंद लाइनों के साथ कार्यक्रम को मैं विराम दूंगी कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दीजिए इजाजत कुसुम को अपने साथ, यहीं तक था आपके आपका और हमारा साथ। तो अब वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:45 लगभग हो ही चुके हैं। लीजिए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
1: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
3: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: अरे भाई, RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: नमस्कार, आकाशवाणी।

0: दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली और दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता, अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को न्यायाधीश तथा संजय शर्मा, भरत पाराशर, आदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अपर न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। ये सभी दिल्ली की जिला न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 19 सितंबर को इन 7 की नियुक्ति की घोषणा की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनोज द्विवेदी ने आज नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के चेयरमैन पद की शपथ ली। परिषद की बैठक के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री और परिषद की बैठक के पीठासीन अधिकारी प्रवेश साहिब सिंह ने शपथ दिलाई। नगरपालिका ने कहा कि ये अवसर NDMC के नेतृत्व में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें कुशल नागरिक सेवाओं, नागरिक केंद्रित प्रशासन और नई दिल्ली के विकास पर निरंतर जोर दिया जाएगा। दिल्ली भाजपा ने आज एक प्रदेश संयोजक और 3 प्रदेश सह संयोजक के नामों की घोषणा की है। पार्टी के अनुसार महेंद्र नागपाल राजधानी में पार्टी के संयोजक होंगे। इसके साथ ही मीरा अग्रवाल, कैलाश सांकला और रोशन कंसल को प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज जनता दर्शन में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि संवाद के दौरान उन्होंने नागरिकों की बात को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं का समाधान ही सरकार का संकल्प है। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस बुधवार राजधानी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन नामक कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं और परिवारों तक सरकार की सेवाएं पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली वासी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण solar.delhi.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: पोर्टल पर सोलर के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उपभोक्ता पोर्टल पर अपना CA नंबर दर्ज कर आवश्यक जानकारी भरेंगे, अपनी सहमति देंगे और इसके बाद संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि उपभोक्ता आसानी से पंजीकरण कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 3 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप सरकार बिना किसी लागत के लगा कर देगी। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट से अधिक के सोलर रूफटॉप पर केंद्र सरकार 78,000 रूपए और दिल्ली सरकार 78,000 रूपए की सहायता देगी।
4: दिल्ली के उपभोक्ता 400 यूनिट के ऊपर की कैटेगरी में आते हैं और 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार पूरी सहायता देगी, जिसमें 78,000 जो रुपीज है वो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और हमने भी केंद्र सरकार जितना पैसा दे रही है उतना दिल्ली राज्य की ओर से भी 78,000 हम देंगे।
3: दिल्ली सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक दिल्ली के 230,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे एक और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर परिवारों को बिजली के खर्च में बचत करने का अवसर मिलेगा। रीशु जायसवाल के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान श्री सिंह ने कहा कि बस डिपो और चार्जिंग ढांचा विकसित किया जा रहा है ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को बिना किसी देरी के सुचारू रूप से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य साफ सुथरी और ग्रीन क्लीन दिल्ली का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजधानी में 40 बस डिपो से लगभग 5,088 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इसके अलावा 3 और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी के दौराला और झुलझुली में भी 2 नए बस डिपो बना रही है, जिनकी क्षमता 250 और 500 बसों की है। इससे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को राहत मिलेगी और वे दिल्ली की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने रेलवे स्टेशनों, कार्यस्थलों और रेलवे आवासीय कॉलोनियों में जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत जल भंडारण और फिल्ट्रेशन टैंकों की व्यापक सफाई तथा अवसंरचना उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA नई दिल्ली में गुरुवार से शनिवार तक नदी उत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगी। इस वर्ष का उत्सव यमुना नदी पर केंद्रित है। इसमें यमुना को न केवल जीवन देने वाली नदी के रूप में बल्कि यादों, संस्कृति, इतिहास और कल्पना की एक जीवंत धारा के रूप में भी देखा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की। भटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
5: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है।

0: हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने आज एक विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सभी 12 जोन में 44 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जिन इलाकों में आज इस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई उसमें गांधीनगर, मंडावली, फजलपुर, न्यू अशोकनगर, ईस्ट विनोद नगर, नारायणा, न्यू मोतीनगर, इंद्रपुरी और शालीमार बाग जैसे इलाके शामिल हैं। निगम ने कहा कि अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई EPFO वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर 9289094044 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को भी बधाई दी है। श्री मोदी ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान उनके फोकस और अनुशासन की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियन गेम्स 2026 में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश बालासाहेब पाटिल को और पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लो को बधाई दी है। उन्होंने भविष्य में इन खिलाड़ियों के लिए और भी जीत की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुचिका तारियाल को महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर भी बधाई दी है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि MMA में ये भारत के लिए पहला एशियन गेम्स पदक है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगन का मिलन कार्यक्रम में सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीष द्विवेदी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद की शपथ ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार।
3: अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
4: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
4: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
4: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
6: हर लेन देन अब
7: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर।
8: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
9: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
8: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
9: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
8: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
9: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये समय रहता है कार्यक्रम गीत मालिका का।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हूँ मैं आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

ये है बेहद खूबसूरत गीत की सनात अलका याग्निक की आवाज़। और इस गीत को लिखा नुसरत पत्र ने और आदेश श्रीवास्तव ने इस गीत को संगीत दिया। आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर आपको बता दें कि मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना, और रहेंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ कुछ मिनटों तक, ढेर सारी खूबसूरत नगमों का आनंद लेंगे। इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है ना। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम इंतजार की बातें कुछ करेंगे। हालांकि इंतजार का नाम सुनते ही ना हमारे दिल में कुछ धुक-धुक सी होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है कि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता। चाहे वो किसी का इंतजार, किसी व्यक्ति का इंतजार हो या फिर आपकी फेवरेट डिश का, किसी भी चीज का इंतजार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की खूबसूरत आवाज के साथ। फिल्म रही आदमी खिलौना है, नदीम श्रवण ने इस गीत को संगीत दिया। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे होंगे। गीत मालिका से आप जुड़े हुए हैं, मैं हूँ आपके साथ चेतना।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि इंतजार, वाकई में इंतजार शब्द जो है ना कहीं तकलीफ देता है सुनने में भी, लेकिन मैं किसी चीज का, किसी इंसान का हम इंतजार करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि शायद वो आज मिल जाएगा। इंतजार भी खूबसूरत लगने लगता है जब उम्मीद ये रहती है कि हाँ ये उम्मीद पूरी होगी। और किसी ने खूब ही तो लिखा है, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। और इंतजार सिर्फ किसी इंसान का नहीं होता है जनाब, कभी कभी इंतजार होता है एक अच्छी खबर का, एक नई शुरुआत का, या फिर खुद से मिलने का।

जी हाँ, श्रोताओं, अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज के साथ ये जख्म फिल्म से गीत रहा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल से और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका हम सभी सुन रहे हैं और समय रात्रि के 8:19 हो चुके हैं। इंतजार की घड़ियां भले ही लंबी हो पर दीदार का मजा तो कुछ और ही होता है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां भले ही बहुत लंबी हो लेकिन इंतजार तब मुकम्मल हो जाता है जब हम अपने पसंदीदा शख्स के सामने होते हैं या फिर किसी भी वस्तु चीज के, जो तड़प कर मिले इस दिल को तो उस प्यार का मजा ना कुछ और ही होता है। इंतजार भी खूबसूरत होता है, कभी कभी बहुत खराब लगता है लेकिन इंतजार खूबसूरत होता है।

जी हाँ श्रोताओ, अभी आपने गीत सुना और फिल्म थी ये जुबेदा। अब जुबेदा फिल्म से गीत को सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में, और इस खूबसूरत गीत को संगीत दिया था A.R. रहमान ने। ढलती शाम का मंजर भी कितना सुहाना होता है ना, जब इंतजार में किसी की यादों का कोई ठिकाना सा होता है। वक्त ठहर जाता है उस लम्हे में आकर जहां दिल को किसी के लौट के आने का गुमा होता है। हम उसकी यादों में इतना खो जाते हैं कि बस लगता है ये सफर कभी खत्म ना हो इंतजार का।

कुमार सानू की आवाज और साथ में अलका याग्निक, फिल्म रंग से अभी आपने गीत को सुना। श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर है। जी हाँ, इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप हमसे जुड़ते हैं और सुनते हैं मनोरंजक कार्यक्रम। समय आपको बता दें कि स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतना। श्रोताओ, इंतजार की हम बात कर रहे थे तो इंतजार तो भाई तब हुआ करता था जब हम गर्मी के मौसम में छुट्टियों का इंतजार करते थे। इंतजार उसे कहते हैं जब कागज की नाव बनाकर हम बारिश के आने का इंतजार करते थे। और इंतजार तो वो होता है जब हम घंटों खड़े होकर अपने पसंदीदा शख्स की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे। इंतजार हमें सब्र सिखाता है। ये बताता है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। इंतजार हमें बताता है कि इतनी देर बाद अगर कोई चीज मिली है तो भाई वो बहुत अनमोल है, उसे संभाल कर रखना चाहिए।

जी हाँ, दिल का रिश्ता अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिल का रिश्ता से ही अभी आपने गीत सुना। बेहद खूबसूरत और वाकई में दिल के रिश्ते कुछ अलग ही होते हैं। लेकिन समय जो है ना, जो घड़ी की सुइयां हैं वो तेजी से भाग रही हैं मेरे सामने और कह रही हैं कि भाई अब इस कार्यक्रम से मुझे जाना होगा। लेकिन इंतजार आपका थोड़ा सा और रहेगा क्योंकि 11:10 पर मिलूंगी आपसे लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत। और आप ही अगर किसी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे कोई इंसान है या फिर खुशी या फिर कोई एक नया मौका, तो याद रखिए हर इंतजार का एक अंत जरूर होता है। फिलहाल आपको इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, कुमार सानू की आवाज और अलका याग्निक के साथ। अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे आपसे 11:10 पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीएनएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:44 और पूरे 50 सेकंड हुए हैं। ठीक है, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रूपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर

0: क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इनटू कंक्रीट इकोनॉमिक आउटकम।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारी व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उप प्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय

0: अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है जो सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापानी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मेरे मेरे 1071 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और DD फ्री डिश पर आप समाप्त कर सकते हैं। अब हमारी आज की तीसरी मजलिस की नशियात का आगाज होता है। पेश है इस मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। नशियात का आगाज होगा एक फनकार प्रोग्राम से, जिसमें मशहूर गजल फनकार पंकज उदास की गैर फिल्मी गजलें पेश की जाएंगी। इसके बाद समाप्त फरमाइएगा खबरें और कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से 9:55 मिनट पे, जिसमें सेहत से मुतालिक चंद जरूरी बातें पेश की जाएंगी। रात 10 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा मार्केट मंत्र। 10:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा तामिर इरशाद, जिसमें सामाइन की ईमेल्स पर उनकी फरमाइशी के मुताबिक फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे। ग्यारह बजे खबर निश होंगी बड़े सगीर से, उसके बाद तामिर इरशाद का सिलसिला दोबारा जारी रहेगा। रात 12:15 बजे कवाली में हाजी इदरीस इलियास कुदबी कव्वाल और पार्टी की कवालियां पेश की जाएंगी। रात 12:00 बजे आलमी खबरें और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में पंडित रविशंकर उस्ताद और अली अकबर सरोद पर सितार पर राग मंज खमाज पेश करेंगे। साढ़े 12:00 बजे आखिरी शब प्रोग्राम में आप पुरानी फिल्मी गीतों का सिलसिला पेश किया जाएगा और आखिर में खबरों के बाद रात 1:00 बजे हमारी आज की तीसरी मजलिस की नशरियात अपने अख्ताम को पहुंचेगी। ये था आज की तीसरी मजलिस की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

एहसास अली का कलाम अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास के पास में। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, प्रोग्राम चल रहा है एक फनकार। अगली गजल पेश है जमीर काजमी की लिखी हुई और गाई हुई तो पंकज दास की ही है।

मुमताज राशिद की आवाज में आपने सुना, माफ कीजिएगा, मुमताज राशिद का कलाम अभी आपने सुना, पंकज उदास की आवाज में प्रोग्राम चल रहा है एक फनकार। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आखिर में सुनिए फैसल उल जाफरी का कलाम पंकज उदास की आवाज में ही।

0: इसके साथ ही प्रोग्राम एक फनकार अब खत्म होता है। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। अब खबर नशर की जाएंगी।
1: रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड आजादाना तिजारती माहिदा अगले महीने की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे एमएसएमईज में रोजगार के नए मौके खुलेंगे और किसानों को फायदा पहुंचेगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी माहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक माहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलियरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराओं के लिए सड़क तहफ़ और सलाहियत को फरोग देने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 तमगे जीते हैं। बैडमिंटन में मर्दों की टीम बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड आजादाना तिजारती माहिदे FTA विजयदशमी के मौके पर इस साल 20 अक्टूबर से नाफिज़ुल-अमल होगा। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इस माहिदे से 100% भारतीय बरामदकारों को न्यूजीलैंड तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी। उन्होंने बताया कि करीबी शराकतदारी इस तावन को मजीद मजबूत करने और सामान और खिदमात के शोबे में बाहमी तिजारत को दोगुना करके अगले 4 से 5 बरस के दौरान तकरीबन 35,000 करोड़ रूपये तक पहुंचा

0: बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी आपकी, बहुत सारे व्यायाम आप नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे दूसरे जोड़ भी उसकी वजह से जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं अगर इससे इसका उपचार ना किया जाए तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, अगर वो चलेगा नहीं तो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से दूसरे भी रोग बढ़ जाते हैं, तो चलना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, मौजूदा दौर में चूंकि कंप्यूटर का दौर है, ये सेटिंग जो है कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा हो गई है, क्या बैठने लंबी सेटिंग से भी कमर में दर्द हो जाता है? अगर होता है तो क्या क्या करें वक्तन वक्तन की कमर दर्द से ना हमें दो चार होना पड़े?
0: जी हाँ समीम जी, अगर हम लंबे टाइम बैठ रहे हैं तो बैठने की वजह से जो हमारी मांसपेशियां हैं, जैसे इसमें जकड़न बढ़ती है, स्टिफनेस बढ़ती है, वो बैठने से ही बढ़ती है क्योंकि वो मसल स्ट्रेस नहीं हो रही है। अगर हम चल रहे हैं तो एक सेल्फ स्ट्रेसिंग हो रही है दिन भर की, उसमें कोई व्यायाम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम बैठे हैं तो उस केस में जो है वो जकड़न शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए अगर हम सुबह के टाइम में या किसी भी टाइम में, जरूरी नहीं है कि आप सुबह में ही करें, किसी भी समय में समय निकाल करके अगर शरीर की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली जाए डिफरेंट मसल्स की, बैक थाई मसल्स की और अपना बैक मसल्स की, तो इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। एक से दो घंटे बैठने के बाद तो थोड़ा बहुत चलना जरूरी है। कंप्यूटर पे बैठे भी हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो अब जनरली हम क्या करते हैं कि बैठे बैठे अगर हम कुछ काम भी है तो हम ईमेल कर देते हैं। बेहतर है कि आप अपने सहकर्मी के पास जाइए और जाकर के उसे बता दीजिए, तो उससे आपकी एक वॉकिंग भी हो जाएगी और जो स्टिफनेस है वो उतनी नहीं रहेगी।
1: इलाज क्या है इसका?
0: जो कमर का दर्द है इसको आप दो तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो 50% पॉपुलेशन है उसको दर्द होगा सिर्फ बैठने में और आगे झुकने में। कुछ लोगों में जो दर्द होता है, ये दर्द होता है सिर्फ चलने में और खड़े होने में।
1: अच्छा,
0: दोनों के लिए जो पोस्चर होगा, पोस्चर मतलब खड़े होने और बैठने का ढंग, ये बिल्कुल अलग अलग होगा। जिसको दर्द हो रहा है झुकने में और बैठने में, इस तरह के लोगों के लिए सीधा बैठना ज्यादा जरूरी है, चलने में भी कमर को सीधा रखना ज्यादा जरूरी है।
1: जब बैठे हो कमर सीधी करके
0: बैठे, पीछे टेक लगा के बैठे, जैसे आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो फिर टेक लगा के बैठे हैं। अब दूसरे हम केस ले रहे हैं कि जिन लोगों को दर्द हो रहा है चलने में और खड़े होने में, इस तरह के लोगों को जब आप बैठते हैं कुर्सी पे तो हाथ आपका टेबल पे रेस्ट करना चाहिए। लेटने के लिए भी इनके लिए पोजीशन है, सीधा ना लेटें, करवट से ही लेटें घुटना मोड़ करके, क्योंकि जिसको पैर में दर्द जा रहा है सीधा खड़े होने पे और चलने पे, जैसे वो करवट से लेटेगा उसको पेन नहीं रहेगा। जब भी कोई दर्द या स्टिफनेस अचानक से शुरू होती है तो शुरू के दो दिन मतलब 48 घंटे तक उसमें आइस पैक लगाया जाए, 10 मिनट से कम समय के लिए, दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। इन दो दिनों के लिए, जो शुरुआत के दो दिन है, इनमें आप कोई भी रूबी फिशियन जैसे कि वोलनी आयोडेक्स वगैरह ना लगाएं और हीट से ट्रीटमेंट ना करें शुरू के दो दिन तक, टिल 48 आवर। आफ्टर 48 आवर आप हीट और रूबी फिशियन जैसे वोलनी वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर फील होगा और आप तेजी से ठीक हो जाएंगे। एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कभी कभी हम काफी टाइम से खाली होते हैं और हम कोई व्यायाम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज, जो हार्ड एक्सरसाइज होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। रनिंग शुरू कर दी तो वो एकदम शुरू नहीं करना है, पहले स्ट्रेचिंग करनी है, फिर वॉकिंग करनी है, उसके बाद हम धीरे धीरे जॉगिंग पे आएंगे, तब हम रनिंग कर सकते हैं।
1: उम्मीद है हमारे सामीन के लिए यकीनन ये मुफीद और कारामद साबित होगी। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए डॉक्टर रविन्द्र कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर।
2: प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के लिए अभी आपने सुनी कई बातें आपकी सेहत के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मार्केट मंत्रा। अब पेश खिदमत है मार्केट मंत्रा। इस प्रोग्राम में बाजार और मैशी सूरत हाल से मुतालिक अहम मालूमात आप तक पहुंचाई जाएगी। सबूत फरमाइए मार्केट मंत्रा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्रा कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: and call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mutu ki present mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे आज भी आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444-2331-0481 या फिर 2371-7106। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित।
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार।
0: The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles about 23,400. The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला, निफ्टी 30,400 के ऊपर बंद हुआ। देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क हो सकेगा।
0: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
0: So benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex surged 564 points or 0.8% to close at 74,859. The Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ, जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई। एचसीएल टेक को 3.4% का और इंटरनल को 2.6% का लाभ हुआ। इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल के शेयर रहे, जिसमें 1.9% की गिरावट हुई। पावर ग्रिड को 1.2% का और इन्फोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
1: अगर डाल लें यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ.
0: एंड वी आर जॉइंड इन बाय अवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम मुंबई, मुकुंद.
3: नमस्कार. नमस्कार. मुझे ये पूछना है सर जी, एचडीएफसी सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने की बात कर सकता हूँ, उसको रिन्यूवल रह सकता है, 6 महीना, 10 महीना या 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे.
2: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
0: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय तक, कितने टर्नर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका.
2: तो मुकुंद जी देखिए, जहां तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है, उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जरूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो. तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं. और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जरूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें.
1: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी. तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को, लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही है और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है, लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है. बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
2: देखिए मनोज जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं. जो भी डेटा हो, चाहे वो आपका जीडीपी का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है, खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज्यादा है, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है, खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेजी है, और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल, रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है. साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है. लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास, आत्मविश्वास थोड़ा लौटा हुआ क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं. अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाजार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद एफआईआईज का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में एफआईआईज ने भी खरीदारी की है. तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास, और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाजारों में है. तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है, और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है
1: जी. और ये चले मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को. रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
4: हेलो, गुड इवनिंग सर. मेरा यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 6 अंश बढ़ गया, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है, और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? और दूसरा सवाल है कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू.
2: देखिए रत्नाकर जी, जहां तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो अभी ट्रंप साहब ने उस पे रजामंदी जरूर दे दी है, लेकिन अभी उस पे आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पे लगेगा, कितना लगेगा, तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाजार ने आज

0: रिएक्शन था उसका कोई उसकी किसी वजह से था। हाँ ये जरूर है कि अमेरिकन बाजारों में जो वहां पे बॉन्ड डील्स हाई थी वहां की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई, तो कहीं ना कहीं बाजार में उसकी वजह से आज तेजी हमने देखी। और आपका एक और सवाल था
1: आईटी सेक्टर,
0: तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूं इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफी पिटाई हो चुकी है। और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है। और दुनिया में जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है उसमें एक विषय यही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं। तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
1: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष
2: नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहता था कि आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है, और दूसरा सर मैंने आईपीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो उसका मैं मान लू क्या कि मेरा आईपीआर प्रोसेस हो गया कि
0: नहीं? आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला? आपने
2: रिफंड मिल गया है सर, मुझे सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
0: देखिए तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है, और साथ साथ वो एक जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें अब कोई मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाजारों में और जो बॉन्ड डील्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड डील्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेजी थी जो $100 तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहां भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीजन वो यही दो कारण जो लगते हैं, और तीसरा मुझे लगता है चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफी सुदृढ़ है, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाजार में हमने तेजी देखी।
1: तो आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय ऑनलाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज हम तक इको के रूप में पहुंचते रहती है, जो आपकी आवाज सुनने में सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है। कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today. I'm talking of Fed, of course. We saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one. And of course, we discussed, you know, in the opening section that U.S. is kind of, we see that it's closing up to China. It has let out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the U.S.-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality affecting the market in the coming days?
0: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points.
1: Yeah,
0: by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices.
1: Right.
0: We might have a rate hike in India also, and the fact that the US and China are trying to work together? I think yes, because US has its own interest of trade, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China, plus they're also expecting huge investments. So

0: वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहां निवेश करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई खराब उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है।
1: Some other stories: the combined index of core industries (ICI) recorded cumulative growth of 4.8% year on year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July, according to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry today. 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refinery products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August, year on year basis.
2: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है केशव। केशव जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते।
3: एक्सपर्ट से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मार्केट में गोल्ड मिलता है वो होता है पीले रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसके एक गोल्ड और उसका कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं? व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है?
0: केशव जी देखिए, जो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाजार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और खासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें।
1: The India and New Zealand Free Trade Agreement (FTA) will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
4: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
1: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement (CEPA), with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
2: इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। रंजन, सवाल पूछिए।
5: नमस्ते। नमस्ते सर। सर, ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा जरूर, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पर बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
0: जी देखिए रंजन जी, जैसा कि आपको पता ही है, फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं, और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहां भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है। और जहां तक उसके नेगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 बेसिस पॉइंट्स का कोई बहुत ज्यादा

0: बाजार पे कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो। हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं।
1: खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन पर 2000 रुपए तक का लेनदेन मुफ्त रहेगा। इस पर कोई एमडीआर चार्ज लागू नहीं होगा। श्रोताओं, आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि एमडीआर को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है। दरअसल यूपीआई के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेनदेन हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले महीने यूपीआई के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ से अधिक बार यूपीआई का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने कहा है कि एमडीआर से प्राप्त राजस्व का उपयोग यूपीआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके। सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए एनपीसीआई ने कहा कि यह व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं। रजत जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
2: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या आप गुल्लक करके एक ऐप है जो वेकली टेक्स दिट फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट इन पर्चेस?
0: देखिए रजत जी, जहां तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें।
3: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
1: भारतीय सर्राफा आभूषण निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.2% घटकर 1,53,337 रूपये प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,34,992 रूपये प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप दोनों को भी धन्यवाद।
3: Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
6: अभी आप सुनना फरमा रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्र, और ये पेश है फरमाइशी फिल्मी नामों पर प्रोग्राम तामिल इरशाद। आप सबकी खिदमत में ताहिर हसन का प्यार भरा आदाब।
7: अब सुनिए

शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का मौसीकी तैयार किया हुआ फिल्म चोरी चोरी का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। और ये अब है अनुराधा फिल्म से अनुराधा गीत, जिसे गाया है एस जी वर्मन ने, और एस जी वर्मन ने ही ये मौसीकी से तैयार किया है और आनंद बख्शी ने लिखा है। फरमाइश आप सबकी है, कामरम चेन्नई से शाहिद अली इफ़त फारूकी हिफ़्ज़ा अली, टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, अभिजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, खादरगंज रोड गंजडारा से है शादाब अंदलीप फातिमा शेख, और ईमेल मेरे पास आया है बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे का। शेरवानी स्कूल गंजडवारा से आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर, नेहरू चौक पर्यटन से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद, दुर्गाई सेलू से चंद्र कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, मधु कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, बजरूक महाराष्ट्र से हैं किशोर वड़त, शुभम वड़त और पुनो वड़त, मोहम्मद मुजीब शेख, जायदा अनिबिया, अमीर शेख आप लिखते हैं बांद्रा मुंबई से, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमेशकर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजफ्फर साबरी, जरीफ साबरी, ये आप हैं सहारनपुर से। मटकरी जिला बरेली से शाहनूर अंसारी, फरीदा हुसैन अंसारी, शकील अंसारी, मोहिंद अंसारी, पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन।

कॉलम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रितेश संधु, पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, करण भट्टा, और ये मेरे पास मेल आया है बागवान मंजिल छोटे बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, शाहू नगर यावतमाल से राहुल मुनव्वर, सरला बेबी प्रियांशी, ग्राम ग्राम से अजीत, प्रेमलता भावेश, दादाजी रोड खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद हसनैन, हसु बाबा, सफिया अरहान, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, भानुप्रिया, नयन देव घुगे से, माफ कीजिएगा, गुजाला बीट महा से नारायण देव घुगे, अनंदा घुगे, महेश घुगे, उदयपुर से शांतनु भारद्वाज, कोमल भारद्वाज, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये प्रेम साय राजवाड़े, सोमवार साय और हेमंत कुमार, आप सबने पसंद किया है लता मंगेशकर का गाया फिल्म दिल अपना प्रीत प्राय का ये गीत।

अमन निषाद प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म मेरे सनम का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, तैयार किया है ओपी नैयर ने और लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। पसंद आप सबकी है आदर्श नगर मालौट से पंजाब, आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और मेरे पास ये मेल आया है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी से शाजापुर मनमोहन राजावत, राजावत राज, मधु राजावत और ऋषि क्षित। मैं माफी चाहूंगा किसी के नाम अगर मैं ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। और उसके बाद मेरे पास मैसेज आया हुआ है, एक मेल आया हुआ है, ये है बिमला अनेजा, सतीश अनेजा, ये चंडीगढ़ से दिखते हैं, गजगुरुद्वारा रेल रोड से, ये है मोहम्मद कलीम, नजमा बेगम, बेबी फातिमा, रामरतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से, गंगाधर विजयलक्ष्मी और ये है पंजाब से हरचंद्र सिंह छिंदा, जसवीर जसवीर जसी और सीता गीता, घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया।

दूसरा नंबर है फिल्म पास्ता से, जिसे गाया है मुकेश ने। और पसंद आप सबकी है शेगांव महाराज से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रिजवान। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा शुभ चंद्र बजाज कालका। और ई मेल मेरे पास आया है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश। छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास मोहित कुमारी युवती। कवाई बारा राज सतीश श्रीवास्तव पिंगता श्रीवास्तव। साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता। मंगलगीर मलकापुर से रमेश्वर वंदना दिव्या। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरकर रतनमाला आरती कुमारी। रामगढ़ कैंट से महेंद्र कुलदीप भारत भूषण

वैसे हरवंश सिंह राठौर, कुलदीप सिंह राठौर, ठकुरा वाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज।

0: आप समाज फरमा रहे हैं प्रोग्राम तामरेशात जो आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जारी रहेगा। अब समाज फरमाइए खबरें बड़े सगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, खबरें बड़े सगीर से के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और न्यूजीलैंड आजाद तिजारती मुआहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे एमएसएमईज में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और किसानों को फायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराहों के लिए सड़क तहफ़ और सलाहियत को फरोग देने की गरज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। व्लादिमिर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने शूटिंग में 3 तमगे जीते हैं। बैडमिंटन में मर्दों की टीम बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड आजाद तिजारती मुआहिदा FTA विजयदशमी के मौके पर इस बरस 20 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इस मुआहिदे से 100% भारतीय बरामदकारों को न्यूजीलैंड तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी। उन्होंने बताया कि कलीदी शराकतदारी इस तआवुन को मजीद मजबूत करने और सामान और खिदमात के शोबे में बाहमी तिजारत को 2 गुना करके अगले 4 से 5 बरस के दौरान तकरीबन 35,000 करोड़ रूपये तक पहुंचाने के उमंगों से भरे हदफ की मुश्तरका ख्वाहिश को जाहिर करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती मुआहिदे का नाफिजुल अमल होना इस हदफ को एक ठोस इक्तिसादी महसिल के तौर पर जाहिर करता है। जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहिदे से भारत के MSMEs किसानों दस्तकारों और हैंडलूम के कारीगरों को बहुत फायदा मिलेगा और इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने FTA के तहत गैर मुल्की बराहराज सरमायाकारी के तौर पर भारत में 2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया है। इस मुआहिदे से भारतीय बरामदकारों के लिए नए मौके पैदा होंगे जिसमें टेक्सटाइल और मलबूसात, लेदर और फुटवेयर, इंजीनियरिंग का साजो सामान, अद्वियात, ज़राती साजो सामान और डिब्बा बंद गजाई मसनूआत शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड को लकड़ी, ऊन, भेड़ की गोश्त और खाम चमड़े के लिए भारतीय मार्केट तक बहुत ज्यादा रसाई हासिल होगी। इस मुआहिदे से खिदमात, सरमायाकारी और पेशे तलबा और नौजवानों की आमदोरफ्त के नए मौके पैदा होंगे जिसमें भारतीय पेशेवर अफराद और तलबा के लिए आमदोरफ्त के ज्यादा मौके शामिल हैं। भारत और कनाडा ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि बाहमी ताल्लुकात में अगले 90 दिन एक अहम दौरानिया साबित होंगे। जनाब गोयल ने बताया कि मुजवजा तिजारती मुआहिदे के सिलसिले में कनाडा के उनके हम मनसब के साथ चौथे दौर के मुजाकरात पिछले हफ्ते मुंबई में हुए थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने मुजाकरात की रफ्तार को तेज करने से इत्तफाक किया था। लिंडसे ग्राहम रूस और ईरान पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक एक्ट 2026 के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि इस एक्ट की मजीद तफसीलात अब सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत इनका मुतालिया करेगा और मुनासिब वक्त पर इस मामले पर तबादले ख्याल करेगा। वजारत दिफा ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। इस मुआहिदे पर महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के शहर पुणे में कायम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक भारतीय फर्म है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट एपीयूज, आग को कंट्रोल करने के निजाम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और टैंक के दीगर आलात के लिए बिजली पैदा करने का एक मुतबादल वसीला है। हसूलियाबी के सिलसिले में यह मुआहदा मुसल्ला प्लेटफॉर्म्स के लिए कलीदी नौइयत के ज़ैली निज़ामों की मुल्क में ही तैयारी की जानिब एक अहम कदम है और यह सनत की क़यादत वाली तहसीक व तरक्की को जाहिर करता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत की कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI ने इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराहों की मंसूबाबंदी और डिजाइनिंग के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने बताया कि इन रहनुमा खतूत का इतलाक आने वाली तमाम चार और छह लेन वाली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराहों पर होगा। इन रहनुमा खतूत के तहत इंतहाई तेज रफ्तार कौमी शाहराहों की राहदारी की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए मयार में यकसानियत लाने की बात कही गई है। इनसे कौमी शाहराह के पूरे नेटवर्क में तकनीकी मयार के एतबार से ज्यादा इस्तकलाल, सड़क तहफ्फुज़ में मजबूती और ऑपरेशनल सलाहियत में बेहतरी भी आएगी। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी नवे स्टेट डोमा के लिए हुए इंतखाबात में बरसर इक्तदार यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.83% वोटों के साथ कामयाबी हासिल की है। ये इंतखाबी नतीजे सदर व्लादिमीर पुतिन को इक्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। मॉस्को में आज अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन की चेयरपर्सन एला पामफिलोवा ने कहा कि 95% वोटों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों से आगे है। दूसरे मकाम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन है जिसने तकरीबन 14% वोट हासिल किए हैं। तीसरे मकाम पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया है जो तकरीबन 9% वोट ही हासिल कर सकी। न्यू पीपल पार्टी ने तकरीबन 8% और एडजस्ट रशिया ने तकरीबन 5% वोट हासिल किए। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जुमे से इतवार के रोज तक हुए इन इंतखाबात में 59% राय दही हुई जो कि साल 2021 के तकरीबन 52% से ज्यादा है। स्टेट डूमा रूस का कानून साजी का मुस्तकिल इदारा है जो 450 डिप्यूटीज पर

मुकेश और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना फिल्म साथी थी, और हेमंत कुमार को आप सुनिए फिल्म जाल का ये नगमा। फरमाइश आप सबकी है खेगांव खंडवा से कैलाश दीपक समर, और मेरे पास ये मेल आया हुआ है ओमाली महाराज से अनूप कुमार उद्धव पाटिल, अलंकार डवाली से बसंत सिंह, राजेश जैन, ढाका जैन, और जब उनका से महेंद्र विजय महेंद्र, नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावर निर्मला विशाल, बुड़बुड़वा पथरिया से नयन नेताम कुसुम नेताम, स्वराज राजकोट से जगदीश जूली लड्डू कुमारी, सिद्धेश्वर नगर यावतमान से पंजाब यशोधरा ईश्वर कॉलोनी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, शास्त्री नगर बीच शहर से किशन पाल, मधुबनी से एके झा लक्ष्मण जगदीप अल्लाह बख्शी, राशिद हुसैन अंसारी आसमान अंसारी, इन्होंने जगह नहीं लिखी हुई है। बागपत से इलियास कुरैशी, रानी कुरैशी, बाबा जैद कुरैशी।

हाँ जी, पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद नजीब खान, मंजू अशरफ, रुचि से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशात वर्मा, बोबुड़ा पथरिया से कुसुम नरेन, अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद फातिमा कॉलोनी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से बनबगेरा जिला राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ योगेश से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज निषेध, नीलेश गांव लोहरगढ़ ढांकरा जिला फिरोजपुर से सोन सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, अनंतपुर खंडवा से कैलाश, दीप, दीपक, वैद्यनाथ, उत्तम नगर दिल्ली से कमला, बोधराज, भानु प्रकाश। आप लोग जो है ना बार बार मेल अलग अलग कर देते हैं, उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है, तो उसमें अगर एक बार मेल अगर आप लोग कर देंगे तो आपके पास आपके नाम जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर एक ही मेल आप दस दस जगह बार बार कर देंगे तो फिर आपको भी परेशानी होगी और किसी और को भी परेशानी होगी। ये मेरी आपसे इल्तजा है। कर्नाटका गुलबर्गा से रुखुद्दीन, शब्बीर, आसिफ, छत्तीसगढ़ से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीन दुन्नी सिद्द सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन नवाज़।

बहादुर सिंह गया फिल्म रात से ये नगमा सुनिए। पसंद आ सबकी है जयपुर पुलिस सहारनपुर से जॉनी डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, विलियम डिकैस्ट्रो। भगवता पार्क बांगला देवा विधा से अवीन पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। रघुवीर नगर दिलावर खां, रघुवीर नगर से दिलावर खां, हसीना बानो, रीजा नैब और लड्डू। ये आपका नाम दोबारा से आ गया है, इस चीज को थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, भाटिया रजत भाटिया, मयंक भाटिया। बेंगलोर से वसंत कुमार सिन्हा, रेखी देवी, रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, तमश्री। नादेर मुलाश से नारायण दयानंद ओमकार। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर अनिल। जमशेदपुर से अनुपम कुमारी, अपूर्व सिंह, राकेश कुमार। फ्रांसी जिला हिसार से राजेश कुमार, प्रमोद कुमार। उदयपुर से जब्बार मोहम्मद।

चमा नहीं तलत बिना से लिखते हैं। अंबाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर और आरती रानी।

और उसके साथ ही कांग्रेस याद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। और वक्त है कव्वालियों का। आज की पेशकश में हाजी इदरीस इलियासी कुतुबी कव्वाल और हमनवा की गाई कव्वालियां पेश की जाएंगी। समाप्त फरमाइए।

0: आप समाप्त फरमा रहे थे कवालियां, जिसमें हाजी इदरीस इलियास कवाल और हमनवा कवालियां पेश कर रहे की गई। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आने खबरें पेश की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए। भारत और न्यूजीलैंड आजाद तजारती मुआहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे एमएसएमईज में रोजगार के नए मौके खुलेंगे और किसानों को फायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वज़ारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलरी पावर यूनिट APUS हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराहों के लिए सड़क तहफ़ और सलाहियत को फरोग देने की गर्ज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने शूटिंग में 3 तमगे जीते हैं। बैडमिंटन में मर्दों की टीम बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड आजाद तजारती मुआहिदा FTA विजयदशमी के मौके पर इस बरस 20 अक्टूबर से नाफिजुलअमल होगा। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इस मुआहिदे से 100% भारतीय बरामदकारों को न्यूजीलैंड तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी। उन्होंने बताया कि कलीदी शराकतदारी इस ताउन को मजीद मजबूत करने और सामान और खिदमात के शोबे में माहमी तजारत को दोगुना करके अगले 4 से 5 वर्ष के दौरान तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के उमंगों से भरे हदफ की मुश्तरका ख्वाहिश को जाहिर करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड आजाद तजारती मुआहिदे का नाफिजुलअमल होना इस हदफ को एक ठोस इकतसादी महासल के तौर पर जाहिर करता है। जनाब गोयल ने कहा कि इस मुआहिदे से भारत के MSMEs किसानों दस्तकारों और हैंडलूम के कारीगरों को बहुत फायदा मिलेगा और इससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने FTA के तहत गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी के तौर पर भारत में 2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया है। इस मुआहिदे से भारतीय बरामदकारों के लिए नए मौके खुलेंगे, जिसमें टेक्सटाइल और मलबूसात, लेदर और फुटवेयर, इंजीनियरिंग का साजो सामान, अद्वियात, ज़राती साजो सामान और डब्बा बंद गजाई मसनूआत शामिल हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड को लकड़ी, ऊन, भेड़ के गोश्त और खाम चमड़े के लिए भारतीय मार्केट तक बहुत ज्यादा रसाई हासिल होगी। भारत और कनाडा ने जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि बाहमी ताल्लुकात में

अगले 90 दिन एक अहम दौरानिया साबित होंगे। जनाब गोयल ने बताया कि मुजवजा तजारती मुआहदे के सिलसिले में कनाडा के उनके हम मनसब के साथ चौथे दौर के मुजाकरात पिछले हफ्ते मुंबई में हुए थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों ने मुजाकरात की रफ्तार को तेज करने से इत्तेफाक किया था। लैंडसी ओ ग्राम रूस और ईरान पर पाबंदी आयद करने से मुतालिक एक्ट 2026 के बारे में पीयूष गोयल ने कहा कि इस एक्ट की मजीद तफसीलात अब सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत इनका मुताला करेगा और मुनासिब वक्त पर इस मामले पर तबादले ख्याल करेगा। वजारत दिफा ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलरी पावर यूनिट APUS हासिल करेगा। इस मुआहदे पर महकमा दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के शहर पुणे में कायम इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक भारतीय फर्म है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट APUS आग को कंट्रोल करने के निजाम, फायरिंग सर्किट, गन स्टैब्लिशन सिस्टम और टैंक के दीगर आलात के लिए बिजली पैदा करने का एक मुतबादिल वसीला है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत की कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI ने इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराहों की मनसूबाबंदी और डिजाइनिंग के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने बताया कि इन रहनुमा खतूत का इतलाक आने वाली तमाम 4 और 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराहों पर होगा। इन रहनुमा खतूत के तहत इंतहाई तेज रफ्तार कौमी शाहराहों की राहदारी की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए मेयार में एकसानियत लाने की बात कही गई है। इनसे कौमी शाहराह के पूरे नेटवर्क में तकनीकी मेयार के एतबार से ज्यादा इस्तकलाल, सड़क तहफ्फुज़ में मजबूती और ऑपरेशनल सलाहियत में बेहतरी भी आएगी। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी 9वीं स्टेट ड्यूमा के लिए हुए इंतखाबात में बसर इक्तदार यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.83% वोटों के साथ कामयाबी हासिल की है। ये इंतखाबी नतायज सदर व्लादिमीर पुतिन को इक्तदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। मास्को में आज अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन की चेयरपर्सन इना पाम्फिलेवा ने कहा कि 95% वोटों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों से आगे है। दूसरे मुकाम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन है, जिसने तकरीबन 14% वोट हासिल किए हैं। तीसरे मुकाम पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया है, जो तकरीबन 9% वोट ही हासिल कर सकी। न्यू पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 8% और ए जस्ट रशिया ने तकरीबन 5% वोट हासिल किए। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जुमे से इतवार के रोज तक हुए इन इंतखाबात में 69% राय दही हुई, जो कि साल 2021 के तकरीबन 52% से ज्यादा है। स्टेट डूमा रूस का कानून साजी का मुस्तकिल इदारा है, जो 450 डिप्यूटीज पर मुश्तमिल होता है। आधी सीटें पार्टी फहरिस्तों के तनासब के मुताबिक तकसीम की जाती हैं, जबकि बाकी मादा 225 अराकीन नस्बतन बड़े वोटिंग निजाम के जरिए मुल्क भर से मुंतखब होते हैं। इन इंतखाबात में मजमूई तौर पर 10 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था। हतमी नतायज का ऐलान जुमे के रोज हो सकता है। भारत ने जापान के एची नागोया में जारी एशियाई खेलों में निशानेबाजी में 3 तमगे जीते हैं। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इन्फरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने चांदी का तमगा, जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा हासिल किया। भारत ने मर्दों के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता। कल इलेमनिल वेलेरिन ने खवातीन के इन्फरादी 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया था। भारत ने खवातीन के टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है।
इसका

0: के निशानेबाजी में चार चांदी के और एक कांसे के तमगे समेत कुल पांच तमगे जीते हैं। सोनिका त्रियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 60 किलोग्राम के जुमरे में कांसे का तमगा हासिल किया। इस तरह भारत चार चांदी के और दो कांसे के तमगों समेत कुल छह तमगे हासिल करके 12वें मुकाम पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर हिमांशु ढिल्लन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने हिमांशु की दबाव में भी पुरसुकून रहने की सताइश करते हुए कहा कि मुल्क को उनकी कारकर्दगी पर फख्र है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड आजाद तजारती मुआहदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कामर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे एमएसएमईज में रोजगार के नए मौके खुलेंगे और किसानों को फायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इकतसादी शराकतदारी मुआहदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तेफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सिलरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शहरों के लिए सड़क तहफुज और सलाहियत को फरोग देने की गर्ज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशियन पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखी है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आलमी खबरों के बाद अब पेश खिदमत है क्लासिकी मौजूदगी का यह प्रोग्राम। आज की इस पेशकश में पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खां सरोद और सितार पर राग मंच खलाज पेश करेंगे। साथ फरमाइए।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी आपने सुना फिल्म अंदाज से, ये नगमा जिसे गाया लता मंगेशकर ने। प्रोग्राम चल रहा है आखिरी शब, और ये अगला नगमा सुनिए बंदरी फिल्म से है, गाया है SG बर्मन ने।

0: اقتصادی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا. بھارت اور کناڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا. وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آکسلری پاور یونٹ APUS حاصل کرے گا. NHAI نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں. ولادیمیر پوتین کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں 3 تمغے جیتے ہیں. بیڈمنٹن میں مردوں کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ FTA وجے دشمی کے موقع پر اس برس 20 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا. نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس معاہدے سے 100% بھارتی برآمدکاروں کو نیوزی لینڈ تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی. انہوں نے بتایا کہ کلیدی شراکت داری اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سامان و خدمات کے شعبے میں باہمی تجارت کو دوگنا کر کے اگلے 4 سے 5 برس کے دوران تقریباً 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کی امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے. وجہ موصوف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی محصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے. جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے ایم ایس ایم ایز کسانوں، دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ ملے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے FTA کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے. اس معاہدے سے بھارتی برآمدکاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے جس میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات، لیدر اور فٹ ویئر، انجینئرنگ کا ساز و سامان، ادویات، زراعتی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی، اون، بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی. بھارت اور کناڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے. بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے. جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کناڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے. وزیر موصوف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا. وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آکسلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا. اس معاہدے پر محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے. ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ مہاراشٹر کے شہر پونے میں قائم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کی ایک بھارتی فرم ہے. آکسلری پاور یونٹ APUS آگ کو کنٹرول کرنے کے نظام، فائرنگ سرکٹ، گن اسٹیبلیشن سسٹم اور ٹینک کے دیگر آلات کے لیے بجلی پیدا کرنے کا ایک متبادل وسیلہ ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی NHAI نے انتہائی تیز رفتار रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराहों की मंसूबा बंदी और डिजाइनिंग के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने बताया कि इन रहनुमा खतूत का इतलाक आने वाली तमाम 4 और 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इंतहाई तेज रफ्तार रसाई वाली कंट्रोल्ड कौमी शाहराहों पर होगा। इन रहनुमा खतूत के तहत इंतहाई तेज रफ्तार कौमी शाहराहों की राहदारी की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए मेयार में एकसानियत लाने की बात कही गई है। इनसे कौमी शाहराह के पूरे नेटवर्क में तकनीकी मेयार के एतबार से ज्यादा इस्तकलाल, सड़क तहफ्फुज़ में मजबूती और ऑपरेशनल सलाहियत में भी बेहतरी आएगी। रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी 9वीं स्टेट डूमा के लिए हुए इंतखाबात में बरसर इकतदार यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 57.83% वोटों के साथ कामयाबी हासिल की है। ये इंतखाबी नतायज सदर व्लादिमीर पुतिन को इकतदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। मास्को में कल अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस के मरकजी इंतखाबी कमीशन के चेयरपर्सन इला पामफिलोवा ने कहा कि 95% वोटों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों से आगे है। दूसरे मुकाम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन है जिसने तकरीबन 14% वोट हासिल किए हैं। तीसरे मुकाम पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया है जो तकरीबन 9% वोट ही हासिल कर सकी। न्यू पीपल पार्टी ने तकरीबन 8% और ए जस्टिस रशिया ने तकरीबन 5% वोट हासिल किए। रूस की मरकजी इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जुमे से इतवार के रोज तक हुए इन इंतखाबात में 69% रायदही हुई जो कि साल 2021 के तकरीबन 52% से ज्यादा है। स्टेट डूमा रूस का कानून साजी का मुस्तकिल अदारा है जो 450 डिप्यूटीज पर मुश्तमिल होता है। आधी सीटें पार्टी फहरिस्तों के तनासुब के मुताबिक तकसीम की जाती हैं जबकि बाकी मादा 225 अराकीन निस्बतन बड़े वोटिंग निजाम के जरिए मुल्क भर में मुंतखब होते हैं। इन इंतखाबात में मजमूई तौर पर 10 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था। हतमी नतायज का ऐलान जुमे के रोज हो सकता है। भारत ने जापान के एची नगोया में जारी एशियाई खेलों में निशानेबाजी में 3 तमगे जीते हैं। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इन्फरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने चांदी का तमगा जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा हासिल किया। भारत ने मर्दों के टीम मुकाबले में भी चांदी का तमगा जीता है। कल इलावलेल वेलारेनवन ने खवातीन के इन्फरादी 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया था। भारत ने खवातीन के टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। इस तरह भारत ने निशानेबाजी में 4 चांदी के और 1 कांसे के तमगे समेत कुल 5 तमगे जीते हैं। सुचिता त्रियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में जीतने वाली पहली भारत की खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 60 किलोग्राम के जुमरे में कांसे का तमगा हासिल किया है। इस तरह भारत 4 चांदी के और 2 कांसे के तमगों समेत कुल 6 तमगे हासिल करके 12वें मुकाम पर है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड आजाद तजारती मुआहिदा अगले माह की 20 तारीख से नाफिज होगा। कॉमर्स और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि इससे एमएसएमईज में रोजगार के नए मौके खुलेंगे और किसानों को फायदा होगा। भारत और कनाडा ने जामे इकतसादी शराकतदारी मुआहदे के लिए तेजी के साथ मुजाकरात करने से इत्तफाक किया है। बातचीत का अगला दौर 5 अक्टूबर को शुरू होगा। वजारत दिफा ने पुणे में कायम एक प्राइवेट कंपनी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत वो T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रूपये की लागत से ऑक्जिलरी पावर यूनिट APUs हासिल करेगा। NHAI ने तमाम कौमी शाहराहों के लिए सड़क तहफ्फुज और सलाहियत को फरोग देने की गर्ज से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत बरकरार रखी है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
0: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस को आप मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप और डीडी फ्री डिश पर समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की तीसरी मजलिस की नशियात का इख्तिताम होता है। कल सुबह 9:30 बजे पहली मजलिस की नशियात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, शब बख़ैर, जय हिंद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीति साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
3: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
3: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। यह अनुबंध सरकार की विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

यार लाइव न्यूज 24x7 1:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए श्रोताओं शुरू करते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और वाकई में गीत सुनहरे वही गीत जो कल भी तरोताजा आज भी तरोताजा और कल भी तरोताजा ही रहेगा। जी हाँ उन्हीं गीतों के बारे में उन्हीं गीतों को आज सुनेंगे और महसूस करेंगे कि क्या कुछ खास है इसमें।

और अगर गीतों का सिलसिला ये चला जहाँ प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, वहां पर कुछ गीत ऐसे भी बने हैं जिन्हें उनके अपने मोहब्बत के पहनावे, उनके श्रृंगार, उनकी बातों को लेकर कुछ अलग सा कहा जाता है। आपको पता है जब पुराने गीतों की बात चलती है तो आप समझ ही नहीं सकते कि कौन सा गीत किस मूड का है, क्योंकि जब आप उसे सुनते हो, जब आप उसे सुनने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है अच्छा इस समय के हिसाब से इस गीत को बनाया गया। फिल्मों में गीत सिर्फ मोहब्बत के नहीं होते थे, हर एक सिचुएशन पर गीत बनते थे, और शायद यही कारण था कि पुराने जमाने की जो फिल्में हुआ करती थी वो बिल्कुल सधी हुई होती थी, क्योंकि उसमें हर एक चीज, हर बारीकियों पर ध्यान दिया जाता था। और जब गीतों की बात चलती है तो चाहे वो किसी भी सिचुएशन पर क्यों ना हो, उस सिचुएशन पर गीत बनते थे, बनाए जाते थे, और उसे बखूबी इतना खूबसूरत तरीके से निभाया जाता था कि वो गीत खूबसूरत हो जाते थे। और आज भी हम उस गीत को याद करते हैं।

गोल्डन एरा फिल्म की बात हो रही है मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। गोल्डन एरा गीत सुनहरे आप सुन रहे हैं और आकाशवाणी लाइव न्यूज पर आप रोजाना सुनते हैं 1:10 से इस कार्यक्रम को। फिल्म संगीत पर आधारित है ये कार्यक्रम और उस जमाने की बात चल रही है जिस जमाने में फिल्म बनाना क्या, एक सीन बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, पुल पर काम होता था, शूट भी बड़ी मुश्किल से होती थी, हर एक काम में कड़ी मेहनत छिपी थी और वही मेहनत रंग लाकर तब बने हैं वो एरा गोल्डन एरा और उनके गीत बने सुनहरे। जी हाँ, उन्हीं गीतों के बारे में बात कर रहे हैं और वो गीत जब किशोर और आशा दो आवाजें ऐसे जुड़ गए कि गीत को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता था तो फिर क्या बात है। और जब वो लाइंस, वो शब्द जो उसे और खूबसूरत बना दे, वो शब्द सुनने के बाद इस गीत को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। जी हाँ, पेइंग गेस्ट का ये गाना हर किसी की जुबान पर आज भी तरोताजा है।

वो निगाहें मस्ताना, गीत बहुत खूबसूरत से थे। और अगर बात हो कि तुमने इतना खूबसूरत क्यों कपड़े डाले, इतने सुंदर क्यों लग रही हो, क्यों ऐसे सजी हो, क्यों हम इस लाइन को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे इसे और खूबसूरत, क्योंकि हम नहीं बना सकते। वो गोल्डन लोग ही थे जिन्होंने इन गीतों को इस कदर से, इतने खूबसूरत शब्दों से पिरोया है।

कि हमें अच्छा तो लगना ही है। और जब हम ये सोचते हैं ना कि मोहब्बत की गीतें जो जो गीतों में जो कला है, जो लिखने का तरीका है, तो ये सोच सकते हैं कि ये करते करते और सुनते सुनते इंसान आराम से ढाल सकता है, शायद कम मेहनत करनी पड़े। मेहनत तो है लेकिन कम करनी पड़े। लेकिन अगर ये बात अगर आती है कि इसमें कुछ अलग मूड के गीत, कुछ अलग सिचुएशन के गीत बनाने हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत यदा कदा ही गीत बने होंगे, लेकिन फिर भी बनाने वाले ने क्या खूब लिखा है और क्या खूब गाया है।

गोल्डन एरा गीत सुनहरे। आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज पर मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और बात जब हो रही है और सारे सिंगर को हम सुन रहे हैं तो फिर हेमंत कुमार को क्यों पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो वो शख्स है जो गीतों को लिखना, गाना, उसे सुर देना, फिल्मों को डायरेक्ट करना और कई सारी चीज़ों में इनकी पकड़ थी। कैसे कोई व्यक्ति इतना महान और विद्वान हो सकता है। और इनके गाए हुए गीत, हर एक गीत बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। आइए सुनते हैं और इनके स्वर का जादू देखते हैं।

वाकई में जादू है आवाज में। यूं ही नहीं खूबसूरत बनते आए कोई भी चीज। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो एक खूबसूरत चीज सामने उभर कर आती है। पुरानी फिल्में, पुराने गीत शायद इसीलिए इतने खूबसूरत हुआ करते थे। हर चीज में कड़ी मेहनत छिपी होती थी। सभी कुछ कहते हैं कि उस जमाने में लोग इतने मेहनती थे कि हर किसी के अंदर एक कलाकार छिपा होता था और वो अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते थे।

तभी शायद वो एरा ऐसा था कि हर कोई वहां हिट नहीं हो पाता था, आगे नहीं निकल पाता था, जो जितना मेहनत करे वही आगे बढ़ पाता था। और उनकी मेहनत रंग लाई। आज हम बात कर रहे हैं गोल्डन एरा के बारे में। जी हाँ, उसी एरा का जिसका गीत आज भी तरोताजा है, सुनहरा है। आइए सुनते हैं गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत।

आपने ये गौर किया है, जब पुराने जमाने के गीतों की बात चलती है, उन गीतों के ड्यूरेशंस बहुत कम हुआ करते थे, यानी कि कम समय का गीत बनता था पहले। बहुत कम ही ऐसे गीत हैं जिसके ड्यूरेशन, यानी कि जिसका समय जो है वो लंबा हो, बहुत बड़ा हो, ऐसा बहुत कम गीत है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटे थे इसलिए आसानी से बन जाते होंगे, या फिर बड़े हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या छोटे हैं तो। लेकिन बात असल में ये है कि उस छोटे से गीत, उस छोटे से समय में बहुत कुछ सिमट कर एक गीत में ही आ जाता था, और सारे बोल जो कहना है उस सिचुएशन पे, वो सब उस छोटे से गीत में इस कदर शब्दों के साथ कह दिया जाता था कि कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं लगता था कि गीत कम तो नहीं रह गया, या सिचुएशन पर बेस्ड ये गीत सिचुएशन को अच्छे से बता नहीं पाया, ऐसा कहीं नहीं लगा। गीतों को ढालने

बहुत खूबसूरत सा गीत था। तलत महमूद की आवाज में आपने इस गीत को सुना। फिल्म छोटे भाई से, छोटे बाबू से आपने इस गीत को सुना। और गीतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये गोल्डन एरा के गीत हैं और गीतों का समावेश अलग अलग तरीके के गीत आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ मैं, पूजा भारती। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म भाभी से। और गीतों का सिलसिला जब चल रहा है तो एक गीत इसके बाद मैं आपको ज़रूर सुनवाऊंगी, जो गीत मुझे अत्यधिक प्रिय है, बहुत प्यारा सा गीत है वो। लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत, ये भी कम खूबसूरत नहीं है।

कितना खूबसूरत गीत था ये, छुपा कर मेरी आंखों से। वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। क्या लाइन क्या गीत, वाकई में इस गीत के क्या कहने। ऐसे एक और गीत है और उस गीत में भी कुछ इसी तरीके से मोहब्बत का इजहार किया गया। हालांकि मैंने आपने जो गीत सिलेक्ट किए वो 50s के गीत सिलेक्ट किए हैं, गोल्डन एरा का वो पीरियड, वो समय, और वो समय लगभग 70s तक इतना ही खूबसूरत रहा। गीतों के में जो बदलाव आने शुरू हुए वो 60s के बाद आए, लेकिन 70s में बिल्कुल अलग आया और थोड़ा सा म्यूजिक पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। लेकिन अगर बात करें गोल्डन एरा उस जमाने की, जब फिल्म बनती थी, लेकिन वही उसी मुश्किल से उसी दिक्कत से, तब की बात अगर करें तब के जितने सारे गीत हैं वो एक से बढ़कर एक थे। और जब गीतों का ये सिलसिला चलता है तब हम ये सोचते हैं कि जब गोल्डन एरा की बात हो तो ऐसे गीत आप कहाँ सुन सकते हैं, आप कहाँ सुन पाते हैं। आप अत्यधिक म्यूजिक वाले, अत्यधिक संगीत वाले गीत

सुनते हैं, या फिर वो बोल आप नहीं पा सकते जो बोल अभी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का एक अलग ही उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसे आपने जमाने से इन कानों से नहीं सुना, उसे आप तक पहुंचाने का मकसद इस कार्यक्रम का है, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के साथ आप लोग कई सारे ऐसे गीत जिसे सुने हुए आपको जमाना गुजर गया उन्हें सुन पाते हैं, तो गीतों का सिलसिला क्यों रोकें, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं।

और गोल्डन एरा का वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन मन यही कह रहा है कि क्यों ना एक छोटी सी लाइन आप तक और पहुंचा दी जाए। कल लेकिन फिर से सामना होगा गोल्डन एरा में, जी हाँ, फिल्म संगीत में। अब ये कार्यक्रम यही बस संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गांव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names have been excluded from the electoral rolls during the SIR process. The state currently has 19 tribunals. Our correspondent reports, the Commission is expected to tell the Supreme Court today that the number should be increased to at least 42, with one tribunal for each Lok Sabha constituency in the state. The Supreme Court is scheduled to hear 13 petitions today relating to the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls. The Commission is likely to apprise the court of the need for more tribunals during the hearing. The Department of Drinking Water and Sanitation yesterday held the first national virtual conference with states and union territories. The conference was held to strengthen the skilled workforce needed for the operation and maintenance of rural drinking water systems under Jal Jeevan Mission 2.0. The Jal Shakti Ministry said that the conference focused on rolling out the Nal Jal Mitra program, which will train village-level technicians in operating and maintaining water supply infrastructure. The program includes a 510-hour short-term course and a 120-hour recognition of prior learning pathway. In Asian Games shooting, India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan yesterday. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver in the men's team event of the same competition. The trio of Rudraksh, Balasaheb Patil, Himanshu Dhillon and Parth Rakesh Mane came second in 10-meter

AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। 2:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। आइए श्रोताओं, सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत बहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी EIR लाइव न्यूज 24x7। 3 बजने को है। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारी व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जाएगा।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां एपीयू टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले फैसला 8 अक्टूबर तक आना था, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस जांच में तुर्की से होने वाला आयात भी शामिल है। अमरीका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत और तुर्की के उत्पादकों को उनकी सरकारों से सब्सिडी या वित्तीय मदद मिली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names have been excluded from the electoral rolls during the SIR process. The state currently has 19 tribunals. Our correspondent reports, the commission is expected to tell the Supreme Court today that the number should be increased to at least 42, with one tribunal for each Lok Sabha constituency in the state. The Supreme Court is scheduled to hear 13 petitions today relating to the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls. The commission is likely to apprise the court of the need for more tribunals during the hearing. The Department of Drinking Water and Sanitation yesterday held the first national virtual conference with states and union territories. The conference was held to strengthen the skilled workforce needed for the operation and maintenance of rural drinking water systems under Jal Jeevan Mission 2.0. The Jal Shakti Ministry said that the conference focused on rolling out the Nal Jal Mitra program, which will train village-level technicians in operating and maintaining water supply infrastructure. The program includes a 510-hour short-term course and a 120-hour recognition of prior learning pathway. In Asian Games shooting, India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan yesterday. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver medal in the men's team event of the same competition. The try of Rudraksh Balasaheb Patil, Himanshu Dhillon and Parth Rakesh Mane came second in 10-meter air rifle team event. In the mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60 kg category. In the medal tally, India is currently in 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have congratulated the medal-winning team. And that is the end of this news bulletin.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरि कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म का कार्यक्रम और इसमें अभी आप सुनेंगे चरण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम में अभी आपने चरण्य लक्ष्मी कुमारन की ये प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे दीर्घ श्वास प्रेक्षा और आसन के बारे में। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीत का, जबकि 5:30 पर आप आज सुनेंगे स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत सरिता पाठक यजुर्वेदी द्वारा गाया राग अल्हैया बिलावल।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन।

0: गुरबिन को रंदार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच विचार, गुरु करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन, अगन कड़े सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कहो नल कह, जिन गुरु ना देखियो ना कियो, ते कथ संसार में। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, कारण करण समर्थ सतगुर, सुरत ध्यान सबदे मेरे, पूरो पुर हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाहे परेरे, जौहर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, कुत्ती जो प्यास पीयूष पीवन की, बंचक सिद को बेद मिलायो, पूरन पो मन थोर बसो, रस बासन सोजो दहन दस्तायो, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जलन तीर भी पास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, समरथ गुरु सिर हथ तरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरयो, निसबासर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भान डरयो, भन दास सो आस जगतर गुरु की, पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।
2: अब रखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत परै लाज की, हर नाक्ष फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, सीनत बस्तर दीन बो साज, सो दामा अपदा ते राख्या, गनका परत पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज। झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो, शब्द हर हर जपे, नाम नव निध अपे, रसन है न सरसे, सत कर जानियो, फन प्रेम रंग पाइये, गुरमुख त्याइये, अन्न मार्ग तजो, भजो हर ज्ञानियो, बचन गुर रिद धरो, पंच भू बस करो, जन्म कुल उदरो, द्वार हर मानियो, जो तो सब सुख इत उत तुम बंशवो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो।
3: गुरु करे गुरु बर गुरु जप सत कर, अगम गुण जान निदान हर मन त्रो, ध्यान अहनिस करो बचन गुर हृदय तार, फुन गुरु जल बिमल अथाह मचन करो, संत गुर सिख तरहो, नाम सच रंग सर, सदा निर्वैर निरंकार निरभौ जपे, प्रेम गुर शब्द रस, करत देड भगत हर, मुगत मन परम तजो, नाम गुरमुख पजो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर।
4: गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइये, उदत गुर गहर गंभीर, ब्यांत हर नाम नगहीर, मन मिलत लिवलाइए। पुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइए। अमृत परवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए। नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए। गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गण तरह ते तीस। गुर बचन सुन कन रे पुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करे। तरहो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरह नारदाद सनकाद हर गुर मुखे। तरह एक नाम लग तजहो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह। गुरु गुर गुरु जप मन रे।
5: श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सत जुग जिन ध्रु पर। श्री प्रहलाद भगत धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी रखिया ना जाई साधिक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरे आना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुक्त ना होए। गुरु नानक निकट पसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी। लहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया। तिन श्री रामदास सोढ़ी थिर थप्यो हर का नाम खैन दप्यो। अप्यो हर नाम खैन चौ जुग गुर सेवा कर फल लहियं। बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं। प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण पर्णं। सत गुर गुर सेव

करम पे भूले सतदारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास।

प्रियन अहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदि नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह मन जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सरशाह दशाह जस पास बैठया सोइया सब नादा वेसाहो सजन सचा पातशाह सरशाह दशाह जस पास

ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਭਾਲਾ ਮੋਕ ਲਾਈ ਕੀਤਿਆਨਾ

بس بين نصرك.

ਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਨ ਸਭ ਰੱਖੇ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ।

ਭਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ